मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की पंचमी तिथि। तदनुसार 26 जून 2026 प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारे आज के प्रसारण अब आरंभ होते हैं।

0: सभा की शुरुआत रोज ही की तरह समाचारों से करेंगे, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। समाचारों के लिए आइए आपको दिल्ली लिए चलते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं नवीन सक्सेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि मुलाकात के दौरान उन्होंने इस बात की चर्चा की कि भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना किस प्रकार वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ा रही है और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बना रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वो सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और भारतीय नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हार्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं पर समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा।
2: भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता हमारे उद्योगों को नई दिशा दे रहा है। दोनों देशों के उद्योग वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में साथ काम करेंगे। ये समझौता दोनों अर्थव्यवस्थाओं को मजबूती प्रदान करेगा। भारत और ब्रिटेन मिलकर वैश्विक स्तर पर नई संभावनाएं पैदा करेंगे।

0: together, becoming a force multiplier.
1: गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026 से 2029 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने की विंडो खोल दी है। मेडिकल कॉलेज में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने 21 तारीख को आयोजित हुई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में दो शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या बढ़कर 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कुरासाओ ने आइवरी कोस्ट को और इक्वाडोर ने जर्मनी को हरा दिया है। प्रतियोगिता में इस समय जापान का मुकाबला स्वीडन से और ट्यूनिशिया का मुकाबला नीदरलैंड से जारी है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए थे। जवाब में भारत ने केवल 16 ओवर और 5 गेंद में 5 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Harmini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. He will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on Narcotics Control 2026-2029, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices.

ईश्वर पर आप तभी विश्वास कर सकते हैं जब आपको स्वयं पर विश्वास हो, क्योंकि ईश्वर कहीं बाहर नहीं, हमारे अंदर, हमारे हृदय में निवास करते हैं। कर्म में विश्वास करना ही स्वयं पर विश्वास करना है, और स्वयं पर विश्वास करना ईश्वर पर विश्वास करना है। भगवान से कुछ मांगने पर ना मिले तो उनसे नाराज होने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देते जो आपको अच्छा लगता हो, बल्कि ईश्वर वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा हो।

भगवान के बारे में कुछ किताबें पढ़ने से या किसी गुरु के आशीर्वाद से ईश्वर और उनकी महिमा को नहीं समझा जा सकता। यह केवल एक अनुभूति होती है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। इसे आपको स्वयं ही अनुभव करना होता है।

जब हम गेहूं का एक दाना बोते हैं तो कुछ समय पश्चात वो हमें हजार दानों के रूप में प्राप्त होता है। ईश्वर की कृपा भी हम पर इसी प्रकार बरसती है। जब हम ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाते हैं तो वो हजार कदमों के साथ हमारी ओर आता है।

जिस प्रकार दूध में उपस्थित होते हुए भी घी किसी को दिखाई नहीं पड़ता, फूल में गंध होने के बाद भी नजर नहीं आती, उसी प्रकार हमें अपनी बुराई दूसरे की भलाई, बीज में छिपा वृक्ष और सभी स्थानों पर उपस्थित ईश्वर नजर नहीं आता।

ईश्वर सत्य हैं और वो लोगों के दिलों में विराजमान रहते हैं। ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा और विश्वास बने रहने पर उनकी कृपा अवश्य बरसती है। ईश्वर को पाने के लिए केवल सिर का झुकना काफी नहीं, उनकी कृपा तो तब बरसती है जब आप सिर के साथ साथ अपने मन को भी झुकाते हैं। यदि आपकी समस्या एक जहाज जितनी बड़ी है तो आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि ईश्वर की कृपा सागर जितनी विशाल है। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेते हैं तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देते हैं ताकि वो और अधिक बुद्धिमान और अधिक ताकतवर बन सके। ईश्वर को मानने का, ईश्वर को पूजने का अर्थ ये नहीं कि आपके सामने समस्याएं आएंगी नहीं। समस्याएं अवश्य आएंगी, परंतु आप उन समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार होंगे। आप उन समस्याओं का सामना ईश्वर के साथ रहकर कर सकेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। आपसे पुनः भेंट होगी। नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम चिंतन।
1: साधना एक शब्द है, लेकिन ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण अर्थ होता है। ओंकार का साधना के बारे में आप सबको परिचय कराना चाहूँगा। ओंकार, जैसे हम बोलते हैं एक मंत्र का ओम नमः शिवाय ऐसा, तो सिर्फ ओम बोलने से उसका पूरा फायदा हमें मिलता नहीं। ओंकार के अंदर में तीन मात्राएं होते हैं, आकार, उकार, मकार। कौन सा मात्रा को कितना देर बोलने से कौन सा तरंगे पैदा होते हैं, और उन तरंगों का जो फ्रीक्वेंसी है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म के ऊपर, हमारा शरीर के अंदर में ब्लड केमिकल्स के ऊपर कैसा काम करता है, एक तकनीक है जो ओंकार साधना है। और उसको हम इस तरह बोलने से बहुत फायदा होगा। जैसे

अभी मैं तीन मात्राओं को उच्चारण किया, लेकिन अंदर से आवाज एक ही है। इसको ऊपर में जैसा पूरा मुंह खोल करके बोला हूं तो आ, ये शब्द नाभि से निकलती है। और दूसरा ऊ उकार, तो उसको हम दोनों होठों को नजदीक करते हैं तो उकार में बदलते हैं। इस मात्रा को मैंने ज्यादा इस्तेमाल किया और ये अनाहत चक्र मैंने हमारा हृदय के पास में, क्योंकि जो कॉन्शियस लेवल है हमारा ये पूरा यहीं पर होता है। और दूसरा मकार, जब मकार मैंने उच्चारण किया तो कंठ के ऊपर, जिसको हम पराशक्ति परा बोलते हैं। इस तरह उकार को ज़्यादा बोलने से शरीर के अंदर में जो अनाहत चक्र है चौथा, और उसके नीचे और ऊपर में पूरा ऊर्जा का संचालन

0: होगा और नीचे अंगों के अंदर में जितने भी बीमारियां दूर होते हैं। ऐसे ही आध्यात्मिक क्षेत्र में अगर हमको आगे बढ़ना हो तो मकार शब्द को दोनों होठों को बंद करके जो उच्चारण करते हैं तब पूरा मस्तिष्क के अंदर में ऊर्जा संचारित होगा और उससे हमारा मस्तिष्क में और मानसिक तौर पर बहुत फायदा होगा। अगर एक आम आदमी शुरू करना हो तो इसी तरह आकार को 4-5 सेकंड बोलें, फिर उसके बाद ओकार को जितना लंबा खींच सके उतना लंबा खींचें और मकार से अंत कर दें। और इस तरह से अगर हम आकार ओकार मकार को बोलते हैं तो जो उन कोशिकाओं के अंदर में जो गड़बड़ है वो दूर हो जाएगा और अपने आप फ्रीक्वेंसी बदल जाएगा और बीमारी दूर हो जाएगा। और इसके साथ में अपना श्वास का प्रक्रिया को भी जोड़ते हैं। जब बोलते वक्त हमारा शरीर के अंदर में से कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ तो मुंह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। अब अंत में जो कुछ भी बचा है मुंह बंद करके नाक से बोलता हूँ तो नाक से जो बचा वो पूरा निकल जाता है। निकलने के बाद श्वास ना लेते हुए नाभि को अंदर खींच करके गर्दन को नीचे करते हैं और बाहर में हवा बाहर मतलब एक बांध बन गया, इसको कहते हैं प्राणायाम में शून्य स्थिति। इस स्थिति में जितना देर रह सकते हैं उतना देर रहेंगे, जब सहन नहीं कर पाते हैं तब गर्दन को उठा करके मुंह से श्वास ले लेंगे। यहाँ पर क्या होता है, अब तक जो ऑक्सीजन कोशिकाओं को नहीं मिला है वो ऑक्सीजन मिलने लगता है। जब ऑक्सीजन से भरपूर हो जाता है कोशिकाएं तब उसके अंदर में जो कार्बन डाइऑक्साइड भरा हुआ आज तक वो पूरा निकल जाता है, तो नया ऊर्जा कोशिका को मिलेगा और पुराना गंदगी निकल जाती है। इस तरह हर कोशिका हर अंग अंग प्रत्यंग पूरा बॉडी के अंदर में और खास करके रीढ़ हड्डी के अंदर में मेरुदंड के अंदर में जितना भी तकलीफ है सब दूर हो सकते हैं। जो व्यक्ति इस क्रिया को इस तरह 25 मिनट मतलब 25 मिनट लगातार बोलना नहीं, ये सब बोलना श्वास के साथ में जोड़ना 1 मिनट लगता है और 4 मिनट आराम करते हैं। एक ओंकार साधना का मतलब 5 मिनट हो गया, ऐसा हम आम व्यक्ति 5 बार ही करना चाहिए। ऐसा इस 25 मिनट जो व्यक्ति मॉर्निंग में खाली पेट पे करता है उनको पूरा शरीर एक ऊर्जावान हो जाता है, हर कोशिका ताजगीपन महसूस करता है। थकावट जिंदगी में होती नहीं है तो हमारा आभा मंडल चेहरे का वो पूरा बदल जाता है, जीवन ही कुछ ऊर्जावान हो जाता है।
1: अभी आप सुन रहे थे चिंतन, हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:50 हुए हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 7:10 पर सुनिए कार्यक्रम खेती हराम वास्ते। आज जानकारी देंगे बकरी पालन के फायदे, मानस गान का समय रहेगा 7:20, आज सुनवाएंगे भाग संख्या 286। सुप्रभात में बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण, महापुरुषों का जीवन दर्शन और साथ ही साथ प्रातःकालीन भ्रमण के फायदे। 8:45 पर सुगम संगीत और 9:10 पर मरुमंगल में आज कलाकार होंगे राम कुमार नाथ और पार्टी। 9:30 पर फिल्म संगीत और कार्यक्रम गा मेरे मन गा प्रातः 10:00। फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम गीत माला प्रातः 11:00। कार्यक्रम सैनिकों के लिए 12:05 पर और सुगम संगीत 12:30 पर। 1:05 पर घरांगन में बात करेंगे तपाक से बोलने की आदत कितनी सही, पेट की चर्बी को कैसे कम करें, गर्मी में रखें सावधानियां और गुणों की खान सोडा। 2:30 पर फिल्म संगीत और उर्दू सर्विस के प्रसारण दोपहर 3:00 से केवल न्यूज ऑन AIR ऐप और FM पर प्रसारित किए जाएंगे, मीडियम वेव पर रखरखाव के चलते प्रसारण बंद रहेगा। युवावाणी में आज जो बात करेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध झीलें, ध्वनि प्रदूषण से बचाओ, जीवन में अध्यात्म का महत्व, वर्षा जल संरक्षण और साथ ही साथ आज का इतिहास। सराय की शाम 6:05 पर और चौपाल में शाम 7:00

सुनवाएंगे गीतारों, गजरों, बाजार भाव और साथ ही साथ मौसम की जानकारी भी देंगे। 7:45 पर फिल्म संगीत और रात्रि 8 बजे कार्यक्रम एक ही फिल्म से आप सुन पाएंगे। हमारा विशेष कार्यक्रम मिट्टी दी खुशबू रात्रि 9:30 पर संयोजक नवीन सिसोदिया और प्रस्तोता जसवीर सिंह रात्रि 10:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

तोता जसवीर सिंह, रात्रि 10:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी में समाचार थोड़ी ही देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय मामलों की विशेष सलाहकार नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। श्री मोदी ने बताया कि बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना से वित्तीय सेवाओं को अधिक सुलभ और किफायती बनाकर जीवन की सुगमता बढ़ाने और लोगों को व्यापक स्तर पर सशक्त बनाने पर चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पूरे विश्व में साझेदार देशों के साथ अपना अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री कल से 29 तारीख तक सेशेल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशेल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के दो जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मेनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे। गृहमंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-2029 का दृष्टिपत्र जारी करेंगे। ये दस्तावेज नशीले पदार्थों की मांग और आपूर्ति में कमी लाने और मादक पदार्थों के खतरे से निपटने की योजना प्रदान करेगा। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिली है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा की उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की

0: गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर ये शुल्क वापस कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध पहली प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्री रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजैक ने कहा कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि देश में 2 शक्तिशाली भूकंपों से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1,520 लोग घायल हुए हैं। मलबे में अभी भी 200 लोग फंसे हुए हैं। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 16 ओवर और 5 गेंद में ही 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। फीफा फुटबॉल विश्व कप में आइवरी कोस्ट ने क्राकाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट में जगह बनाई है। एक अन्य मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from 27 to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces along with 2 Indian Navy ships will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermini, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. He will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on the Narcotics Control 2026 to 2029, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. In a major relief to the industrial and commercial LPG consumers, the government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing prior to the West Asia crisis. Ministry of Petroleum and Natural Gas said in a statement that the supply of bulk LPG, which had been suspended at the onset of the crisis, has been relaxed by 50% of the pre-crisis consumption levels, providing significant relief to commercial and industrial consumers. The restoration follows the recent improvement in the LPG supply situation.

0: The National Testing Agency NTA has opened a window for candidates to challenge the provisional answer keys for the NEET UG 2026 re-exam, which was held on the 21st of this month. The NTA announced that the answer keys are now available at www.neet.nta.in. Students can challenge questions for a fee of 200 rupees per question until the 28th of this month. This fee is fully refundable if the challenge is accepted. Further, the NTA has opened a portal for candidates who appeared for the re-exam to confirm and update their bank account details for fee refunds. The deadline to update bank details is 30th of this month. Ministry of Youth Affairs and Sports through Mera Yuva Bharat, My Bharat, will launch the National Nasha Mukti Quiz on the My Bharat portal today to mark the International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking. The quiz will be launched under the nationwide Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat campaign. Venezuela's National Assembly President Jorge Rodriguez has announced that the death toll from two powerful earthquakes has risen to 188, with 1,520 others injured and 200 still trapped. In the ICC Women's T20 World Cup, India defeated Bangladesh by 5 wickets in a Group A clash in Manchester, England last night. Opting to bat first, Bangladesh posted 136 for 8 in the stipulated 20 overs. For India, Radha Yadav picked up 3, while Sri Charani took 2 wickets. In reply, India comfortably overhauled the target, losing 5 wickets in 16.5 overs, riding on Shefali Verma's 53 off 34 balls. Shefali was adjudged player of the match. With this win in Group A, India have 6 points from 3 wins and 1 loss. Now, the Harmanpreet Kaur-led women in blue will need to beat Australia on Sunday to comfortably secure a place in the semi-finals. And that is the end of this news bulletin.
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर, डीआरएम चैनल 909 किलो हर्ट्ज, एफएम 100.1 मेगा हर्ट्ज और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:10 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती हराम वास्ते। आज जानकारी देंगे, बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय।
2: किसान भाइयों, राम राम। राजस्थान के अंदर या किसो भी प्रदेश है, बट है बकरी पालन को एक व्यवसाय जी को है, वो बड़ो सफल व्यवसाय है। बकरी हमेशा सुई गरीब की गाय कही गई है। आपने जी की ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, बिंगमा पशुपालन में बकरी पालन आपको एक बहुत ही महत्व रख है और लगातार वो महत्व बढ़ने लाग रही है। आजकल वो खाली कमजोर वर्ग या छोटो समूह ही कौन करण लाग रहे हो, बल्कि बड़े पैमाने पर व्यवसाय के रूप में अपनायो जान लाग रहे है। और इंगमा कठे न कठे अपनी सरकार भी जी को है, वह समय समय के ऊपर स्कीमा निकाल गए व्यवसायी जी को है बिन मदद करण लाग रही है। राजस्थान में सिरोही, मारवाड़ी, जमुनापारी, जकराना जिसी प्रमुख जी की बकरी की नस्ल ना है वे पाई जावे। सही देखभाल, संतुलित आहार और सही प्रबंधन बकरी पालन को एक लाभदायक व्यवसाय बना देवे। के तरीके छू आपा बकरी पालन छू आए ले इसका। सब छू पहला तो दूध बेच गए। बकरी को दूध जी को है वो बड़ो पौष्टिक हुआ है और देखो गए है कि बहुत सी बीमारियों के अंदर जिका डॉक्टर है वह भी आपने राय देवे के बकरी को दूध पीनो चाहिए। दुधारू जी की बकरियां बने बेच गए आप बकरियां से लाभ ले सका। इनके अलावा मांस जी को है वो भी बकरियों को बिके, बकरा जिका है वह मांस के रूप में बेचा जावे। ऊन खाल इन्हें बेच के भी आप आय ले सका। सब छू बढ़िया है इंगी जी की खाद हुए मिंगणिया जी का आपन कवा बकरी की बीट आ खाद के रूप में बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली हुए और बहुत ही

ज़्यादा कारगर सिद्ध हुई है जब आप आने खेतों में मां गाला। तो इंगी खाद बेच के भी जिका पशुपालक भाई है वह आय ले सके। इंग मां सबसे बढ़िया प्रबंधन आपने जरूरी है आवास को। बकरी को जिको आवास है बिंगी व्यवस्था को जिको जिग्या हुआ है वह छायादार होनी चाहिए, ढकेड़ी होनी चाहिए, की स्थान जिको है वो खुल्लो होना चाहिए और चारा और पानी की व्यवस्था बैठे बहुत ही बढ़िया तरीके से आप कर देवा तो पशुपालन जिको है वो अपनो कामयाब हो सी। बाड़ो जिको है वो पूर्व पश्चिम दिशा में बनावा ताकि सूरज की चीज की सीधी गर्मी है और ताप है भी हूँ आप बकरिया ने बचा सका। हर व्यस्क बकरी वास्ते एक ऊँ 1.5 वर्ग मीटर को जिको जिगह है बा चाहिए हुआ है। जिका नर बकरा है या छोटा बच्चा है दुधारू बकरियां और बीमार पशुओं से हमेशा आपने अलग रखनी चाहिए। तो बंगो आवास जी को है वो आपने अलग बनाना चाहिए। कोई भी अगर छोटो बच्चो या कोई नर बकरो या दुधारू बकरी है बीमार हुआ है तो बिना आप भी आवास के अंदर भेज देवा और अलग रखा। हमेशा सफाई व्यवस्था पर ध्यान देवा। बकरियां को जिको समूह है वह हमेशा समूह के अंदर ही रहे, इन वास्ते साफ सफाई जरूरी है ताकि बकरियां जी की है वह बीमार ना होए और कोई एक आधी बकरी जब बीमार है तो बीच बीमारी जी को है वह फैले ना। बर्तन आपां नियमित रूप से साफ करा। बर्तन को मतलब हो गयो जी हाँ पानी की आपां खेली बना दिया तो भी खेली ने लगातार समय समय के ऊपर आपां भी सफाई करता रहा और जे कोई चारो गिल्लो हो गयो है या बांस मारन लग गयो है तो भी चारे की भी आपां सफाई करा और दूर रखा। मिंगणियां को जी को निस्तारण है वो आपां रोजाना करा और बने बाड़े से दूर जी का गड्ढा है बंग में डालता रहा और बटे बेली करके आपां बेच सका। चारे और पानी की जी की खेड़ियां हैं बन आपा साफ रखा। आपा बात पहले भी कर ली जिका बाहरी और अंदर परजीवी हुए बंगी रोकथाम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है क्योंकि पशुओं के अंदर भी रोग हुए और बारिशों भी रोग आवे। बाहरी जिका परजीवी है जिया चिंचड़ है जुआ है अंगे प्रकोप वास्ते आपने दवाई को समय समय के ऊपर छिड़काव करना चाहिए। अंदर का जिका परजीवी है बाने बचाव वास्ते नियमित अंतराल पर आपने कृमिनाशक दवा जी की है बा अपनी बकरियां ने पशुधन ने प्याणी चाहिए। टीकाकरण जी को है वो नियमित रूप से आपने करवाना चाहिए। जके शू संक्रामक जी का रोग है बाने रोको जा सके जिया फिड़किया है माता रोग है मुंह पका खुर पका ए रोग ईसा रोग है जिका संक्रामक रोग है अन आपा टीकाकरण से दूर कर सका और सही समय पर सही जानकारी से आपने टीकाकरण करवाना चाहिए। संतुलित दानों चारों सप्लीमेंट आपा बिन देवता रवा। सप्लीमेंटू के मतलब हो के पशु में ताकत की जिकी चीज़ें हैं वह आपा देवता रहा जिका शू पशु के अंदर कोई भी कमी है तो वह पूरी होती रहे। एक बकरी की बात करा किसान भाइयों तो आपा प्रतिदिन बिंगे शरीर के वजन के हिसाब से 3.5% मात्रा के बराबर सूखो जी को खाद है वो आपने देना चाहिए। इनके अलावा खेजड़ी की सांगरी लूंग बेरी गोपालो या देसी बबूल की जी की पत्तियां हैं वह भी इन कमी ने पूर्ति कर देवे। दूध देने वाली प्रजनन योग्य जी की बकरियां हुए जी की ब्यान पर हुए वह तेजी से बढ़ने वाले बच्चे ने अतिरिक्त संतुलित आहार आपने देवता रहना चाहिए। 40 किलोग्राम वजन वाली जी की गर्भवती बकरी हुए बिना कम से कम 250-300 ग्राम दाणो आपने देना चाहिए। दुधारी बकरी ने 250 ग्राम दाणो निर्वाह राशन के रूप में और प्रति लीटर दूध पर 400 ग्राम दाणो उत्पादकता वास्ते आपने जरूरी हुए और वो आपने पशु ने खुआनो चाहिए। बकरियां ने पीण वास्ते प्रचुर मात्रा में स्वच्छ जल उपलब्ध कराना चाहिए। अब जियां गर्मियां आसी तो थोड़ो ठंडो पानी पियावा और सर्दियां के अंदर विशेष तौर से ध्यान रखा कि आपा थोड़ो न्यायो पानी जी को है वो पियावा। इनके अलावा सर्दियां के अंदर आपा बकरी ने खुल्लो भी छोड़ा। विटामिन डी वास्ते आपा ने बकरियां ने धूप दिखानी भी जरूरी हुए। सर्दियों के अंदर आपा 10 बजे लेके 5 बजे तक धूप में बिठा सका और गर्मियों के अंदर आपा 10 बजे तक बारह रागे और बिंगे बाद में बाड़ा में आपने बकरियां ने बांध सका या खुल्लो भी छोड़ सका लेकिन छायादार जिगियां आपा ने बाँ वास्ते रखनी हो सी। लवण धातु नियमित रूप से देवा विशेषकर जद जद पशु दूध देने लाग रहे हुए गर्भवती हुए या बिंगी वृद्धि होने लग रही है बी समय लवण धातु देना बहुत ही जरूरी है। बकरियां के बाड़े में
ਖਣਿਜ ਲਵਣਗੀ ਈਂਟ ਜਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਮਿਨਰਲ ਬ੍ਰਿਕਵਾਂ

0: बा रखा ताकि लवण दातुआ की जरूरत जिकी है बा पूरी होती रहे। बकरी पालन सही देखभाल और सही प्रबंधन के सागे एक सफल और बहुत ही लाभदायक व्यवसाय बन सके और बनन लाग रहे है। किसान भाइयों, बकरी पालन के व्यवसाय की आप जब बात पर आ गया तो विशेष तौर से ध्यान रखा के इंग माँ अपनी सरकार भी अपनी मदद करने लाग रही है। तो नज़दीक का जिका कृषि विकास केंद्र है या जठे भी इन चीज़ को प्रशिक्षण देवे, सबसे पहला आप बठे संपर्क करा और बकरी पालन को जिको व्यवसाय आप करना चाहवा बिंगो प्रशिक्षण जरूर लेवा। प्रशिक्षण लेने से आपने के होसी कि जिकी नई तकनीक है बिंगे बारे में आपने ध्यान पड़ेगो और के तरीके से आपने सही प्रबंधन करना है, सही देखभाल आप बकरी पालन की कर सका, बकरियां की सही देखभाल और सही प्रबंधन ही आपने इन व्यवसाय के अंदर सफल बना सी। के तरीके से बिना आप आहार देनो है और बी आहार ने अगर आपने घरे तैयार करा तो वो बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक और बढ़िया वेगो। आज के समय में आप देखा कि खेजड़ी की सांगरी लूंग ए चीज़ मिलनो बहुत दूर है, लेकिन फिर भी बेरीगो जी को पाल है, देसी बबूल की पत्तियां हैं, ए आपने सुलभ तरीके से मिल जावे और आप जद आ चीज़ों की व्यवस्था कर देंगा या बकरियां ने खुलो छोड़ांगा तो वह आप ही आप चरण भी लाग जाएगी। इन तरीके से आप प्रबंधन करके बकरी पालन का व्यवसाय ने कामयाब कर सका तो इन पर आप विशेष तौर से ध्यान देवा। अब हूँ चालू राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती हरा वास्ते। आज जानकारी दे रहे थे बकरी पालन एक लाभकारी व्यवसाय। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। प्रातः के 7:20 हुए हैं। समय है कार्यक्रम मानस कान का।
0: किसान भाइयों राम राम।

युद्ध में मेघनाद पवन पुत्र के घूंसे से क्षण भर के लिए मूर्छित हो जाता है। अन्य प्रकार से उनसे पार पाते न देख मेघनाद ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है। ब्रह्मवाण की मर्यादा तो रखनी ही होगी। मूर्छित होकर हनुमान नागपाश में बंध जाते हैं।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम मानस कान। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुप्रभात।

दोस्तों, किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि अर्थ का कुछ करो वरना अनर्थ हो जाएगा। यानी हम अपनी धरती का ध्यान अगर नहीं रखेंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। अपने पर्यावरण का यदि ख्याल नहीं करेंगे तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। पर्यावरण का अर्थ है सभी प्राकृतिक परिवेश, जैसे भूमि, वायु, जल, पौधे, पशु पक्षी, धूप, जंगल वगैरह वगैरह, है ना। तो स्वस्थ वातावरण प्रकृति के संतुलन को बनाए रखता है, साथ ही साथ पृथ्वी पर सभी जीवित चीज़ों को बढ़ने, पोषित होने और विकसित होने में मदद करता है। हालांकि अब कुछ तकनीकी उन्नति परिणाम स्वरूप निर्मित चीज़ें वातावरण को कई प्रकार से बना रही हैं और कुछ हो सकता है विकृत भी कर रही हैं, क्योंकि प्रकृति तो अपना संतुलन खुद बनाएगी ना। जैसे आजकल कृत्रिम वर्षा चल रही है कई जगह पर, तो कृत्रिम वर्षा तो हम करवा देते हैं लेकिन प्रकृति का संतुलन बिगड़ता चला जा रहा है। हम अपने जीवन के साथ ही साथ इस तरह पर भविष्य में जीवन के अस्तित्व को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि जिन स्थानों पर अगर बरसात नहीं हो रही है कुदरती रूप से, तो जाहिर है प्रकृति ने उस जगह के लिए कुछ और सोच रखा है। जैसे मरुस्थल, यदि मरुस्थल खत्म हो गए, थार का रेगिस्तान यदि खत्म हो गया, तो बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ कैसे बनेगा? पूरे देश का पर्यावरण संतुलन खराब हो जाएगा। प्रकृति के अनुशासन के खिलाफ गलत तरीके से कुछ भी करते हैं तो ये पूरे वातावरण के माहौल को, जैसे कि वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल को अस्त व्यस्त कर देता है। प्राकृतिक वातावरण के अलावा मानव निर्मित वातावरण भी, जैसे प्रौद्योगिकी, काम के माहौल या परिवहन की व्यवस्थाएं वगैरह वगैरह, ना ये सब भी तो प्रदूषण करते हैं ना। प्राकृतिक वातावरण के घटक संसाधन के रूप में उपयोग किए जाते हैं, हालांकि कुछ बुनियादी भौतिक ज़रूरतों और जीवन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इंसान द्वारा इसका शोषण किया जा रहा है। हमें हमारे प्राकृतिक संसाधनों को चुनौती नहीं देनी चाहिए। सस्टेनेबल ऊर्जा, अब क्योंकि थर्मल प्लांट जैसी बहुत सारे इस तरह के काम हैं जो कोयले से चलते हैं या डीजल से या गैस आधारित चलते हैं, उसकी जगह पर अब सस्टेनेबल एनर्जी, अक्षत ऊर्जा यानी सौर ऊर्जा हो गई या पवन ऊर्जा है, इसके माध्यम से काम चल रहा है, बहुत चल रहा है। पनबिजली परियोजनाएं बहुत सी नई बन रही हैं, बन चुकी हैं, काम कर रही हैं। तो जहाँ तक संभव हो इस तरह की ऊर्जा का हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए। खैर, बातें और भी करेंगे, पहले सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

दोस्तों, कोई भी व्यक्ति यूं ही महापुरुष नहीं बन जाता। महापुरुष यानी वो व्यक्ति जो आम आदमियों से अलग कुछ करके दिखाता है, वो व्यक्ति जो सामान्यतया जीवन नहीं जीता, उनसे कुछ अलग, कुछ अच्छा अपना नाम करके दिखाता है। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि यदि आप बिना मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे वगैरह में जाए अच्छे कर्म करते हैं, यानी एक तरह से कहें कि यदि आप नास्तिक व्यक्ति होकर भी अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपसे बड़ा कोई महापुरुष नहीं है। महापुरुषों के जीवन का अलग ही दर्शन है। जैसे महात्मा गांधी की बात करें तो देश की आज़ादी में मूलभूत भूमिका निभाने वाले, सभी को सत्य अहिंसा का मार्ग दिखाने वाले महात्मा गांधी ने अपनी वकालत की पढ़ाई लंदन से पूरी करी थी। बापू हमेशा साधारण सा जीवन जीते थे, जो बड़ा सामान्य था, और उस सामान्य जीवन अहिंसा के दम पर उन्होंने देश को स्वतंत्रता दिलाई, आज़ादी दिलाई। छोटे छोटे काम करके उन्होंने बहुत बड़े बड़े, जैसे अंग्रेज़ों पर बहुत बड़ा दबाव डाल दिया। तो उनके जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। उनके जीवन का सार यही है कि ज्ञान व्यक्ति और तथ्य के बीच की कड़ी है। बिना बुद्धि के ज्ञान का आत्मसतीकरण संभव नहीं है। दुनिया में क्या हो रहा है, इसके बारे में अपने ज्ञान को विकसित करना बहुत ज़रूरी है। खैर, बातें और भी करेंगे, पहले सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों, संसार का हर व्यक्ति हमेशा सुखी रहकर दीर्घजीवी बनना चाहता है। केवल पौष्टिक भोजन करके ही मनुष्य सुखी या स्वस्थ नहीं रह सकता। अच्छे मकानों में शान शौकत से रहकर मानव सुखी नहीं रह सकता। सुखी रहने के लिए स्वस्थ शरीर की आवश्यकता होती है, क्योंकि सुख और आनंद किसी भी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं होते, वे तो अपने हृदय से ही प्राप्त किए जा सकते हैं। शरीर स्वस्थ ना रहने से मन अशांत रहता है, मनुष्य का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। सर्व संपन्न होते हुए भी अस्वस्थ शरीर में कोई शांति प्राप्त नहीं कर सकता। स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम, प्रातःकालीन भ्रमण, श्रम इत्यादि की आवश्यकता होती है। प्रातःकालीन भ्रमण शरीर को स्वस्थ रखने में काफी सहायक होता है, इसलिए हमें अपनी आदतों में सुबह जल्दी उठना और भ्रमण करना यानी घूमना शामिल करना चाहिए। सुबह का मौसम भी बड़ा सुहावना होता है, मनोरम है, मंद मंद ठंडी हवा चल रही होती है, हृदय में आह्लाद पैदा हो जाता है। ठंडी हवा से फ्रेश एयर जिसे कहें, है ना, चंद्रमा जैसे ओझल होने की तैयारी में है।

तारे जैसे डूबने की तैयारी में हैं। पूर्व दिशा में उठती सूरज की लालिमा सूरज को उगने का संकेत दे रही होती है। ये सब सीन इतने मनोरम, इतने चित्ताकर्षक होते हैं कि इंसान का वैसे ही मूड बड़ा फ्रेश हो जाता है। भ्रमण से मिलने वाले फायदे अपनी जगह हैं और मूड का बहुत अच्छा हो जाना ये उसका एड ऑन हमें बाय प्रोडक्ट मिलता है। जब हम किसी पार्क में, किसी गार्डन में ओस पर नंगे पैर चल रहे हैं, उस समय न केवल हमारा शरीर स्वस्थ हो रहा है बल्कि मन भी अपनी जगह बहुत आनंदित होता है। खैर, बातें और करेंगे, सुनते हैं एक गीत पहले।

मन भी अपनी जगह बहुत आनंदित होता है। खैर, बातें और करेंगे, सुनते हैं एक गीत पहले।

0: तो दोस्तों, इस गीत के साथ ही आज का सुप्रभात कार्यक्रम संपन्न होता है। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार थोड़ी देर में हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था से हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक एलपीजी आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। और महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में मैनचेस्टर में शेफाली वर्मा के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मुलाकात की। बैठक के दौरान भारत की डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना आधारित क्रांति से अधिक सुलभ और किफायती बन रही वित्तीय सेवाओं पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से जीवन की सुगमता बढ़ रही है और बड़े पैमाने पर लोग सशक्त बन रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि उन्हें नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा से मिलकर प्रसन्नता हुई, जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता और वित्तीय समावेशन के लिए एक दीर्घकालिक वैश्विक आवाज भी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विश्व स्तर पर साझेदार देशों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रतिबद्ध है। महारानी मैक्सिमा संयुक्त राष्ट्र महासचिव की वित्तीय स्वास्थ्य संबंधी विशेष अधिवक्ता के रूप में भारत की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अपनी यात्रा के दौरान महारानी मैक्सिमा ने विभिन्न पृष्ठभूमि के लोगों से वित्तीय सेवाओं के साथ उनके अनुभवों और वित्तीय व्यवस्था से संबंधित उनकी चुनौतियों के बारे में बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतिम बार 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हर्मनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी वहां राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता अब तक भारत द्वारा किए गए सबसे व्यापक समझौतों में से एक है। लंदन में भारत वैश्विक मंच के ब्रिटेन भारत सप्ताह कार्यक्रम में श्री गोयल ने कहा कि इस समझौते से दोनों देशों के बीच करीब 48 अरब पाउंड के वार्षिक व्यापार को और बढ़ावा मिलेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के दान में हेराफेरी के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए 8 नामजद आरोपियों और

ने अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन की लिखित शिकायत पर दर्ज प्राथमिकी में अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, सुभाष श्रीवास्तव और श्रीराम शंकर यादव उर्फ टिन्नू के साथ साथ अन्य अज्ञात आरोपियों के नाम शामिल हैं। लखनऊ संभाग के आयुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता वाले विशेष जांच दल ने मंगलवार को सरकार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी थी, जिसमें कड़ी सिफारिशें की गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
1: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
2: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
0: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। एक रिपोर्ट।
4: एलपीजी की आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को महत्वपूर्ण राहत मिली है। यह बहाली एलपीजी आपूर्ति की स्थिति में हाल ही में हुए सुधार के बाद की गई है। इस बीच सरकार ने पीएनजी कनेक्टिविटी के विस्तार की प्रतिबद्धता दोहराई है। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
3: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने कहा है कि ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है।
5: अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की संचार निदेशक जूली कोजेक ने कहा है कि मजबूत घरेलू मांग के समर्थन से भारत की अर्थव्यवस्था अनुकूल बनी हुई है। मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2026-27 में भारत की अर्थव्यवस्था के 6.5% की वृद्धि दर का अनुमान बरकरार रखा है। ये अनुमान अप्रैल में किए गए संशोधन के अनुरूप है। सुश्री कोजेक ने कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि IMF पश्चिम एशिया युद्ध विराम और होर्मुज डमरू मध्य के फिर से खुलने को वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए सकारात्मक मानता है। उन्होंने बताया कि तेल की कीमतें अपने उच्चतम स्तर से नीचे आ गई हैं, लेकिन युद्ध से पहले के स्तर से लगभग 10% अधिक हैं। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
3: सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में वृद्धि की है। 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार पासपोर्ट संशोधन नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे।
6: पासपोर्ट की नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹5,000 होगी। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने की लागत ₹3,500 होगी और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए ये लागत ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹1,500 और 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट की लागत ₹2,000 है। खोए या क्षतिग्रस्त 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी कराने के लिए ₹5,000 का शुल्क देना होगा। वहीं खोए या क्षतिग्रस्त 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट के बदले में नया सामान्य पासपोर्ट जारी करने के लिए ₹6,000 का शुल्क लिया जाएगा। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
3: गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और मादक पदार्थों की रोकथाम से जुड़ी एजेंसियों के प्रतिनिधि मादक पदार्थों की तस्करी और दुरुपयोग से निपटने के प्रयासों को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे।

0: गृह मंत्री मादक पदार्थों के नियंत्रण पर 2026-29 का दृष्टि पत्र जारी करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से आज राष्ट्रीय नशा मुक्ति प्रतियोगिता की शुरुआत करेगा। ये प्रतियोगिता नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर शुरू की जाएगी। विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत इसे आयोजित किया जा रहा है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन प्रतियोगिता में 15 जुलाई तक भाग ले सकेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के उत्तर कुंजी को चुनौती देने के लिए विंडो खोल दी है। पुनर्परीक्षा 21 जून को आयोजित की गई थी। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी www.neet.nta.in पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कल नई दिल्ली में आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने पर वर्ष भर आयोजित कार्यक्रमों के समापन समारोह में भाग लिया। ये कार्यक्रम 1975 में घोषित आपातकाल के दमनकारी दौर को याद करने और लोकतांत्रिक मूल्यों को सुदृढ़ करने की गतिविधियों की श्रृंखला का समापन समारोह था। इस अवसर पर श्री शेखावत ने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र पर आए संकट का उल्लेख किया।
1: 25 जून 1975 को जो भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे वेदनापूर्ण दर्दनाक रात्रि थी, उस काले रात्रि को जब संविधान की आत्मा पर ग्रहण लगाने का प्रयास किया गया, न केवल संविधान के मुख पर कालिक पोतने का काम हुआ, अभी तो संविधान की आत्मा नागरिकों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की आजादी और नागरिकों के मौलिक अधिकार, उन सबको एक महत्वाकांक्षी शासक की अति महत्वाकांक्षा के चलते हुए स्थगित कर दिया गया।
0: कृषि और किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज उत्तराखंड के रुद्रपुर में खेत बचाओ अभियान कार्यक्रम में किसानों से बातचीत करेंगे। इस दौरान श्री सिंह कृषि क्षेत्रों का दौरा करेंगे, फसलों की स्थिति का जायजा लेंगे और किसानों से कृषि संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करेंगे। वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के अध्यक्ष जॉर्ज रोड्रिगेज ने कहा है कि भूकंप से मृतकों की संख्या 188 हो गई है, जबकि 1520 लोग इसमें घायल हुए हैं।
2: वेनेजुएला में कल आए दो शक्तिशाली भूकंपों से चारों ओर तबाही का मंजर फैला हुआ है। मलबे में अभी भी 200 से अधिक लोग फंसे हुए हैं। राजधानी कराकास में भूकंप में लगभग 3000 परिवार बेघर हुए हैं। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने आपात स्थिति घोषित कर दी है। अगले आदेश तक कक्षाएं और गैर आवश्यक गतिविधियां स्थगित कर दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेनेजुएला में आए भीषण भूकंप से हुई तबाही पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि भारत सभी प्रभावित लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। श्री मोदी ने वेनेजुएला को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। राष्ट्रपति रोड्रिगेज ने भारत की ओर से सहायता की पेशकश पर आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस मुश्किल घड़ी में यह भारत और वेनेजुएला के बीच मजबूत संबंधों को दर्शाता है। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशुराए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है। फीफा फुटबॉल विश्व कप में अमेरिका के न्यू जर्सी में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर बड़ा उलटफेर करते हुए नॉकआउट दौर में प्रवेश कर लिया है। इससे पहले आइवरी कोस्ट ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार प्रतियोगिता के नॉकआउट दौर में जगह बनाई है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 136 रन बनाए। जवाब में भारत ने 17वें ओवर में 5 विकेट पर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
3: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी सुर्खी बनाया है। पंजाब केसरी ने प्रथम पृष्ठ पर सचित्र शीर्षक दिया है, वेनेजुएला में भूकंप से तबाही, 10,000 लोगों के मरने की आशंका, अब तक 200 से ज्यादा शव बरामद। नवभारत टाइम्स की खबर है, वेनेजुएला में डबल भूकंप, पत्र लिखता है लोगों को भूकंप से कुछ ही सेकंड पहले एंड्रॉयड फोन पर चेतावनी मिली थी। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर वेनेजुएला का दर्द बयां किया है, भूकंप ने न केवल वेनेजुएला में भारी तबाही मचाई है बल्कि वैज्ञानिकों और नगर नियोजकों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। दुनिया में जिन क्षेत्रों में तीव्र भूकंप की आशंका है वहां विशेष सावधानी रखने की जरूरत है। ऐसे इलाकों में ऊंची और कमजोर इमारतों से बचना चाहिए। श्रीराम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पर जनसत्ता के शब्द हैं, नकदी और कीमती सामान गिरने में

0: गिनने में शामिल 8 प्राथमिकी। दैनिक भास्कर ने पासपोर्ट नियम में संशोधन को सुर्खी बनाया है। पासपोर्ट के नियम बदले, 14 साल बाद बड़ी फीस, 1 जुलाई से पासपोर्ट बनवाना ₹1000 महंगा होगा। दैनिक जागरण की खबर है, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, सरकार के दावे ने बढ़ाई NRC की जरूरत। लोकसत्ता ने भी सरकार का वक्तव्य दिया है, पासपोर्ट विदेश यात्रा का दस्तावेज। देशबंधु के शब्द हैं, NCERT की किताब में आपातकाल का अध्याय शामिल, लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती के रूप में किया गया है वर्णन।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की महारानी मैक्सिमा ने भारत में डिजिटल सार्वजनिक व्यवस्था में हुए क्रांतिकारी परिवर्तन पर चर्चा की। सरकार ने वाणिज्यिक LPG आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल किया, सभी प्रतिबंध हटाए। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि के दान में हेराफेरी के मामले में 8 नामजद और कई अज्ञात लोगों के विरुद्ध पुलिस में मामला दर्ज। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा, ईरान संघर्ष के आर्थिक प्रभाव और ऊर्जा की बढ़ती कीमतों के बावजूद भारत वैश्विक आर्थिक विकास का प्रमुख चालक बना हुआ है। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट दौर में प्रवेश किया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi met Queen Maxima of the Netherlands, the UN Secretary General's Special Advocate for Financial Health, in New Delhi yesterday. Mr. Modi stated that during the meeting, they discussed how India's digital public infrastructure-led revolution is making financial services more accessible and affordable, enhancing ease of living and empowering people at scale. The Prime Minister added that India remains committed to sharing its experience with partner countries across the world. Prime Minister Modi will be on a state visit to Seychelles from the 27th to 29th of this month to attend the Golden Jubilee celebrations of the National Day of Seychelles as the guest of honour. Prime Minister last visited Seychelles in 2015. External Affairs Ministry said in a statement that a contingent of the Indian Defence Forces, along with 2 Indian Navy ships, will participate in the celebrations. During the visit, the Prime Minister will hold talks with President of Seychelles, Dr. Patrick Hermeni, and review the full spectrum of bilateral cooperation and exchange views on regional and international issues of mutual interest. Prime Minister will also address the National Assembly of Seychelles and interact with members of the Indian diaspora. Union Home Minister Amit Shah will chair the 10th apex-level meeting of the Narco Coordination Centre in New Delhi today. The meeting, being organised by the Narcotics Control Bureau, NCB, will bring together representatives of central ministries, state governments and drug law enforcement agencies to review and strengthen efforts to combat drug trafficking and drug abuse across the country. On the occasion, Mr. Shah will release the vision document on narcotics control 2026-29, which has been prepared through extensive consultations with various stakeholders. The Home Minister will also release the NCB Annual Report 2025 and inaugurate newly built NCB zonal offices in Jammu and Guwahati. In a major relief to industrial and commercial LPG consumers, government has removed all sectoral restrictions on the supply of non-domestic packed LPG and restored supplies to the levels prevailing.

0: will now be allowed to carry javelins and bulky sports equipment on trains, even if they exceed the prescribed dimensions, according to the Railway Ministry, except pole vaults, informs the Pioneer. Another headline in the Pioneer writes, government expands QR code tracking to key drug categories to curb counterfeits. And finally, millions breathe easy. As the Times of India reports, CBSE students already in standards 7th to 9th with foreign language can keep their current combination till 10th. And with that, it's back to you, Anuja.
1: Thank you, Sarabjit. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi and Queen Maxima of Netherlands discuss India's digital public infrastructure-led revolution. Government restores commercial LPG supplies to pre-crisis levels, withdraws sectoral restrictions. FIR lodged against 8 named accused and several unidentified persons in connection with Ayodhya Ram Mandir donation case. IMF says India continues to be a major driver of global economic growth despite economic impact of Iran conflict and higher energy prices. In football, Ecuador advanced to FIFA World Cup knockout stage, beating Germany 2-1 in New Jersey. And in cricket, Shefali Verma powers India to 5-wicket win over Bangladesh in Women's T20 World Cup in Manchester. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है, मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। बैन अलावामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाजराई और तेल की कीमतों में इजाफे के इकतसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। आज आशूराए मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उम्दा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल नई दिल्ली में नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा अक़्वामे मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल की इक़्तिसादी उमूर की स्पेशल एडवोकेट से मुलाकात की। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि मीटिंग के दौरान उन्होंने इस बात पर तबादला ख्याल किया कि भारत का डिजिटल अवामी बुनियादी ढांचे पर मबनी इनकलाब किस तरह इक़्तिसादी खिदमात तक ज्यादा रसाई को मुमकिन और उन्हें किफायती बना रहा है, जिससे रहन सहन में आसानी में इजाफा हो रहा है और बड़ी तादाद में लोग बाख्तियार हो रहे हैं। वजीर आजम ने मजीद कहा कि भारत दुनिया भर में शराकतदार मुल्कों के साथ अपने तजुर्बात शेयर करने की खातिर मुसलसल पुरअज़्म है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 27 से 29 तारीख तक सेशेल्स के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वो वहां सेशेल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने 2015 में सेशेल्स का दौरा किया था। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत दिफाई अफवाज के एक दस्ते और भारतीय बहरिया के 2 जहाजों के साथ तकरीबात में शामिल होगा। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह आज नई दिल्ली में मनशियात की रोकथाम से मुतालिक तालमेल मरकज की आला सतह की 10वीं मीटिंग की सदारत करेंगे। मनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक ब्यूरो ने इस मीटिंग का अहतमाम किया है। इसमें मरकजी वजारतों, रियासती सरकारों और मनशियात की रोकथाम से मुतालिक कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे, ताकि मुल्क में मनशियात के स्मगलिंग की रोकथाम की कोशिशों का जायजा लिया जा सके और उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाया जा सके। इस मौके पर जनाब अमित शाह 2026 से लेकर 2029 तक के अरसे के लिए मुनशियात पर कंट्रोल से मुतालिक विजन दस्तावेज भी जारी करेंगे। सनती और कमर्शियल एलपीजी सारिफीन को बड़ी राहत पहुंचाते हुए सरकार ने गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की सप्लाई पर सभी तरह की बंदिशें हटा ली हैं और इसकी सप्लाई उसी सतह पर बहाल कर दी है जो मगरबी एशिया

0: वेनेजुएला में दो शदीद जलजले आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है। 1,500 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वाले लोगों को मलबे में तलाश कर रहे हैं। वेनेजुएला की उबूरी सदर डेल्सी रोड्रिग्स ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वहां कल 7.2 शिद्दत का जलजला आया था। इसके चंद सेकेंड बाद इससे भी ज्यादा ताकतवर 7.5 शिद्दत का जलजला आया। ये दोनों ही जलजले जमीन की सतह के बहुत करीब थे, इसलिए तबाही भी ज्यादा हुई है। कई मुल्कों ने इमदादी कोशिशों में मदद का वादा किया है। वेनेजुएला की सदर ने जलजले के तनाजुर में भारत की यगानगत को तस्लीम करते हुए कहा है कि वो मुश्किल की घड़ी में इश्तराक के जज्बे के साथ खड़ा है। आज आशूरा मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरे अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पैगंबर इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने हक व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था, उसकी याद में यह दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताजियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस का भी एहतमाम किया गया है जिसमें शहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खवातीन के आईसीसी टी20 आलमी कप में कल रात इंग्लैंड के मैनचेस्टर में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया। टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हुए बांग्लादेश ने मुकर्रा 20 ओवर्स में 136 रन बनाए। भारत के लिए राधा यादव ने 3 जबकि श्री चरनी ने 2 विकेट हासिल किए। इसके जवाब में भारत ने जीत का निशाना 16 ओवर्स और 5 गेंदों में हासिल कर लिया। शेफाली वर्मा ने 34 गेंदों में शानदार 53 रन बनाए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। अब हरमनप्रीत कौर की क्यादत वाली खवातीन की भारतीय क्रिकेट टीम को सेमीफाइनल में जगह पक्की करने के लिए इतवार के रोज ऑस्ट्रेलिया को हराना होगा। फीफा आलमी कप में आज सुबह सवेरे न्यूजर्सी स्टेडियम में ग्रुप ई के एक मुकाबले में एक्वाडोर जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। इससे कबल फिलाडेल्फिया में ग्रुप ई के एक मुकाबले में आइवरी कोस्ट ने क्यूरासाओ को 2-0 से हराया। वो पहली मरतबा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया। टीम के लिए निकोलस पेपे ने 2 गोल किए। निशानेबाजी में जर्मनी के सुहल में आईएसएसएफ जूनियर आलमी चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कल 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में मजीद 4 तमगे जीते और उसके कुल तमगों की तादाद 25 हो गई। मर्दों के 50 मीटर पिस्टल मुकाबले में राजचंद्रा ने कांसे का तमगा जीता जबकि कुमार योगेश चौथी पोजीशन पर रहे। योगेश, प्रतीक और अभिनव चौधरी पर मुश्तमिल भारतीय टीम ने टीम मुकाबले में चांदी का तमगा जीता। आखिरी रोज भारत ने 4 तमगे जीते और तमगों की तादाद 25 हो गई, जिनमें सोने के 7, चांदी के 8 और कांसे के 10 तमगे शामिल हैं, जिसके बाद भारत लगातार दूसरी मरतबा तमगों के मामलों में सरे फहरिस्त रहा। क्रिकेट में आज बेलफास्ट में पहले टी20 बैन अलावामी मुकाबले में भारत मेज़बान आयरलैंड का सामना करेगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6 बजे से खेला जाएगा। इतवार के रोज़ भारतीय टीम आयरलैंड के खिलाफ अपना दूसरा और आखिरी टी20 मैच खेलेगी। इसके बाद सुरेश अय्यर की कप्तानी में मर्दों की भारतीय टीम 5 टी20 मैचों की सीरीज़ के लिए इंग्लैंड जाएगी। इसका आगाज़ आइंदा माह की 1 तारीख से होगा। इसके बाद 3 एक रोज़ा बैन अलावामी क्रिकेट मैच खेले जाएंगे। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं अर्जुमंद अली खान।
1: शुक्रिया शगुफ्ता। राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब की शह सुर्खी है, वेनेजुएला में तबाहकुन जलजले सैकड़ों अफराद हलाक, 1,000 से जायद जख्मी, 10,000 से 1,00,000 के दरमियान अमवात का खदशा, दुनिया के कई मुल्कों ने मदद के लिए बढ़ाया हाथ। इसी खबर से मुतालिक रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, वेनेजुएला में जलजले से भारी तबाही पर दुख, वजीर आजम ने हर मुमकिन मदद का यकीन दिलाया। रोजनामा प्रताप की शह सुर्खी है, LPG की सप्लाई पर से तमाम पाबंदियां हुकूमत ने उठाई, अब लोगों को मामूल के मुताबिक गैस सिलेंडर दस्तियाब होगा। भारत अमेरिका मेगा डील जल्द, दुनिया की नज़रें 24 जुलाई पर टिकी हुई हैं। यह खबर रोजनामा प्रताप के सफ़े अव्वल पर नुमाया अहमियत के साथ मौजूद है। इसी सफ़े की एक और खबर है, दिल्ली की 270 किलोमीटर से ज्यादा सड़कों को नए सिरे से बनाया जाएगा, रेखा गुप्ता का बयान। रोजनामा प्रताप ने रेखा गुप्ता के इस बयान को भी नुमाया अहमियत के साथ शाये किया है कि दिल्ली के 75 CM श्री स्कूलों में नई सहूलियात

0: तैयार की जाएंगी। कुछ दीगर अहम खबरें इस तरह से हैं। हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का आगाज 20 जुलाई 2026 से कर दिया गया है। आखिरी तारीख 20 जुलाई 2026 है। 1000 उमरा जायरीन शाह सलमान के शाही मेहमान बनेंगे। मगरबी यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में, नए रिकॉर्ड कायम।
1: और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स की मलिका मैक्सिमा ने भारत के डिजिटल पब्लिक बुनियादी ढांचे के कायदाना रोल वाले इनकलाब पर तबादला ख्याल किया। सरकार ने कमर्शियल LPG की सप्लाई बहरान से पहले की सतह पर बहाल कर दी है। मुख्तलिफ तरह की बंदिशें हटा ली गई हैं। अयोध्या राम मंदिर अतिया केस के सिलसिले में 8 नामजद मुलजिमों और कई नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। बैनुल अक्वामी माली फंड ने कहा है कि मगरबी एशिया महाज़राई और तेल की कीमतों में इजाफे के इक्तसादी असरात के बावजूद आलमी सतह पर मुआशी तरक्की में भारत का अहम रोल रहा है। और क्रिकेट में मैनचेस्टर में खवातीन के T20 वर्ल्ड कप में भारत ने बांग्लादेश को 5 विकेट से हरा दिया, जिसमें शिफाली वर्मा की उमदा कारकर्दगी का अहम रोल रहा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़, FM 100.1 मेगाहर्ट्ज़ और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आइए सुने कुछ भजन।

अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। हिंदी में प्रादेशिक समाचार थोड़ी ही देर में हमारे जयपुर केंद्र से अनुप्रसारित किए जाएंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की पहली बारिश हुई। अगले 4 से 5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया, और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएम ई ड्राइव योजना के तहत प्रदेश के प्रमुख शहरों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में प्रस्तावित राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड को अधिसूचित करने की प्रक्रिया को गति देने के निर्देश दिए हैं। इससे भवनों में ऊर्जा की खपत को कम किया जा सकेगा। मुख्य सचिव ने इस कोड के अनुपालन मैकेनिज्म को भी प्रभावी बनाने के निर्देश दिए ताकि प्रदेश में भवन निर्माण के क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहन दिया जा सके। मुख्य सचिव ने यह निर्देश कल शासन सचिवालय में प्रदेश में एनर्जी ट्रांजिशन पर गठित राज्य स्तरीय स्टीयरिंग समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए दिए। मुख्य सचिव ने सरकारी भवनों में रूफटॉप सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के कार्य की समीक्षा करते हुए कहा कि इससे राजकीय कार्यस्थलों पर बिजली की बचत को प्रोत्साहन मिला है। बैठक में ऊर्जा सचिव आरती डोगरा ने ग्रिड की स्थिरता, सौर ऊर्जा परियोजनाओं के क्रियान्वयन सहित ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटा दिए हैं। आपूर्ति को पश्चिम एशिया संकट से पहले के स्तर पर बहाल कर दिया गया है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि संकट के दौरान निलंबित थोक एलपीजी की आपूर्ति को पूर्व स्तर से 50% तक बढ़ा दिया गया है। इससे वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को राहत मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से सेशल्स के 3 दिवसीय राजकीय दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि भारतीय रक्षा बलों का एक दल भारतीय नौसेना के 2 जहाजों के साथ समारोह में भाग लेगा। इस यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हर्मिनी से बातचीत करेंगे और द्विपक्षीय सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे। प्रधानमंत्री सेशल्स की राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे और भारतीय प्रवासी समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रविवार को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 135वीं कड़ी होगी। इसके लिए श्रोता अपने सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप और MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से भी विचार भेजे जा सकते हैं। सुझाव साझा करने का आज अंतिम दिन है।

0: देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर यह दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्यकर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। आज देश के विभिन्न हिस्सों में आशूरा ए मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने करबला में सत्य, न्याय और नेकी की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। प्रदेश भर में इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले जाएंगे। पाली में बांस, लकड़ी और रंग बिरंगे चमकीले कागजों तथा कपड़ों से ताजिए बनाए गए हैं। जुलूस को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। सवाईमाधोपुर में भी विशेष तैयारियां की गई हैं। मातमी धुनों के साथ विभिन्न मोहल्लों से ताजिए निकाले जाएंगे। इस दौरान समाज के लोगों ने छबील लगाकर ठंडे पेय पदार्थ पिलाने की भी व्यवस्था की है। चूरू में मुस्लिम समाज द्वारा बीती रात कत्ल की रात मनाई गई और शहर से 10 से अधिक ताजिए निकाले गए। इन जुलूसों में मोमिनों द्वारा हैरत अंगेज करतब भी दिखाए गए। केंद्र सरकार ने पासपोर्ट आवेदन शुल्क में बढ़ोतरी की है। नए पासपोर्ट बनाने या पासपोर्ट को रिन्यू करने के लिए अब ₹2,500 शुल्क देना होगा। विदेश मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नई शुल्क संरचना के अंतर्गत तत्काल श्रेणी में 36 पृष्ठों वाले नए पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क ₹5,000 होगा। 60 पृष्ठों वाले साधारण पासपोर्ट या पासपोर्ट को फिर से जारी करने का शुल्क ₹3,500 होगा और तत्काल श्रेणी के पासपोर्ट के लिए राशि ₹6,000 होगी। वर्तमान में 36 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का शुल्क ₹1,500 तथा 60 पृष्ठों वाले पासपोर्ट का ₹2,000 है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय मेरा युवा भारत के माध्यम से राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की जा रही है। इस क्विज का उद्देश्य युवाओं को नशे के हानिकारक प्रभावों के बारे में जागरूक करना और उन्हें स्वस्थ तथा नशा मुक्त जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करना है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। सवाईमाधोपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और चिकित्सा विभाग की ओर से कल नशा छोड़ो खुशहाल जीवन जोड़ो थीम पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। सवाईमाधोपुर में बाघ संरक्षण के प्रयास बढ़ाने और वन्य जीवों से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर मंथन के उद्देश्य से 5वां रॉयल रणथंबोर इंटरनेशनल टाइगर वीक ITW आज से शुरू हो रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कंजर्व इंडियाज फाइनेस्ट टाइगर थीम पर आयोजित ये कार्यक्रम 28 जून तक चलेगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों के वन्य जीव प्रेमी विशेषज्ञ शामिल होंगे।
1: 3 दिवसीय इस आयोजन में देश भर के नीति निर्माता, पर्यावरणविद, पर्यटन उद्योग और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि शामिल होकर बाघ संरक्षण तथा वन्य जीवों की सुरक्षा संरक्षण पर गहन मंथन करेंगे। इनमें पूर्व न्यायाधीश, पूर्व राज्यपाल, इकोलॉजिस्ट, फोटोग्राफर, मूवी मेकर अपने विचार रखेंगे। इसके अलावा वन्य जीव संरक्षण और पर्यावरणीय सरोकारों को मजबूत करने वाली संस्थाओं और व्यक्तियों को 11 विभिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया जाएगा। कंजर्वेशन के अतिरिक्त वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, पेंटिंग प्रतियोगिता होगी तथा अग्रिम पंक्ति में तैनात वन कर्मियों के लिए कल्याणकारी योजनाओं की शुरुआत भी की जाएगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर।
0: प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मॉनसून की पहली बारिश हुई। राजधानी जयपुर में करीब 1 घंटे तक

0: तेज हवाओं के साथ हुई बरसात से निचले इलाकों के घरों और दुकानों में पानी भर गया। कई स्थानों पर पेड़ गिर गए। इसके अलावा अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, लूणकरणसर, दौसा, धौलपुर, झालावाड़ और जोधपुर सहित कुछ अन्य स्थानों पर भी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि राज्य में आगामी 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उन्होंने बताया कि आज से जुलाई के पहले सप्ताह तक पश्चिमी तथा पूर्वी राजस्थान में सामान्य से कम वर्षा हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पीएमई ड्राइव योजना के तहत सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशनों के लिए रोड मैप तैयार करने के निर्देश दिए। केंद्र सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक एलपीजी उपभोक्ताओं के लिए गैर घरेलू पैक्ड एलपीजी की आपूर्ति पर सभी क्षेत्रीय प्रतिबंध हटाए। देश के विभिन्न हिस्सों में मुहर्रम पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है और प्रदेश के कई हिस्सों में प्री मानसून की पहली बारिश हुई। अगले 4-5 दिनों में कहीं कहीं मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। लोक संगीत के कार्यक्रम मरुमंगल में आज सुनिए राम कुमार नाथ और पार्टी के गाए कुछ लोकगीत।

एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिलें सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94144 67186।

मरुमंगल में आज आपने रामकुमार नाथ और पार्टी के गए कुछ लोकगीत सुने। हम आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

फिल्म बाजीगर का गीत सुनिए। विनोद राठौड़ और अलका याग्निक के स्वरों में गीत समीर का और संगीत अनु मलिक का।

कार्यक्रम गा मेरे मन गा आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। सुनते हैं कुमार सानू को, गीत समीर का, संगीत नदीम श्रवण का और फिल्म का नाम है रंग।

घोषाल के स्वरों में। आइए अब सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण को। गीत आनंद बख्शी का, संगीत आनंद मिलिंद का, फिल्म का नाम है जान।

0: दी
1: हाँ?
0: ये देख कैसे
2: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दिखा
3: हाँ मेरा फेवरेट कलर
2: हमेशा शॉपिंग
4: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है
6: आई नो पा सेव करो सही जगह निवेश करो रकम पर ब्याज मिलेगा जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा
4: आई नो ना
6: आरबीआई कहता है
7: तरो से ही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट
8: आ अब लौट चलें आइए इस फिल्म से उदित नारायण और अलका याग्निक को सुने गीत समीर का और संगीत नदीम श्रवण का

फिल्म चलते चलते का गीत सुनिए, सुखविंदर सिंह और साथियों के स्वरों में। गीत आदेश श्रीवास्तव का और संगीत पप्पू ढिल्लों का।

फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा का गीत सुनिए। किशोर कुमार के स्वरों में गीत इंदिवर का और संगीत बप्पी लहरी का।

एक दूजे के लिए। आइए इस फिल्म से लता मंगेशकर को सुने। गीत आनंद बख्शी का और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

फिल्म आवारगी का गीत सुनिए। लता मंगेशकर, मोहम्मद अजीज और साथियों के स्वरों में, गीत आनंद बख्शी का, संगीत अनु मलिक का।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। सुबह के 11 बज चुके हैं। अब प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम गीत माला।

गीतमाला कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार, नरेश वर्मा की तरफ से। दोस्तों, हम हाजिर हैं आपके संदेशों, आपके खतों और आपकी पसंद के खूबसूरत गीतों के साथ। पहला गाना सुनवाना चाहते हैं हम आप सभी दोस्तों को। आप हमारे दोस्त हैं जिन्होंने हमें संदेश भेजे हैं। सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाभली से गजानंद येले, नवदीप, विश्वदीप और अशोक येले। भाटापारा दतरंगी छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि, नोखेलाल वर्मा। आप हैं संभाजी नगर छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि और शीतल राजेश। गांव न्योला रामपुरा से हैं सुरेंद्र डीडन, सकीला डीडन, संदीप अनवर, अक्कू बाबरा और आपके बहुत से साथी। यही गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं। टेगोर गार्डन नई दिल्ली से आप हैं रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा और स्वीटी छाबड़ा। ये संदेश मिला है पद्म टॉकीज नेपानगर एमपी से सुदर्शन शाह, पल्लवी परखर, कुशल, नीति, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र शाह की तरफ से। आप हैं मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी और हिना कोसर। खोखरा वाली से संदेश लिखते हैं विनोद बारासा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारासा। हनुमानगढ़ से रज्जाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिसान खान। बागपत यूपी से संजय ढींगिया, नवन ढींगिया, अपार ढींगिया और आपके परिवार के लोग। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भक्त, किसु तासु, अर्णव आनंद, सत्यम आनंद। और पंजाब से वड़िंगखेड़ा से लिखते हैं मिंटू टॉमस, पिंकी लवली, आरती अरोड़ा। ये संदेश मिला है कलमंडी खुर्द झालावाड़ से अनूप सिंह नाथावत, धीरज सिंह सोलंकी, सागर पंवार, भानु प्रकाश पंवार और समस्त परिवार। पंजोनिया जालौन से संदेश भेजते हैं सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया। कॉल सिटी बरकाकाना से आप लिखते हैं अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी सहनी और मोहम्मद अफजल मलिक। बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ से संदेश मिला है ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा की तरफ से। बनमाला हनुमंता फाजिलका से आप लिखते हैं विनोद मायल, सीमा लक्षिता, यशिका विद्या देवी और मायल परिवार। और आप हमारे साथी हैं चक 15 पीएस से सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन, आदर्श पाल सिंह जोशन मेलबर्न और रोबिन सिंह जोशन वैंकूवर, कुलदीप सिंह टेलर। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं मेरे सनम फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपके लिए। और इस गाने में आवाज़

आती है आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी ने। कार्यक्रम का ये पहला गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं चंद अल्फाज के साथ, कि तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, तुम हकीकत नहीं हो हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो, और मैं तुम्हारे ही दम से ज़िंदा हूँ, मैं तुम्हारे ही दम से ज़िंदा हूँ, मर ही जाऊँ अगर तुमसे फुर्सत हो।

दोस्तों, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गाना आप सुनिए, हीर रांझा फिल्म से। और इस गाने को हम सुनवा रहे हैं आप सभी साथियों को, आपने संदेश भेजे हैं। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गोरी, ओम कुमार सुरलकर, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, पटेल नगर मलोड से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू जाजोरिया और साथ में गुड्डू, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम, दानिश आशिफ शेख। और ये संदेश मिला है कलाना भादरा से विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश युद्धव कड़वासरा, कृष्ण मायल, हनुमान सारण, कीड़ू राम जोया, लीलाधर स्वामी, कुंदन जाखड़ और सुनील शर्मा। आप हैं चक 14 PBSA, कुलविंदर सिंह, राजविंदर कौर, संदीप सिंह, जसकरण सिंह, हरदीप सिंह, मनराज विरक। अनूपगढ़ से संदेश भेजते हैं ज्ञानचंद, भगवती देवी, पूनम, मेहुल, कोमल, चंदन, अंकुश, रवि कुमार, लक्षिव, माधव। और आप हैं मंसूरी लिसनर्स क्लब मुंगीसापुर से, मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, सबिस्ता मोहम्मद नसीब, पलक लुबना और यश मंसूरी, रावर करनाल से ज्ञान भूषण शर्मा, सोमनाथ कालिया, और मानपुर साबित मुरादाबाद से शेख जियाउर रहमान, शेख अताउर रहमान, शेख हबीबुर रहमान। आपने संदेश भेजा है। और आप हमारे साथी हैं हीरा वाली फाजिलका से, आप लिखते हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, श्रवण रेणवा, हंसराज भाटिया, मनी राम, रणजीत राम, किरोड़ीवाल और आपके परिवार के लोग। परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा से अशोक ग्रोवर, प्रवीण ग्रोवर, नीति ग्रोवर, पवनीत ग्रोवर, विक्रमजीत ग्रोवर। ये संदेश मिला है दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल, किरण, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा की तरफ से, कोहला हनुमानगढ़ से आपने संदेश किया है, महावीर सुथार, रमेश सुथार, मोहन सुथार, भजन लाल, राम कुमार सुथार। और उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश, हिपरसोगा। जिला लातूर से आप लिखते हैं उस्मान शेख फौजी, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख। और आप हैं भादरा अनूपसर से गजानंद सारस्वत, ताराचंद सारस्वत, सोनू पवन, साहिल राघव, उपेश, मुरारी लाल शर्मा, ममता, मीतू, किनू, मदनलाल, फूसाराम मील, पंकज और हर्ष शर्मा। और आप हैं हमारे साथी सादुल शहर से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। आप सबके लिए आ रहा है ये बहुत ही खूबसूरत गाना, सुनिए।

दोस्तों, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गाना आपके लिए, हीर रांझा फिल्म से ये गाना हमने आपको सुनवाया। अगला गाना हम सुनवाते हैं आप सभी दोस्तों को, मंडी के श्री सिंहपुर से बिल्लू सूद, सुनीता सूद, चांदनी, आशीष सूद और विश्वजीत, घमंडिया से जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति, शिवम ढूकिया, सरिता, सचिन, अमना, तमना, साइना, विष्णु ढूकिया और बेबी ईवा धारणिया। ये संदेश मिला है हमारे साथी हैं गोविंदपुरा सीकर से दातार सिंह शेखावत, संगीता कंवर, तुषार सिंह, रिंकी शेखावत, और आप हैं सालपुरा बारा से, कवाई सालपुरा से लिखते हैं आप, सतीश श्रीवास्तव, श्रीमती प्रेमलता श्रीवास्तव, हिमानी, हर्षित, अभिषेक श्रीवास्तव, अरायण से डॉक्टर बनवारी लाल जयपाल, बिमला सोनू, ममता मोक्ष, दिशा सुशांत, विक्रम जयपाल और पूनम चालिया। आप हैं चक 10 SDP लालगढ़ जाटान से, रामेश्वर निराणिया, सुमन, दिव्या, नूतन, पंकज, मेहरचंद, हेमू, मनीषा और ब्रिजलाल निराणिया। आसाम से लिखते हैं हितेंद्र दास, और लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह और आपके बहुत से साथी। ये संदेश हमें मिला है जाखोद से, संभुदयाल खटक, बिमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक की तरफ से। अगला गाना हम आपको भी सुनाना चाहते हैं। आप हैं किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहन दास और आशा देवी, भोपाल से आप लिखते हैं मनीष श्रीवास्तव, हर्षिता और लाली श्रीवास्तव, एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कागड़ा, बबीता बोत, निखिल कागड़ा, तन्वी बोत, अंकित कागड़ा, और आप हैं अलीका डबवाली से रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत लखोत्रा, सरबजीत लखोत्रा, रानी सोनू और रजनी। पलारी छत्तीसगढ़ से संदेश भेजते हैं नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन, पराग टेलर, तनुजा देवांगन और ईशांत देवांगन। दुलापुर यूपी से लिखते हैं मुकेश कश्यप, शीतल, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। और आपने ये संदेश भेजा है नाई वाला हनुमानगढ़ से वेद मिड्ढा और अलका मिड्ढा, और आपने ये संदेश भेजा है कुलविंदर सिंह, सुखप्रीत, जसदीप, गांव 4M से आप लिखते हैं, अलीका डबवाली से बसंत सिंह चंद, कुलदीप गांधी, सुनीता, राजकुमार और आपके बहुत से साथी। चंडीगढ़ से लिखते हैं आप, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा और बिमला अनेजा। आप सभी साथियों के लिए आ रहा है ये बहुत ही खूबसूरत गाना, सुनिए। ये फिल्म है बैराग। ये आवाज़ें हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी की, सुने।

बात है तू हसीना बड़ी खूबसूरत है तू, मुस्कुराती हुई कोई मूरत है तू।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए हमने बैराग फिल्म से लिया, और आपके संदेशों के साथ साथ हमारे पास बहुत से हमारे साथियों के खत भी हमें मिले हैं। हम कुछ खत भी शामिल करते हैं कार्यक्रम में और आपके संदेश भी लगातार हम शामिल करते रहेंगे। ये खत हमें मिला है मोरी गेट दिल्ली शहर से कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार की तरफ से। गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, अभियानंद, परमानंद आर्य, पंकज, प्रमोद, रोहित और मोहित की तरफ से यह खत हमें मिला है। मंडी गोलवाला से लिखते हैं ब्रजलाल चौहान, नीरज कुमार चौहान और आपके परिवार के लोग। यह खत मिला है मसीता डबवाली से दर्शन लोट, सरगुन, इंद्रजीत, कमलजीत, मीनाक्षी,

सागर और हनी लोट की तरफ से। कार्यक्रम का अगला गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं, मंडी डबवाली से जेके बकोलिया, सुनीता बकोलिया, संजय अनिल और मीनू बकोलिया की तरफ से ये खत मिला है। गांधी चौक रोपड़ से आपने खत लिखा है। हरदेव मीका, बलविंदर बिरक, जैतेक बिरक और मीका बिरक, और आप हैं हमारे नियमित श्रोता। दौलतपुरा श्रीगंगानगर से आप लिखते हैं, शोलाल जी बेनीवाल, शांति बेनीवाल, मंजू मोहित और हेमंत बेनीवाल, साथ में अंजू बेनीवाल, और कुछ संदेश भी हम शामिल करते हैं इस गाने के साथ। ये संदेश मिला है मारहरा दरवाज़ा एटा से, नबी हसन अब्बासी, शहनाज, नवेद हसन, सुहेल हसन, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और रसीद वारसी। जमानिया गाजीपुर से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल। महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से लिखते हैं, रमेश नाचानी, भारती, विनीत, मिथिल, बाबू भाई चांदीवाला, और आप हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। ये संदेश हमें मिला है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी की तरफ से। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से आप लिखते हैं, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। यह संदेश मिला है समतानगर काष्टी से, लक्ष्मण जगताप, श्रेया शिंदे, मानसी शिंदे, निशांत जगताप की तरफ से। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से लिखते हैं, पी एस नावकर, निर्मला और विशाल नावकर की तरफ से संदेश मिला है। यही गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। आप हैं सदर बाजार कुरावली से, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा। गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से लिखते हैं, सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्षा नाजिया, आफिया इब्राहिम, सद्दाम और अदीब। और ये संदेश हमें मिला है भोपालगढ़ राजस्थान से, आप लिखते हैं, धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान, पूजा परिहार और आपके बहुत से साथी। बालोतरा से उम्मेदाराम, सुरेश कुमार, सुरतेश गोदारा और गुरमीत सिंह मीता, आप लिखते हैं साउथ दिल्ली से। सिद्धपुरा टाउन से संदेश मिला है जुबैर अली खान, सबीहा जुबैर, अंजुमन खान और आपके बहुत से साथियों की तरफ से। ढाणी लाल खान ओहर से आप लिखते हैं, जावेद खान जोया, अरमान खान, इमरान, सीमा बानो, विनोद, सोहेल खान, जुनेद खान, मुखराम, आरिफ खान, ईयान खान, अरशद खान, अरमान खान और बहुत से साथी। आप सभी साथियों को हम सुनवाते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गाना। आवाज़ है लता मंगेशकर की और ये फिल्म है अगर तुम ना होते। आइए सुनते हैं ये गाना।

दोस्तों आप सुन रहे थे ये बहुत ही प्यारा सा गाना। ये फिल्म थी अगर तुम ना होते। अगला गाना हम आप सभी साथियों को सुनवाते हैं। आपके खत हमें मिले हैं और साथ में आपके संदेश भी। श्रीगंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा की तरफ से ये खत मिला है। अगला गाना हम आपको भी सुनाना चाहते हैं। सादुल शहर से ओम प्रकाश चौहान, मनु प्रकाश, शिव प्रकाश और वेद प्रकाश चौहान ने यह खत लिखा है। आप हैं रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, ये खत मिला है। श्रीगंगानगर से बजरंग लाल शर्मा, जगमोहन सिंह अरनेजा, दिनेश कुमार शर्मा और नरेश कुमार शर्मा की तरफ से, माफ़ करें, ये खत हमने दोबारा शामिल कर लिया। और आप हैं मलोड से सतीश मिगलानी, सीमा, शाइना, अनमोल और गुरचरण ग्रोवर। और अब आपके कुछ संदेश हम शामिल करते हैं। संदेश हमें मिले हैं बुरज हनुमानगढ़ बस स्टैंड फाजिलका से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश और मदनलाल वर्मा की तरफ से। आप हैं आलोक कुमार खरे, संजय खरे, उत्कर्ष खरे, अरुण खरे, मंसूर। आप

0: दोस्तों, आप सुन रहे थे अभिलाषा फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना। अगला गाना हम आपको सुनवाना चाहते हैं, आपके संदेश मिले हैं। पीपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से दीपेश वर्मा, पूनम वर्मा, ज्योति और शिवांश वर्मा। ये संदेश मिला है अमरगढ़ सादुल शहर से कुलवंत मान, लखविंदर कौर, खुशप्रीत कौर, गुरनूर मान, हरविंदर मान और कुलविंदर कौर मान की तरफ से। गंज डुंडवारा से लिखते हैं शमसुल कमर राही, शाहिन फातिमा, अदनान फैजान, अन्नू खान, उस्मान अंसारी, कलीम अंसारी। आप हैं सेक्टर कुड़ी 5 सूर्य नगरी जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित, बेबी गर्वी, हिमाक्ष। बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य और मेघा मस्कीन। आपके साथ हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना और आपके बहुत से साथी। बहरवाला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया नैना जाखड़, हिमानी जाखड़, शिवम जाखड़। और ये गाना हम आपको भी सुनवाना चाहते हैं। मंडी केसरी सिंहपुर से आप लिखते हैं श्यामलाल, राजपाल, जयपाल, संदीप कुमार, चिमनलाल। और आप हैं पंचकुला सेक्टर 9 से आशु चुग, अश्वनी चुग, गोविंद चुग, टोनी दीवान, लव दीवान, राधे और भाविक ढींगरा। आपने संदेश भेजा है बीड शहर महाराष्ट्र से नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी, जयश्री महेत्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, राम निवास अग्रवाल, धनजय टवूल और पीबी कुलथे। गोविंदगढ़ माझीवाला से आप लिखते हैं राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मन्नू, शिव सेठी, करणपुरी, पाल मिस्त्री, करणपुरी, स्माइल टुटेजा और पवन गुज्जर। बठिंडा रोड मंडी डब्बाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग और तानिया नारंग। गंज डुंडवारा से लिखते हैं मास्टर खिल्लू परवेश, बेगम इमराना नाज, नवाजिश शेख, दानिश और अमन अफरीदी। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, महराज जहां। आप लिखते हैं आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। ये संदेश मिला है एटा रोड गंज डुंडवारा यूपी से बीपी गौतम और सारिका गौतम की तरफ से। और आप हमारे साथी हैं अनारकली बाजार जगराओं पंजाब से। आप लिखते हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गाविया मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। और आपके साथ विनोद पुरी और जयपाल यादव भी हैं। आप सभी साथियों को सुनवा देते हैं हम परिवार फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा गाना आपके लिए। आवाज़ें हैं महेंद्र कपूर और आशा भोसले की, सुनिए।
1: हाँ, गुस्से में तुमने प्यार का इजहार जो किया,

दोस्तों आप सुन रहे थे परिवार फिल्म का ये बहुत ही प्यारा सा दो गाना। और अब कार्यक्रम के आखिर में आपके खत, आप लिखते हैं नानकपुरी 29 PS से हरी, पदम बाना, अजय, विजय, प्रवीणा और आपके बहुत से साथी, और गोविंदगढ़ माझीवाला से अमृत बड़वाल, सहजीत बड़वाल की तरफ से खत मिला है। रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ से जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, JS नायक और शोभा नायक की तरफ से खत मिला है। आदर्श नगर मलोट से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी सौरभ और शाइना शर्मा, निवान शर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तार

ठाकुर, सूरज ठाकुर, सुजला ठाकुर, ज्योति ठाकुर, रेयांश ठाकुर की तरफ से खत मिला है। बगबुड़वा फतरिया से लिखते हैं नरेन नेताम, कुसुम प्रोनिका प्रोनामिका और उत्कर्ष नेताम, यह खत मिला है। शेरगढ़ टीबी से, मलोट से, बलराज राम कालवा, बेबी लक्ष्मी, कुदरीत कुदरत, मनप्रीत और मेवा सिंह के साथ हरप्रीत और शिवराज मान, मक्खू फिरोजपुर से हैं बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी और मुनीश बजाज, और आप हैं मुक्सर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंद्र कौर धीमान, रवनीत।

और मेवा सिंह के साथ हरप्रीत और शिवराज मान, मक्खू फिरोजपुर से हैं बिल्ला बजाज, हैप्पी कपूर फिरोजपुरी और मुनीश बजाज, और आप हैं मुक्सर से बाबू सिंह धीमान, बलजिंद्र कौर धीमान, रवनीत और निशु, और आप हैं खत मिला आपका सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, शुभ चंद्र बजाज और आपके बहुत से साथी। आप सभी साथियों को कार्यक्रम के आखिर में हम सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारा सा गाना, आप सुनिए। ये फिल्म है सलाम-ए-मुहब्बत।

ये गाना पसंद करते थे था लड़का से अजय सारस्वत अर्नव और इनके परिवार के लोग, और श्री विजयनगर से हनुमान तिवारी, मंजूबाला, दीक्षा, सुरेश, सोनू, और अब नरेश वर्मा को दें इजाज़त। नमस्कार। अभी आप सुन रहे थे फरमाइशी फिल्मी गानों का कार्यक्रम गीत माला। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12 बज चुके हैं, अब सुनिए कार्यक्रम विवरण।

अब से थोड़ी देर बाद आप सुनेंगे 12:05 पर कार्यक्रम होगा सैनिकों के लिए। चंद खूबसूरत गाने आप सुनेंगे। 12:30 पर सुनिएगा गज़लों का कार्यक्रम सुगम संगीत। 12:50 पर कार्यक्रम होगा खेत खलिहान। जानकारी का विषय रहेगा जैविक खादों का उपयोग। 1 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार हमारे आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से। 1:05 पर हम आपको सुनवाएंगे घर आंगन कार्यक्रम, और इसमें जानकारी के विषय रहेंगे तपाक से बोलने की आदत कितनी सही, पेट की चर्बी को कैसे कम करें, गर्मी में क्या क्या रखें सावधानियाँ। कार्यक्रम पेश करेंगी किरण शर्मा चंद लोकगीतों और लोक भजनों के साथ। 2 बजे आप सुनिएगा मिड डे न्यूज़, और 2:15 पर दोपहर समाचार आकाशवाणी दिल्ली से, और 2:30 पर हमारा कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत, और 3 बजे आप सुना करते हैं आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम।

शाम 5 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम युवा वाणी में। जानकारी के विषय रहेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध झीलें, ध्वनि प्रदूषण से कैसे बचाव करें, वर्षा जल का संरक्षण कैसे करें, और साथ में आज का इतिहास और चंद प्यारे फिल्मी गाने आप सुनेंगे। 6 बजे आपके लिए कार्यक्रम विवरण पेश किया जाएगा। 6:05 पर आप सुनिएगा सहराई की, और 6:30 पर हिंदी में समाचार, 6:40 पर जिले की चिट्ठी, 6:45 पर राजस्थानी में समाचार हम अपने आकाशवाणी के जयपुर अजमेर केंद्र से रिले करेंगे। 7 बजे आप सुनिएगा कार्यक्रम चौपाल में गीता रो गजरो, कार्यक्रम पेश करेंगे रमेश चांवरिया। शाम को 7:45 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत, और रात 8 बजे फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम होगा, एक ही फिल्म से जानकारी और गीतों के साथ। 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन, 8:45 पर समाचार संध्या, और 9 बजे न्यूज़ 8:09 आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से।

रात 9:15 पर आप सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत में चंद बेहतरीन गजलें। 9:30 पर आपके फ़ोन कॉल्स और पंजाबी गीतों पर आधारित कार्यक्रम होगा हेलो मिट्टी दी खुशबू। कार्यक्रम पेश करेंगे जसवीर सिंह और संयोजक नवीन सिसोदिया। रात 10:30 पर आपके लिए कार्यक्रम होगा फिल्म संगीत। रात 11:00 हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम अपने आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात 11:00 सभा समाप्ति उद्घोषणा होगी और कार्यक्रम विवरण अब संपन्न हुआ।

0: हमारे तमाम फौजी भाइयों और हमारे सुनने वाले तमाम अजीज श्रोताओं का बहुत स्वागत है कार्यक्रम में सैनिकों के लिए। मैं आप सुनिए चंद बहुत ही प्यारे खूबसूरत गाने आपके लिए।
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है,
1: मुझे कुछ कहना है,
2: मुझे भी कुछ कहना है।
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: पहले तुम,
1: पहले तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम,
1: तुम,
2: तुम। देखो जिस तरह लखनऊ के दो नवाबों की गाड़ी पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप करते निकल गई थी, उस तरह हमारी पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम, पहले तुम में ये मस्ती भरे रुत न चली जाए।
1: अच्छा मैं कहती हूँ।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे बॉबी फिल्म का ये दो गाना शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज़ में। आनंद बख्शी का गाना था, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। और ये है आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश, ये फिल्म है लव 86। आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। इस गाने में आवाज़ दी है कविता कृष्णामूर्ति और मोहम्मद अजीज़ ने।

श्रोताओ, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में आपने SH बिहारी का लिखा ये गाना सुना। फिल्म थी लव 86 और ये आवाज़ें थी कविता कृष्णमूर्ति और मोहम्मद अजीज़ की, और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। एक बार फिर से मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में ये दो गाना सुनिए। फिल्म है पति पत्नी और तवायफ़।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं आनंद बख्शी का लिखा खूबसूरत गाना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में, कविता कृष्णामूर्ति और मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ों में। और ये फिल्म है पति पत्नी और तवायफ। और इसी गाने के साथ नरेश वर्मा को दें इजाज़त। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सैनिकों के लिए। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। अब हम आपको सुनवाते हैं चंद खूबसूरत गज़लें।

दोस्तों, सुगम संगीत कार्यक्रम की पहली गज़ल आपने सुनी अनूप जलोटा की आवाज़ में, और अब सुनिए मेहदी हसन की आवाज़ में ये गज़ल।

दोस्तों आप सुन रहे थे मेहदी हसन की गाई ये बहुत ही खूबसूरत गज़ल, और ये है आपके लिए कार्यक्रम की अगली पेशकश।

सुगम संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं। अब सुनिए गुलाम अली की आवाज़ में ये गज़ल।

दोस्तों, आप सुन रहे थे गुलाम अली की आवाज़ में ये बहुत ही प्यारी सी गज़ल, और अब कार्यक्रम के आखिर में सुने चंदन दास की आवाज़ में ये गज़ल।

मैं साज हूँ ये याद रहे, मैं साज हूँ ये याद रहे, मेरे ही शेर मुझको सुना जाइए जनाब। ये आखिरी गज़ल थी, सुगम संगीत अब संपन्न हुआ।

ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 12:50 हो चुके हैं। अब सुने कार्यक्रम खेत खलिहान। खेत खलिहान में आज की जानकारी का विषय है, पशुओं को बरसात के मौसम में थनेला रोग से कैसे बचाएं। जानकारी

0: दे रहे हैं रमेश चावरिया, आइए सुनते हैं।
1: किसान भाइयों राम राम। किसान भाइयों बात करें आप पशुधन के बारे का माँ और देखा नहीं तो अब मौसम जो को है वो हड़को सो बदलाव पर है, क्योंकि गर्मी जो की है बा तो देखा तो उमस का माँ बदल रही है और कि गर्माश भी है कि थोड़ी सी नमी भी है मौसम का माँ। और मौसम लाला दिना किया बरसात की वजह से थोड़ा सो जो है वो नमी हो गयो और अब जियाँ जियाँ अपनों जो मानसून है वो धीरे धीरे अपने इस क्षेत्र का माँ प्रवेश करेगा तो धीरे धीरे बरसात को जो मौसम वो भी शुरू हो जाएगा और कदी कदास जगह है वे बादलिया वे भी अपने देखने मिलेगा और बरसात भी छांटा छिड़को जो को भी है वो भी अब धीरे धीरे होना शुरू हो जाएगा। तो ई टाइम की है कि बरसात का मौसम का माँ ई नमी वाला मौसम का माँ अपना पशुधन को अपने ख्याल रखनो बहुत ज़्यादा जरूरी है, चाहे पशु अपना दुधारू है चाहे पशु अपना बिना दुधारू है या फिर जगह छोटा बछड़िया है, बंग पूरा ख्याल रखागा बंग आहार को पूरा ख्याल रखागा तो क्या क्या पशुधन जो है वो बढ़िया और बेहतर बने रहो। पर आज आप बात कर सें आप बरसात का मौसम में ई बदलता मौसम में अपना जगह पशुधन है बा में कई तरह जियाँ बीमारियां हैं व्याधियां हैं भी लागने की संभावना रहे, बंग मां जियाँ खुरपका मुँहपका रोग है या फिर जगह दूसरा रोग है चिंचड़ है गोल्ड है ए भी लाग जाए। तो इनके अलावा आपने क्या कि जगह दुधारू पशु है बा पशुओं का माँ एक थनेला रोग भी बहुत कई बार आपने देखने मिले है और लागे भी है जो को रोग है और रोग जो है थनेला रोग जो है वो पशुधन ने कई बार बड़ो नुकसान भी पुगा जगह दुधारू पशु है बंग दूध भी घटा जाए और थनेला रोग जो है वो बिया तो दुधारू जगह पशु है बा में ही ज़्यादा लागे और इंगो जो को मुख्य कारण वो बरसात का मौसम का माँ ज़्यादा कई बार आपने कादो कीचड़ का माँ भी पशुओं ने रखना पड़े या फिर पशु जगह भी खड़े रहे तो वो भी एक कारण हो सके। और इंग अलावा जगह छोटा मोटा जीवाणु है भी पशु जब कादा में या कीचड़ में खड़ा रहे या फिर बैठा उठा बैठी करे तो बी टाइम क्या है कि जीवाणु जो है भी संक्रमण जो है वो बांगे थनागमा करना शुरू कर दिया है और नमी वाले स्थान पर ज़्यादा देर बैठने से जीवाणु जो है भी पशु के थनागमा दूध की जो की नलिकाओं हैं बंग माँ प्रवेश कर जाए और बीहू बाद पशु जो है वो ई रोग से ग्रसित हो जाए या फिर ई रोग से आप मांस का प्रभावित हो जाए। भाई लोगों एक जीवाणु जनित जो को रोग है वो ज़्यादातर पशु जियाँ अपने गाय है भैंस है बकरी है बंग माँ होने की संभावना रहे और आर्थिक नुकसान का तौर पर तो आप देखें यहाँ का नुकसान हो सका कि पशु जो है दुधारू है वो दूध घटा जाए या फिर पशु को कोई और ज़्यादा कोई दिक्कत शुरू हो जाए तो भी शुक्रिया का पशु जो को जान माल की भी हानि हो सके तो आर्थिक नुकसान तो इंगो है। इनके अलावा जहाँ इंगो जो दूध उत्पादन है वो तो बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाए बंद भी हो जाए पशु जो है वो टल जाए और थोड़ा बहुत दूध देवे भी है नहीं तो वो दूध जो है वो पीने के लायक भी को रहे नहीं एक तरह से देखा नहीं तो थनेला रोग होइडो है और वो दूध अगर आपने जगह मानस है मिनख जगह है भी पिएगा तो बे जी बीमारियाँ हैं बे मिनखा भी लागने की संभावना रहे बिमा कई तरह का जगह हारमोन्स जगह है बे नुकसानदायक माज है तो आपने इन चीज़ को ध्यान रखना कि अगर कोई बीमार पशु है चाहे कोई भी कहीं भी तरह रोग व्याधियाँ अगर पशु में है तो बिंगो जो दूध है जितने तक पशु ठीक ना हो और ठीक होने के भी 10-15 दिनों के बाद का अपन वो दूध जो है वो अपन इस्तेमाल करो चाहिए। अब इनका रोग होने का जो कारण है वे थाने बता दूँगा थनेला रोग जो है वो के त्रियाँ शू के कारण शू हुए अपना पशुओं का वहाँ तो थनांग में चोट लागणो कई बार थन जगह है भी कट जाए कई बार आप कोई इन्हें बिना पशु जो को वो भागा दाड़ी करे बो करे या फिर इन्हें बिना उठा बेटी करे कई बार कोई लकड़ में ला जाए कोई तार का मार जाए तो भी इस पशु का जगह थन है बे कट भी जाए और कई बार छोटी मोटी जी की चोट है बा भी ला जाए कई बार जो है टुकड़ी है या फिर कोई बछड़ो है वो आप छोड़ा और वो दांत लगा दे पशु के तो बीसू भी वो जो रोग है वो लागने की संभावना रहे और बीहू बादगमा जे पशु क्या कहें जहाँ गोबर गमा कीचड़ गमा पेशाब गमा बैठा है तो बीच वो संक्रमण जो है वो ज़्यादा बढ़ना शुरू हो जाए और दूध आप कई बार निकाले करा और ज़्यादा कई बार अंगूठा छू या फिर आंगलिया छू आप पिंचा तो बीचों भी क्या है पशु के थनागमा नुकसान होना शुरू हो जाए और ज़्यादा साफ सफाई कई बार आप ना रखा तो वो भी एक कारण हो सकेंगे अलावा और पशु को जो फर्श है वो आप बढ़िया साफ सुथरों रखना जरूरी है कई बार आप देखांगा बैठा लकड़ बंगा पड़ रहा है कई बार जगह कांटा कंटीला भी पड़ रहा है तो बे चीज़ें जी है भी अपने पशु जटा बैठा बैठा नहीं रखनी चाहिए इस क्या पशु के शरीर ने कोई भी नुकसान हो सके और थनांग ने आप पूरी तरह से दूध अपन कत्ते नहीं निकालना चाहिए आ एक बात पल्ले बांध लियो कह पशु को निचोड़ के दूध कत्ते ना निकाल अपन थोड़ा बहुत जो दूध है वो थना में रखना चाहिए ज़्यादातर निचोड़ के निकाल लें तो भी चुके हैं कह पशु को जो को शारीरिक मानानी कमजोरी जिखी है बाणी शुरू हो जाए तो अपन दूध जो है वो निचोड़ के नहीं निकालना चाहिए और इनके अलावा अपन टेम टेम पर अपना जगह नज़दीकी डॉक्टर जी है बाँसों भी थोड़ा सा पशु की जाँच पर करवाता रहना जरूरी है सब और जब भी अपन दूध निकाला तो अपन जो कि पांचों उंगलियां हैं बांगो पूरी तरह इस्तेमाल करके ही दूध निकालना चाहिए कई बार भाई लोग जो है या फिर जो कि माताओं बहन है

भी दूध निकाला तो भी ऊंचा नीचा हाथ करके दा भोग रहे, अंगूठा छू के बार उंगलियां छू ज्यादा ऊंचा नीचे पिंचा पांजी कर भोग रहा है। तो बेशु की है कि आपनों जो पशु को जो थन है या फिर जो दूध निकालना को जो तरीको है वो सही कोने नहीं, पशु को जो थन है बाने नुकसान हो सके, पशु जो वो दर्द मनाने लग जाए। तो दूध निकालना का भी कई तरीका है, बे तरीका जो भी आपने अपनाना चाहिए। अब इंगा रोग का लक्षण जो है बे ऊँ थन बताऊँ, जहाँ थनेला रोग का जो लक्षण है बे इंत्रियाँ है, लक्षणिक जगह थनेला रोग है, बंग पहचान जो को अब आप यहाँ तो आसानी से अपन देगी कर्ष का पशु जो को है थनांग में सूजन दिखाने ला जाए, पानी जो को है वो दूध जो को है वो पानी वाली तरह अपन पतलो दिखाई देने ला जाए हैं, या फिर पशु का जगह थन है गर्म होने के सागे सागे बा में छिचड़ियाँ जकी है बननी शुरू हो जाए। कई बार अपन देखे करा कै छोटे छोटे जकी गंठ हैं पशु के वाड़ा गमा अपने दिखने ला जाए, तो बे भी एक कारण हो सके चीज़ का। और प्रभावित थन को जो को दूध है वो खारो होना शुरू हो जाए, वो एक मुख्य लक्षण मानी जाए थनेला रोग को। और दूध दूधता टाइम अपन पशु जो को है दर्द या लातलड़ियों या लागे अपन महसूस कर ला रहे, लातलड़ियों करे बिना दर्द होने ला रहे है, तो भी अपन देख जानो चाहिए कि पशु के थनांगा में कट्ठी न कट्ठी कोई दिक्कत है, दर्द है। और इनके अलावा पशु बीमार

0: छोटे छोटे जो गिगंट हैं पशु के अवाड़ा का मापन है दिखने लाज है, तो बे भी एक कारण हो सके चीज का। और प्रभावित थनगो जो को दूध है वो खारो होनो शुरू हो जाए, वो एक मुख्य लक्षण मानी जाए थनीला रोग को। और दूध दूधता टाइम में अपन पशु जो को है दर्द या लाता लड़ियों या लागे है अपन महसूस कर ला रहे, लाता लड़ियों करे अभी दर्द होने ला रहे, तो भी अपन देख जानो चाहिए कि पशु के थना गा माँ कट्ठी न कट्ठी कोई दिक्कत है दर्द है। और इनके अलावा पशु बीमार रहना शुरू हो जाए, और खान पान भी कई बार कम कर दे निराचारी आप करा पशु जो है वो चरया को नहीं। और पशुपालक जो को भाई है बिना नुकसान भी बहुत बड़ो उठानो पड़ सके अगर आप टाइम सर भी मुझे कोई इलाज है भी मुझे की बंदोबस्त है अगर वो आप सही तरीके से ना करा। तो अगर ऐसे लक्षण है पशु के तो अपने दूध एक बार अड़को जो पीणो है भी दूध बंद कर देना चाहिए, बछड़ा ने भी वो दूध नहीं पियानो चाहिए। अपना जो नज़दीकी डॉक्टर जी है वहाँ कन जागे आप जो कि प्रारंभिक अवस्था है बिंग मान जो कि उपचार अपन टाइम सर कर लेवा नहीं, तो बीच किया कि पशु जो को है वो ज़्यादा नुकसान कौन बना नहीं, पशु के दूध की जो की जाँच है वह भी अपन करवानी जरूरी है। इनके अलावा जीवाणुनाशक जो की औषधियाँ है दवाइयाँ जो की है वे भी अपन औपचारित तरीके से किया का आपने जो जटा पशु बैठन आ रहे हैं बट्ठे भी अपन उपचारित करना चाहिए, या फिर पशु के थना में लगा के भी अपन पशु के जगह थन है भी बढ़िया तरीके से उपचारित करना चाहिए। कई बार आप देखे करें कि पशु जो है वो मुँह मार मुँह कर आपका आपके खुद के थना में, तो बिंगो भी अपन पूरा जाप्तो करना चाहिए कि पशु को जो मुंह है वो खुद का थना नहीं फूकना चाहिए, जीभ जो की है वो खुद का थना पर नहीं लागनी चाहिए। तो ये जगह बंदोबस्त है भी अपन करना जरूरी है। और इनके अलावा जो को दवाई लगाई है आप थना गामा या फिर जो कोई पशु ने दवाई दी है तो बिंग 48 घंटा तक की है कि अपन पशु को जो दूध है वो काम में नहीं लेना चाहिए। और उपचार जो है वो भी अपन करवाने तो पूरा उपचार करवाना चाहिए कि थोड़ा बहुत कई बार आप दवाई पानी टीका लगवा के यार छोड़ देवा, और बीच में क्या पशु जो है वो एक बार ठीक हो जाए और धीरे धीरे फिर बाद में अपन फिर बाद में भी लक्षण जो है भी दिखाई देना शुरू हो जाए। तो उपचार जो है वो चाहे लंबो चले चाहे थोड़ा चले लेकिन अपन पूरा करवाना जरूरी है। दवाई पानी जो की है वह अपन टाइम सर और पूरी दवाई देवा तो बीच में क्या बीमारी जो की है वह जड़ चूँ एक तरह चूँ बढ़िया कट जाए। अब पशु की जगह बांधने वाली जगह है भाई लोगों बट्ठे किया का अपन साफ सफाई को पूरा ध्यान रखना चाहिए। कई बार आप देखे कर पशु जो है वो ऊंची नीची जगह में बैठ रहे या फिर पशु जो है वो कई बार खड़ने भी जगह को नहीं कादा में कीचड़ में आलीडा में खड़ रहे, तो आम बातों का अपन पूरा ध्यान रखना है। जटे चिंचड़गी या लागे का संभावना है अपने पशु में लागे तो बट्ठे भी अपन तो जो जीवाणुनाशक दवाइयाँ हैं वो छिड़काव करना चाहिए। और इनके अलावा पशु को जो आहार है वो अपन पूरी तरह दुरुस्त और सही और संतुलित रखना जरूरी है। पशु को जो को वजन है भी हिसाब से बना आहार देना जरूरी है। दुधारू पशुओं को अलग तरीक़ों है अपन आहार देना को, तो ये जो कई बातें हैं आ बातों को अपन पूरा ध्यान रखना है। आंगो बढ़िया तरीका से ध्यान रख ही अपन पशुपालन कर सका, पर अब खेत कैरी का काम धंधा और भी करना सा हूँ चालू। राम राम सा राम राम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेत खलिहान। जानकारी का विषय था पशुओं को बरसात के मौसम में थनेला रोग से कैसे बचाएं। जानकारी दे रहे थे रमेश चावरिया। ये आकाशवाणी सूरतगढ़ है, 1 बजने वाला है। अब समाचार होंगे।
2: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया। आज देश राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को नमन कर रहा है। उनकी जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धांजलि देते हुए सोशल मीडिया संदेश में कहा है कि साहित्य के एक तेजस्वी प्रकाश स्तंभ के रूप में उनकी रचनाओं ने भारतीयों की कई पीढ़ियों में देशभक्ति और सांस्कृतिक गौरव की भावना जगाई है। उनका समृद्ध साहित्यिक योगदान आज भी लोगों को प्रेरित करता है और राष्ट्र निर्माण के प्रति हमारे सामूहिक संकल्प को मजबूत करता है। इधर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी चट्टोपाध्याय जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा है कि उनकी अमर रचनाएं और राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत विचार युगों युगों तक देशवासियों को राष्ट्र सेवा और मातृभूमि के प्रति समर्पण की प्रेरणा देते रहेंगे। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मुहर्रम आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर प्रदेश भर में जुलूसों के साथ मातम मनाया जा रहा है और मजलिसें आयोजित की जा रही हैं। राजधानी जयपुर में आकर्षक सजावट के साथ छोटे बड़े ताजियों के साथ बड़ी संख्या में मोमिन

0: मातमी प्रदर्शन कर रहे हैं। दिन भर निकलने वाले ये जुलूस और ताजिए रात में करबला में सुपुर्द खाक किए जाएंगे। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह में विशेष धार्मिक रस्में अदा की जा रही हैं। यहां दुआ, फातिहा और नियाज का आयोजन हो रहा है। जालौर में मेहंदी की रस्म अदा कर ताजिए मुहर्रम पोल से शुरू होकर विभिन्न मोहल्लों से गुजरते हुए बड़ी पोल पहुंचे हैं। यहां से इन्हें करबला के मैदान में ले जाया जा रहा है। कई स्थानों पर छबीलें लगाई गई हैं। सभी जिलों में जुलूस को लेकर स्थानीय प्रशासन ने आम लोगों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील करते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं और यातायात मार्ग में बदलाव किया गया है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया संदेश में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान त्याग, साहस, दृढ़ विश्वास और मानवीय मूल्य का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रीय नशा मुक्ति क्विज की शुरुआत की गई है। ये क्विज देश भर में विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा अभियान के अंतर्गत आयोजित की जा रही है। देश भर के युवा इस ऑनलाइन क्विज में अगले महीने की 15 तारीख तक भाग ले सकेंगे। इसी कड़ी में प्रदेश में भी कई कार्यक्रम हो रहे हैं। पाली में नगर निगम की ओर से बैनर और पोस्टर के माध्यम से युवाओं को नशे से दूर रहने और स्वस्थ, सुरक्षित तथा खुशहाल समाज के निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया जा रहा है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने सभी से जागरूकता फैलाने, नशा मुक्ति में लगे लोगों का समर्थन करने और युवाओं को नशे की बजाय आशा, स्वास्थ्य और उद्देश्य को चुनने के लिए प्रेरित करने के लिए एकजुट होने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से आम जन से नशा मुक्त समाज के निर्माण का संकल्प लेने की अपील की है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने आज से उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी को चुनौती देने का विंडो खोल दिया है। एनटीए ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि उत्तर कुंजी अब वेबसाइट पर उपलब्ध है। उम्मीदवार 28 तारीख तक प्रति प्रश्न ₹200 शुल्क देकर प्रश्नों को चुनौती दे सकते हैं। चुनौती स्वीकार होने पर यह शुल्क वापस कर दिया जाएगा। गौरतलब है कि मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की ये परीक्षा इसी महीने की 21 तारीख को आयोजित हुई थी। देश को पोलियो मुक्त बनाए रखने के उद्देश्य से रविवार को राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके तहत जन्म से 5 साल तक के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार राज्य के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों, आंगनबाड़ी केंद्रों और विशेष रूप से बनाए गए पोलियो बूथों पर ये दवा पिलाई जाएगी। इस दिन खुराक से वंचित रहे बच्चों को 29 और 30 जून को स्वास्थ्यकर्मी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर दवा पिलाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, DRM चैनल 909 किलोहर्ट्ज़ पर, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 1:05 हो चुके हैं। अब कार्यक्रम सुने घर आंगन। आज का कार्यक्रम पेश कर रही हैं किरण शर्मा। आइए सुनते हैं।

घर आंगन सुणन आली सगळी भेणाने भाई केणांगा हिवडेस्यू मोकळा मोकळा राम राम। और सुनाओ बहणो, किया हो? सगळी तकड़ी और राजी खुशी तो होली? परिवार भी सगळांगो राजी खुशी हो सी। ओ हो सी भी क्यों को नहीं, देखो परिवार में जे सगळा रल मिल रेवे तो घर परिवार में कि कह के भगवान गो लक्ष्मी माता जी गो वास हो जाए, है नी। और देखो बहनों, कदे कदास देखो बेड़ा बांडा के है कि खड़क भी जावे। सियाणपणो तो वही है कि की त्रियां की रीस साल आपने नहीं राखनी चाहिए। परिवार का आपसी बर्ताव थोड़ा कम जरूर होया पण के है कि सफा खत्म को नहीं होया। देखो जी को अपनो आपसी नेह है वो के है परिवार ने मजबूत बनावे। आ बात तो देखो बहनों थे भी जानो, बहनों स्नेह वो अनमोल धन है जिको कोई बाजार में नहीं मिले। और देखो बहनों ओ जिको नेह है नी इस यूं के है कि रिश्ता में मिठास आवे। जद भी कदे देखो घर परिवार में जिके भी घर परिवार में स्नेह हुए आपस में तो हर दुख के है कि हड़को लग गए। और कोई भी अपने घर में खुशी हुए तो बदुगनी हो जाए। माँ बाप रो स्नेह, भाई बहन गो स्नेह, दोस्तां रो स्नेह, इन सब चूंकि है अपनो जीवन सुंदर बने। और देखो बहनों स्नेह की डोर जितनी भी मजबूत हुए नी रिश्ता में बीती ज़्यादा मजबूती आवे। आजकल देखो भाग दौड़ भरी जिंदगी में कई बार के है आदमी अपना से दूर हो जाए। पर याद रखो दो मीठा बोल और थोड़ी सी परवाह और थोड़ो समय देनो भी के है स्नेह जतावण को एक फूटरो सो तरीको है। जिको मन स्नेह से भरियो हुए वो कदी भी देखो बहनों की कोई बुरो कौन तकावे, है नी। और देखो स्नेह मनुखता की पहचान भी है, ई प्रेम विश्वास और अपन तव ने बढ़ावे भी है। तो आओ बहनों आज आप वो संकल्प लेवा कै परिवार पड़ोस और समाज में स्नेह भाईचारो और प्रेम को संदेश फैलावा। स्नेह रिछा में कि है हर रिश्तो फले फूले, स्नेह और दया भाव इंसान को सिंगार हुए। स्नेह इसो रखो कै जका ने जग सिरावे। अब वो स्नेह चाहे टाबर सागा हुए चाहे धनी लुगाई गो है। और हाँ बहनों थे एक बात तो सुनी है कि एक करके है कि एक हिरण हिरणी आ बेकठे जंगल में मरिया पड़िया। तो कोई थारे मेरे बरगी बेणी बेछाणा चुगन गई जंगल में तो वहाँ देखियो कै हिरण हिरण जिकी हिरणी है बे दोनों ही मरिया पड़िया है। ना ही तो देखो वांग शरीर पर कोई घाव है और ना ही कोई तीर लग गेड़ो है तो ये मरिया किया। तो इन दरसाव ने देख गए बहुत दोनों में एक जनी बोली कै सुन बैन पास न दिस है पार थी अगन न दिस है बाण हूँ त न बुझू हे सखी की कर तजा प्राण। तो पूछे ना कि कोई शिकारी भी नजर को नहीं आवे ना ही कोई देह में लागेड़ू बाण दिखे तो मरिया किया। तो दूसरी सखी बोली कै जल थोड़ो ने गणो लाग्यो प्रीत रो बाण तू पी के उता दोना तजा प्राण। बहनों केवण रो मतलब वही है कि स्नेह हमेशा साचो और खरियो राखनो चाहिए। और आपा बात तो अभी और भी कर सियाँ थे सुनो प्यारो सो भजन और हूँ थार खातर बना लियाऊ चा। तो कठी जानो को नहीं बोलो हताई और भी कर सियाँ तो आओ सुना आओ भजन।

0: दी हाँ? ये देख कैसे
1: हैप्पी बर्थडे भाई
0: दीका
2: हाँ मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग
3: आई नो माँ बट खर्चा करने की भी यही उम्र है राइट
4: सेविंग करने की भी यही

0: रहे।
1: आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
0: आई नो ना।
1: RBI कहता है,
2: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। बहनों, थे सुनन लाग रहे हो थारो आप गो मनपसंद कार्यक्रम घर आंगन, और मैं हूँ थारी बहन किरणा बाई। तो बहनों, आज आप बात करा एक इसी समस्या की, जिकी आजकल की है कि घना लोगों ने परेशान करन लाग रही है, बा है पेट की चर्बी। तो देखो बहनों, पेट पर बढ़ती जिकी चर्बी है, बा ना केवल अपने रूप रंग ने बल्कि अपने स्वास्थ्य पर भी असर करे। तो आओ आप जाना भी के कारण है, इसी के चीज आप करा, किसी के आदत अपनावा, जी चूंकि है कह जिकी अपने पेट की चर्बी है बा कम करी जाए। तो देखो बहनों, इन पर आप बात करा, तो सबसे पहली तो आपने के करना है, दिन गए जल्दी उठ गए और चला फिरी करनी है, है नहीं? तो देखो बहनों, दिन गए बेगी उठ गए, झांझर के उठ गए, जो 4 या 5 बजे उठ गए, आप देखो गाँव बियाँ भी बेगी उठी जावा, तो चला फिर देखे से बहनों भी किरना भाई आके बात को, मैं तो दिन गए उठा जना बाजन लागा, है नहीं? तो वो बाजनों अलग हो है, और एक आपने देखो आप सीधी घुमाई कर गया वा नहीं, तो वाह अलग हो है, क्योंकि बाजनों देखो काम धंधा उतनाव हो है, वो कर लियो वो कर लियो, नहीं दिमाग में इतनी आप समस्या ले गए, तनाव ले गए, आप काम करा, और एक आप देखो अपने स्वास्थ्य ने मन में ले गए भी आप स्वास्थ्य सही रहे, नहीं बिना ले गए आप घुमाई करा, तो वह अपने पर ज़्यादा असर करे। इन वास्ते की है, दिन गए आपने बेगी उठ गए और थोड़ी हल्की जिया भी दौड़ लगानी रे, या योग करनो, या कोई व्यायाम की हल्को फुल्को व्यायाम करनो, वो आप कर सी, तो इशू के है कि आपने जी पेट की चर्बी है बा कम मुझे ली। और दूसरी बात आ है कि आपने घर गोबड़ो ही खाणो खाणो है, है नी? जिया बाजरो है, जो है, ज्वार है, दाल है, हरी सब्जियां है, सलाद है रे, छा है, और जिका जिका मौसमी फल है नी, वहाँ पर आपने ज़्यादा जोर देनो है। तो भी चूंकि है कि आपने फायदो सी और पेट की चर्बी कम मुझेगी। और एक आप दिन की शुरुआत करानी, जिकी दिन गए उठ गए, तो आपने की है कि जिको गर्म पानी हुए नी, एक गिलास गर्म पानी ले गए बिंग माँ आप आधो नींबू निचोड़ गए और वो पीणो चालू कर दिया नहीं रोज, तो भी चूंकि है कि पेट की चर्बी कम होन लाग जाए, है नी? और एक बात आ है कि जे आपने खाने पीने मूँ आप मिठू निकाल देवानी, तो आपने शरीर पर जिकी भी अतिरिक्त वसा यानी कि जिकी भी चर्बी है बाई कट्ठी होन लाग रही है नी, तो बा धीरे धीरे की है कि आप ही पिघड़न लाग जाए और आप के फिट हो जाए इंजमा। इन वास्ते जिकी तली भुनी चीज़ा हुए जिया रे, अब कई बेड़ा को जी करे कि घर वाला जार जावे तो देखियो समोसा ले आइयो, कचोरी ले आइयो, है नी? और आजकल तो टाबर भी कैसी के अपने वो आवे नी, आजकल बा देखो थाली सी बा मोटी रोटी सी, ओ पिज्जो है नी, बी खातर भाई पापा पिज्जो ले रही हो, तो इसी चीज़ें आप खावांगा तो बी सी अपनो स्वास्थ्य तो प्रभावित होएगो, सागे देखो फिर पेट की चर्बी बदेगी और के होएगो। और एक जिकी मिठाइयाँ खावा, है नी? मिठाइयाँ हुए तो बे भी अपने चर्बी को सार मिठो भी मिठी जिकी भी चीज़ है नी, मिठो तो चर्बी को कारक ही है, भी अपनी चर्बी बदेगी बदेगी, जितनी जितो ज़्यादा आप मिठो अपने भोजन में या पीण गए में आप उपयोग करांगा। और देखो जिकी बाहर की चीज़ा जी दुकाना पर बोतल बंद चीज़ा मिल रहा है नी, जिन्हें आप टब्बर के कोल्ड ड्रिंक है नी, बे लिया वे, या फिर जहाँ बंद पैकेटा में जिकी चीज़ा वे बे खावे, है नी? बे छोटा तक खान लाग जाए। और देखो आजकल तो मोटोड़ा नहीं बिसा चीज़ा को डब्बे बिसी अच्छी लागे, घरे बनेड़ी चीज़ा तो अच्छी को लागे, है नी? तो बे जिकी ज़्यादा बे चीज़ा खासी तो चर्बी आप ही आप बदेगी, तो इन वास्ते की है एक तो तली भुनी और मिठी चीज़ा और दुकान वाली चीज़ा आपने के अपने जिंदगी मूँ एक पासे करनी है, जे आपने पेट की चर्बी कम करनी है, है नी? जिकी बेन ने पेट की चर्बी कम करनी है, भाई ने कोई भी हुआ है, तो बने ये चीज़ा आपकी जिंदगी मूँ निकाल फेंकनी है, है नी? और फिर है खूब पानी पीणो, है तो आपने दिन में जितो भी हो सके नी बिथन भाव है, इं कोई भी अणभाव तो पी बो करो, वो तो भी देखो खराब भी कर जे, है नी? तो जितो आपने भी तिस लागे नी बिया भी आपने पानी पीन तो रेणो चीज है। अरे एक बहनों, पानी पीण वो तरीको है नी अपनो भी बहुत गलत हो गयो, आजकल कह दे भाई रे गोडा दुख है मारा पग दुख है, तो भाई इं कारण ही कहवे आजकल, पता है डॉक्टर भी कहवे भी जे आप खड़े हो गए पानी पीछा नी तो बे गोडा अपना

बनो बाबा रामदेव जी को आपा सुने फूटरो सो भजन। तो देखो आपा ने बाबा रामदेव जी हर मुसीबत से बचावे, पण जे बदलता है मौसम माई देखो, जे कोई आपा ने बीमार हो जावा या और हो जावा, तो बिम तो देखो भगवान भी की कौन कर सके है। बिम तो आपा ने खुद नहीं की है कि सावधानी रखनी उसी, क्योंकि देखो मच्छर ने मारण खातर कदी की है कि शक्तिमान को उपयोग कौन करी जाए, यानी कि मगेन को मतलब है भी थोड़ी

बहुत की दुखा चिंती हुआ भी मैं आप कह दें ये भगवान मन सही कर दे तो बा चीज सही कौन नहीं हुआ है नी। बी खातर तो आपन उपाय करना चाहिए। अब देखो जी मौसम बदलन लाग रहे है नी। अब देखो कठी बरखा हो जाए कदी तो कदी आंधी आ जाए कदी तूफान आ जाए कदी की हो जाए। तो भी मैं कह है कि आपने कि सावधानियां रखनी पड़ सी जनाई जागे के है कि आप सही रेसियाँ नहीं तो क्या इसे बदलते मौसम आई जियाँ सर्दी है जुकाम है बुखार है एलर्जी है और कई ऐसी चीज़ें जिनका संक्रमण रो कारण बन सके। तो इन वास्ते की है कि आपने बदलते मौसम आई आपनों अपने परिवार को है नी अपने आसे पासे जी जनता है बाँ सब गलों की है कि ध्यान रखना चाहिए। एक तो देखो अब कई बार की है कि आजकल कठी ओला पड़न लाग रहा है कठी मीह आन लाग रही है। तो इंग माँ की है कि आपने एक तो इन चीज़ को ध्यान रखना है कि मच्छर मुच्छर बोला उज्जे तो जे छात पर जे घड़ा गुड़ा पड़े है कोई और पड़े हुए है नी जो बाँ में की है पानी कट्ठो उज्जे तो बाँ पानी का माँ मच्छर है जिका आपका इंडा दे दे तो बीसू की है कि और मच्छर पनपे और ये अपने रोग को कारण बने। तो आपन चाहिए कि आप छत्ता साफ रखा जिकी छत के ऊपर कोई कीम प्रकार गड़ी हो या कोई टुटेड़ो समान पड़े हुए है तो बिन आप की है कि बट्ठे से हटा देवा और जियाँ दरड़ी है कोई बारे पानी कट्ठो है तो बट्ठे कोई जियाँ मिट्टिया तेल रे कोई और चीज़ की दवाई जियाँ है मच्छर वाली तो बिंगू आप छिड़काव करिए बिन आप ध्यान रखा। और देखो बहनों साफ सफाई को तो बहुत ज्यादा ध्यान आपने रखना पड़ सी क्योंकि जे साफ सफाई को ध्यान नहीं रखांगा तो आपा बीमारी की चपेट में जल्दी आ जा। तो इन वास्ते की है कि आपने जिन्ना भी आप हाथ धोवा तो साबण छू धोवा है नी और आप जी आप रसोई में बेणू काम करा तो हर एक चीज को आप साफ सफाई को ध्यान रखा क्योंकि देखो अब छिपकलियां और ये तो बहुत ही हुआ है तो आप सारी चीजें ढक के रखा अच्छी तरह है नी। और क्योंकि अब देखो जे मैं बरस गयो पहले दिन जी मैं बरस है तो भी लाजमी है भी अगले दिन फिड़कला तो आई सी और जो दिन में मैं बरसू है तो आथन फिड़कला जरूर आ सी। तो इन वास्ते कि आपन टेम सिर के है कि खाणो बना गए और खा पी कर गए आपको निश्चिंत तौर सो जानो चाहिए नहीं क्योंकि देखो फिर के है कि जी जिनावर आपन सागे थोड़ी खाना है बे है नी। तो इन वास्ते जना भी यहाँ लग गए नहीं एक तो देखो मौसम को कि ठा कौन लग गए पर कई ऐसी चीजें जिको आप ठा लाग जाए क्योंकि आजकल तुम फोन में बता दे भी आज मी आ सी खुद इन पर देख सका आप तो वही चीज़ को अपन ठा लाग जाए जे यहाँ पत्तो लाग जाए नहीं भी आज मैं आ सी और आ सी तो टेम सिर आपको काम करके और नक्की हो जावानी। तो बीच चुकी है कि आपनों सागे तो देखो काम बेगी हो जी और सागे के है कि टेम सिर सो सियाँ तो के है अच्छी नींद ले सियाँ अच्छी नींद ले सियाँ तो आप स्वस्थ रह सियाँ क्योंकि पूरी नींद भी आपने जरूरी है जी। अभी आप बात करी है नी तो जिया बडेरा है नी बांगू भी आप ध्यान रखा खा जिया कपेरण उडन का जिका कपड़ा है बांगू भी ध्यान रखा। आजकल कूलर लगा के सोवा तो क्या है कि जे मैं बरस छेड़ हुआ है तो वो ठंड लागन लाग जाए तो झड्डो जिया कामली हुआ है और है बे आपा अपने कन्ने रे कई बार टाबर के बेड़ा होगी रात में पड़िया रहे है नी क्योंकि मैंने बिया तो देखो जाग आवे को नहीं पालो भी लग गए और अपने वर्गी कई बार की है कि मावा थकेड़ी सो जाए तो बने जे कई बार देख ले जंतु उड़ा दी हुए तो अरनी तो टाबर पगाने पड़े हुए नी तो टाबर ओढ़ भी ले हुए बडेरा आपा पगाने रख देवा क्योंकि आपा तो देखो अपने तो यही हुए नींद इडर बिडर ही रही हुआ इन्ने बिन्ने नहीं भी कदी आपन जाग आस के। तो इन वास्ते की है कि छोटी छोटी जी खाण पीण की एक तो बासी खाणो नहीं खावा है नी और जे मान लो भी ठंड हो रही है नी जे मैं मूँह उगे चोखो तो बिसे टाइम आपा ने कई लोगों ने आदत हो है कि शाम का टाइम छा जरूर लेवे तो बच्चा आपा ने खराब करा। आयुर्वेद में भी क्यों है भी शाम ने आपा ने खट्टो नहीं लेनो चाहिए छो खट्टे की जी आप दूध ले सका है नी दूध भी अब की है कि जे भी ठंड हो रही है तो मैं जड़ी हूँ तो बिन टेम आपा ने बर्फ वालो दूध नहीं लेनो चाहिए गर्म दूध पी सियाँ तो नींद भी सोनी आसी। बहनों बात तो आप और भी कर सियाँ आओ सुनाओ प्यारो सो गीत।

मैनो ओ आज को प्रोग्राम, तो आज को प्रोग्राम थन किया लागियो कागज लिखकर बताइयो जरूर। तो अब भाई के नंदियो आ गया, राम राम।

0: Prime Minister Narendra Modi today recalled the sacrifices made by Hazrat Imam Hussain in a social media post. He said Hazrat Imam Hussain continues to inspire many people to remain steadfast in the pursuit of truth and justice. In Delhi, Muharram processions are being held in different locations, including Jama Masjid, Nizamuddin, Okhla and Mehroli. In men's cricket, India will take on hosts Ireland in the first T20 international of the two-match series in Belfast today. The match is scheduled to begin at 6 p.m. The series marks the start of a new T20 cycle for India, who will be playing its first T20 international since lifting the T20 World Cup. Captain Shreyas Iyer will lead a young squad that includes 15-year-old batting prodigy Vaibhav Suryavanshi. In the FIFA World Cup, Australia has qualified for the knockout stage after playing out a goalless draw against Paraguay in their Group D clash at the San Francisco Bay Area Stadium this morning. In another Group D fixture, Turkey signed off its World Cup campaign on a positive note with a 3-2 victory over the USA at Los Angeles Stadium. In another match, the Netherlands outclassed Tunisia by 3-1 in Kansas City to top Group F and set up a knockout clash with Morocco. In another Group F fixture, both Japan and Sweden stormed into the round of 32 as they played a 1-1 draw at the Dallas Stadium this morning. Japan will now face five-time champion Brazil in the next round. Ecuador also advanced to the knockout stage, beating Germany 2-1 in a Group E clash at the New Jersey Stadium early this morning. In men's hockey, India will face arch rivals Pakistan in its penultimate FIH Pro League match at the Lee Valley Hockey and Tennis Centre in London this evening. The match is scheduled to begin at 10:20 p.m. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Home Minister Amit Shah calls for united fight against drugs, says drug menace poses threat to national security and future of youth. Uttar Pradesh police arrest 8 people in connection with Ram Mandir donation embezzlement case. India, along with 34 nations, signs US-led initiative to build resilient AI supply chains. Prime Minister Narendra Modi recalls sacrifices of Hazrat Imam Hussain on Muharram. In men's cricket, India to take on hosts Ireland in T20 International in Belfast this evening. All eyes on debutant prodigy Vaibhav Suryavanshi. And Australia qualify for knockout stage after goalless draw against Paraguay in Group D clash in FIFA World Cup. With that, we end the midday news.
1: Namaskar. आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। गृहमंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमेरिका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए, इसका उद्देश्य मजबूत एआई आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। अब समाचार विस्तार से। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नशे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए खतरा है। उन्होंने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCORD की 10वीं शीर्ष स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए की।
2: आज हमारा देश नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई के ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। आने वाले 3 साल तय करने वाले हैं कि नशा हम पर विजय प्राप्त करेगा या हम नशे पर विजय। और मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए ये लड़ाई हमने जीतनी चाहिए, दृढ़ता के साथ जीतनी चाहिए और हमारे संयुक्त प्रयास से जीतनी चाहिए।

0: गृह मंत्री ने कहा कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों से इन पोर्टलों पर नशे से जुड़े मामलों की जानकारी तय समय सीमा के भीतर अपलोड करने को कहा।
1: नार्को ऑफेंडर्स आज टेक्नोलॉजी से सक्षम बने हुए हैं, वो नेटवर्क आधारित बन चुके हैं और मल्टी डोमेन अपराध के रूप में भी आज हमारे सामने खड़े हैं। ये सभी चीजें ये लड़ाई को और कठिन बनाती हैं। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड प्रतिक्रिया होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए और नेटवर्क सेंट्रिक लड़ाई हमें करनी पड़ेगी।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने नशा मुक्त भारत के निर्माण के सामूहिक संकल्प को दोहराने का आह्वान किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने इस आंदोलन को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने वाले विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों और संगठनों की सराहना की। उत्तर प्रदेश पुलिस ने श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के चढ़ावे और दान से जुड़े कथित गबन के मामले में दर्ज पहली एफआईआर के 8 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये एफआईआर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल यानी एसआईटी की सिफारिश के बाद श्रीराम जन्मभूमि थाने में दर्ज की गई। शिकायत ट्रस्ट के सदस्य कृष्ण मोहन ने दर्ज कराई थी। एसआईटी ने मंगलवार को अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी, जिसके बाद कल मामला दर्ज किया गया। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में जन विश्वास अधिनियम के अंतर्गत सुधार किए हैं। इसके तहत औषधि और सौंदर्य प्रसाधन अधिनियम 1940 और खाद्य सुरक्षा तथा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत आने वाले छोटे अपराधों को तर्कसंगत बनाया गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके अंतर्गत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। एक रिपोर्ट।
2: जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60% शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। अमन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अमेरिका में आयोजित दूसरे पैक्स सिलिका शिखर सम्मेलन में कल भारत ने 34 अन्य देशों के साथ मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रौद्योगिकी को सशक्त बनाने के लिए अमेरिका के नेतृत्व वाली एक पहल पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका के आर्थिक मामलों के उप विदेश मंत्री जैकब हेलबर्ग ने कहा कि एआई अवसर पर शामिल होने वाले देशों ने एआई युग के लिए विकास समर्थक और नवाचार समर्थक नियामक दृष्टिकोण का समर्थन किया है। एक रिपोर्ट।
3: श्री हेलबर्ग ने कहा कि अमेरिका भारत के साथ अपनी साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित है। उन्होंने द्विपक्षीय संबंधों को 21वीं सदी के सबसे महत्वपूर्ण संबंधों में से एक बताया। श्री हेलबर्ग ने कहा कि भारत के साथ द्विपक्षीय आदान प्रदान के प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई, इनमें क्वाड और ट्रस्ट पहल शामिल है। शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव एस कृष्णन और भारतीय उद्योग के प्रतिनिधियों ने किया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उद्योग जगत के नेताओं के साथ सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लचीली प्रौद्योगिकी आपूर्ति श्रृंखलाओं में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी 2 दिन की दक्षिण कोरिया यात्रा के दौरान विदेश मंत्री चो ह्यून के साथ द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर व्यापक चर्चा की। दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, वित्तीय सहयोग, जहाज निर्माण, रक्षा और सुरक्षा, उभरती तकनीकों, स्टार्टअप, संस्कृति, शिक्षा तथा लोगों के बीच संपर्क जैसी कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 29 तारीख तक सेशल्स के दौरे पर रहेंगे। वे सेशल्स के राष्ट्रीय दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ने इससे पहले 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। भारतीय रक्षा बलों का एक दल और नौसेना के 2 जहाज भी समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी सेशल्स के राष्ट्रपति डॉ पैट्रिक हरमिनी से द्विपक्षीय सहयोग के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा करेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने लंदन में ब्रिटेन के व्यापार और उद्योग मंत्री पीटर काइल से बातचीत की है। श्री गोयल ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान भारत और ब्रिटेन के बीच

0: व्यापार और आर्थिक सहयोग बढ़ाने के अवसरों पर चर्चा हुई। श्री गोयल ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता 15 जुलाई से लागू होगा। भारत में जर्मनी के राजदूत फिलिप एकरमैन ने कहा है कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभा रहा है। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत और जर्मनी के बीच व्यापार, राजनीति और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग लगातार मजबूत हो रहा है। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर राजदूत एकरमैन ने आशा व्यक्त की कि इस पर जल्द सहमति बनेगी।
1: FTA हमारे व्यवसाय के लिए भारत में नए अवसर लेकर आएगा। मेरा मानना है कि इससे भारत में जर्मनी का निवेश बढ़ेगा, क्योंकि निवेश करना अधिक आसान हो जाएगा। रक्षा क्षेत्र में भी भारत जर्मनी सहयोग तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमें पनडुब्बियों से जुड़े समझौते पर हस्ताक्षर होने का इंतजार है, जो एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
0: जर्मन राजदूत ने कहा कि जर्मनी में रह रहे भारतीय समुदाय दोनों देशों की मित्रता का मजबूत आधार है।
1: जर्मनी में भारतीय मूल के करीब 60,000 छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। अगर वे सही विश्वविद्यालय का चयन करते हैं तो उनके पास अच्छी नौकरी पाने के बेहतर अवसर होते हैं। जर्मनी में भारतीय समुदाय की बढ़ती मौजूदगी से दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे।
0: भारत ने किर्गिस्तान के बिश्केक में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन SCO महिला फोरम में महिला नेतृत्व वाले विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया। आज वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि महिलाएं न केवल विकास की लाभार्थी हैं, बल्कि 2047 तक विकसित भारत की सबसे शक्तिशाली प्रेरक शक्ति भी हैं। जापान की प्रधानमंत्री साने ताकाइची 1 जुलाई से 3 जुलाई तक भारत यात्रा पर रहेंगी। वे नई दिल्ली में होने वाले 16वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि इस शिखर सम्मेलन में दोनों देश अपने द्विपक्षीय सहयोग के सभी क्षेत्रों की समीक्षा करेंगे और उसे और मजबूत करने के उपायों पर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही दोनों नेता आपसी हितों से जुड़े क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। आज आशुराए मुहर्रम है। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक है। हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों ने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए प्राणों की आहुति दी थी। आज के दिन शहीदों की याद में ताजिए निकाले जा रहे हैं। दिल्ली यातायात पुलिस ने ताजिया जुलूसों के संबंध में यातायात संबंधी चेतावनी जारी की है। इसके मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। इस बीच दिल्ली यातायात पुलिस के अनुसार नेताजी सुभाष मार्ग से जामा मस्जिद की ओर आने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। भीड़भाड़ से बचने और मुहर्रम के जुलूस के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए यातायात को नेताजी सुभाष मार्ग से होकर अन्य मार्गों पर जोड़ा जाएगा। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने कहा है कि मोहम्मद हजरत इमाम हुसैन के बलिदान, साहस, करुणा, सत्य तथा न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जैसे शाश्वत मूल्यों की याद दिलाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान सत्य और न्याय के मार्ग पर अडिग रहने की प्रेरणा देता है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हजरत इमाम हुसैन का बलिदान आज भी लोगों को सत्य और न्याय के लिए डटे रहने की प्रेरणा देता है। पश्चिम बंगाल में साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की 188वीं जयंती मनाई जा रही है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का जन्म आज ही के दिन 1838 को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले के नेहाटी के काठलापारा में हुआ था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने राष्ट्रगान वंदे मातरम की रचना की, जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों को प्रेरित किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता में बंकिम चंद स्मृति ग्रंथागार में बंकिम चंद की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद चट्टोपाध्याय की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज ऑपरेशन अमिस्ताद की घोषणा की। इसके अंतर्गत भूकंप के बाद राहत और बचाव कार्यों में सहायता के लिए भारतीय वायुसेना की 2 MCC C-17 विमान वेनेजुएला के लिए रवाना हो गए हैं। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पर बताया कि अस्तिदात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के अंतर्गत भारतीय सेना की फील्ड अस्पताल इकाई और 35 टन से अधिक राहत

0: सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण भेजे जा रहे हैं। इनमें दो भीष्म क्यूब भी शामिल हैं। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत इस कठिन समय में वेनेजुएला की सरकार और वहां के लोगों के साथ खड़ा है और हर संभव सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। और अब खेल खबरों के साथ है आनंद पाठक।
1: भारत आज बेलफास्ट में आयरलैंड के खिलाफ दो मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मुकाबला खेलेगा। ये मैच शाम 6 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम की कप्तानी श्रेयस अय्यर करेंगे। टीम में 15 वर्षीय बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के अपने अंतिम मैच में पैराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण में जगह बना ली है। ग्रुप डी के एक अन्य मुकाबले में तुर्की ने अमरीका को 3-2 से हराकर टूर्नामेंट में अपने अभियान का जीत के साथ समापन किया। जापान और स्वीडन का मुकाबला 1-1 गोल की बराबरी पर समाप्त हुआ। दोनों टीमों ने अंतिम 32 में जगह बना ली है। अगले दौर में जापान का मुकाबला 5 बार के चैंपियन ब्राजील से होगा। वहीं ग्रुप ई के मैच में इक्वाडोर ने जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश किया। एक अन्य मुकाबले में कोट डी आइवर ने कुरासाओ को 2-0 से हराकर पहली बार नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया। हॉकी में लंदन में आयोजित FIH प्रो लीग में आज शाम भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। मैच रात 10:30 बजे से शुरू होगा। इससे पहले हुए मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था।
0: मौसम विभाग ने पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, तटीय कर्नाटक, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अगले 3 से 4 दिन में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियाँ अनुकूल हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह का मादक पदार्थ के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आह्वान। कहा, मादक पदार्थ राष्ट्रीय सुरक्षा और युवाओं के भविष्य के लिए गंभीर खतरा। उत्तर प्रदेश पुलिस ने राम मंदिर चढ़ावे में गबन मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया। भारत ने 34 देशों के साथ मिलकर अमरीका के नेतृत्व वाली पहल पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य मजबूत AI आपूर्ति श्रृंखलाओं का निर्माण करना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुहर्रम पर हजरत इमाम हुसैन के बलिदान का स्मरण किया। T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में आज शाम भारत का मुकाबला आयरलैंड से। टीम में पदार्पण करने वाले प्रतिभाशाली खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सभी की निगाहें। और फीफा विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रुप डी के एक मुकाबले में पराग्वे के साथ ड्रॉ खेलकर नॉकआउट चरण के लिए क्वालिफाई किया।
2: ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 2:30 हुए हैं। अब सुने कार्यक्रम फिल्म संगीत।

कार्यक्रम सुनने वाले सभी दोस्तों को नमस्कार। नरेश वर्मा की तरफ से दोस्तों, आज फिल्मी दुनिया के मशहूर फिल्मकार प्रोड्यूसर यश जौहर की बरसी है, उनको याद करते हुए सुनते हैं इस कार्यक्रम में उन्हीं की फिल्मों की कहानी।

दोस्तों, अभी आप दोस्ताना फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत गाना सुन रहे थे, आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज़ में। इस गाने को आनंद बख्शी ने लिखा, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर निर्माता निर्देशक यश जौहर की पुण्यतिथि पर उन्हीं की फिल्मों के गाने। यश जौहर, जिनका जन्म हुआ 6 सितंबर 1929 को अमृतसर पंजाब में, और आज ही के दिन यानी 26 जून 2004 को 74 साल की उम्र में इनका निधन हुआ मुंबई में। बहुत ही खूबसूरत फिल्में इन्होंने बनाई, और अभी आपने जो गाना सुना दोस्ताना फिल्म, इनकी बहुत सुपरहिट रही। साथ ही कुछ फिल्में इनकी नए दौर की भी बहुत मशहूर रहीं।

0: खुद निर्माता के तौर पर स्थापित होने से पहले सहायक निर्माता रहे कुछ फिल्मों में, जैसे गाइड, ज्वेल थीफ, प्रेम पुजारी, हरे रामा हरे कृष्णा, ऐसी फिल्मों में इन्होंने बतौर सहायक निर्माता के रूप में अपना योगदान दिया। ऐसी एक खूबसूरत फिल्म प्रेम पुजारी का गाना अब हम आपको सुनवाते हैं, आइए सुने।
1: शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर

अभी आप प्रेम पुजारी फिल्म का ये बहुत ही खूबसूरत दो गाना सुन रहे थे, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में। ये बोल नीरज ने लिखे और संगीत सचिन देव बर्मन का था। फिल्म संगीत में हम आपको सुनवा रहे हैं मशहूर फिल्मकार यश जौहर की फिल्मों के कुछ गाने, और ये है अगली पेशकश।

कुछ कुछ होता है इस फिल्म का बहुत ही प्यारा सा गाना आपने सुना। फिल्म संगीत आप आकाशवाणी के कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ से सुन रहे हैं और ये है अगली पेशकश।

अभी आप सुन रहे थे कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में। समीर ने गाना लिखा और संगीत जतिन ललित का था।

और ये है कार्यक्रम की आखिरी पेशकश सोनू निगम की आवाज में। ये फिल्म है कल हो न हो। जावेद अख्तर का गाना है और संगीत है शंकर एहसान लोय का। आइए सुने।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे मशहूर फिल्मकार यश जौहर की बरसी पर उन्हीं की फिल्मों के गाने, और अब नरेश वर्मा को दें अनुमति। नमस्कार।

फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे थे मशहूर फिल्मकार यश जौहर की बरसी पर उन्हीं की फिल्मों के गाने, और अब नरेश वर्मा को दें अनुमति। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत मीडियम वेव 326.79 अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर, डीआरएम चैनल 909 किलोहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर। ये आकाशवाणी का कॉटन सिटी चैनल सूरतगढ़ है। 3 बज चुके हैं। कुछ ही पलों के इंतज़ार के बाद आप आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू सर्विस के प्रोग्राम सुनेंगे। यह प्रसारण एफएम बैंड और न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर जारी रहेगा। मीडियम वेव पर रख रखाव के चलते शाम 5 बजे तक हमारा प्रसारण बंद रहेगा। कृपया उर्दू सर्विस की प्रतीक्षा करें।

4:50 पर खबरें नशर की जाएंगी और 5 बजे हमारी आज की दूसरी मजलिस की नशरियात इख्तिताम पज़ीर हो जाएंगी। तो सामने था कि मुख्तसर तारुफ हमारे यहाँ से नशर होने वाले उन प्रोग्रामों का जो आज आप इस मजलिस में सुन सकेंगे। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 71 किलो हर्ट्स, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर और डीडी फ्रीडिश पर।

सामिन, आपको बता दें आज की खसूसी नशरियात में आप सुनेंगे सो सलाम और मर्सियाँ। इससे पहले 3:05 पर खबरें नशर की जाएंगी और दिन में 3:30 हम पेश करेंगे मुहर्रम और गंगा जमनी तहजीब, इस फीचर का दूसरा और आखिरी हिस्सा। 4 से आप सुन सकेंगे मर्सिया, नवा खानी और सलाम।

0: मीडियम वेव 1171 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एयर और डीडी फ्री डिश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है। 3:05 हो चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, हुसैन अख्तर से खबरें सुनिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सेशल्स के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत ने एक मुस्तहकम एआई सप्लाई चेन बनाने के लिए अमेरिका की क़यादत वाली पहल से मुतालिक एक दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं, जिसमें 34 ममालिक शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि वो चीन से अलग अहम मादनियात की सप्लाई चेन की मतनव बनाने के लिए क्वाड के जरिए इत्तेहाद को मुस्तहकम बना रहा है और भारत के साथ ताउन में इजाफा कर रहा है। वेनेजुएला में शदीद जलजले से मरने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है और फीफा आलमी कप में ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इस माह की 27 से 29 तारीख तक सेशल्स के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वो वहां सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत दिफाई अफवाज का एक दस्ता भारतीय बहरिया के 2 जहाज़ों के साथ तकरीबात में शामिल होगा। अपने दौरे के दौरान वज़ीर-ए-आज़म सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हेरमिन से बातचीत करेंगे और बाहमी दिलचस्पी के इलाकाई और बैनुल अक़वामी मामलात और बाहमी इश्तराक के वसी तर पहलुओं पर तबादले ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म सेशल्स की कौमी असम्बली से भी खिताब करेंगे और वहाँ आबाद भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगे। हमारे नामनिगार ने खबर दी है कि भारत और सेशल्स के दरमियान तारीखी, सकाफती और आवाम से आवाम के रबतों पर मबनी देरीना शराकत दारी है। भारत ने एक भरोसेमंद और मुस्तहकम सप्लाई चेन बनाने के लिए अमेरिका की क़यादत वाली तहरीक के लिए एक दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद मसनूई ज़हानत एआई पर मबनी टेक्नोलॉजीज़ को मज़ीद ताकतवर बनाना है। ये दस्तखत कल वाशिंगटन में दूसरी पैक्स सिलिका समिट के दौरान 34 मुल्कों के साथ किए गए हैं। इक्तिसादी उमूर से वाबस्ता अमरीका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकब हेलबर्ग ने बताया कि अमेरिका भारत के साथ अपनी शराकत दारी को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहिशमंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को 21वीं सदी का एक सबसे नतीजा खेज मुआहदा बताते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड और ट्रस्ट पहल समेत कई फोरमों में भारत और अमेरिका के दरमियान कलीदी शोबों में तबादला ख्याल किया गया है। भारत की तरफ से समिट में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ के

0: से इसकी इसको तकलीफ मिली है। कॉमर्स और सनतों के महकमे के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि उन्होंने लंदन में बरतानिया के अपने हम मनसब पीटर काइल के साथ बामकसद बातचीत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस मीटिंग में भारत बरतानिया इक्तिसादी और तजारती इश्तराक को मजीद वसत देने के लिए नए मौके तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने बंकम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनके यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उन्हें रोशनी बिखेरने वाली एक ऐसी अदबी कद्दावर शख्सियत करार दिया है जिनकी तहरीरों से भारत की कई नस्लों को वतन परस्ती का जज्बा और सकाफती फ़ख्र हासिल होता है। भारत में जर्मनी के सफीर फिलिप एकरमैन ने कहा कि भारत काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में एक आलमी रहनुमा के तौर पर उभरा है। फीफा आलमी कप में आज सुबह सवेरे सैन फ्रांसिस्को बे स्टेडियम में ग्रुप डी के एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने नॉकआउट मरहले में दाखिला हासिल कर लिया है। हालांकि उसका पैराग्वे के खिलाफ मैच हार जीत के बगैर खत्म हो गया। ग्रुप डी के एक और मैच में तुर्की ने लॉस एंजलिस स्टेडियम में अमेरिका को 2-3 से हरा दिया। खास खबरें एक बार फिर सुनिए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल सीशेल्स के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वहां कौमी दिन की गोल्डन जूबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत में एक मुस्तहकम एआई सप्लाई चेन बनाने के लिए अमेरिका की क़यादत वाली पहल से मुतालिक एक दस्तावेज पर 2 दस्तखत किए हैं, जिसमें 34 ममालिक शामिल हैं। वेनेजुएला में शदीद जल्जलों से मरने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है और ऑस्ट्रेलिया फीफा आलमी कप के नॉकआउट मरहले में दाखिल हो गया है। खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम में 1,071 किलो हर्ट्ज़ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन आईआर और डीडी प्रदेश पर ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है।

अफगान की लाश

0: अभी बेगम अख्तर नौखानी कर रही थी। ये आकाशवाणी की उर्दू सर्विस है, हमें आप सुन रहे हैं मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्ज, मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR और DD फ्री डिश पर। पेश खिदमत है जनाब मालिक अश्तर के तहरीर करदा फीचर मुहर्रम और गंगा जमनी तहजीब का दूसरा और आखिरी हिस्सा।
1: सलामी करबला है जो कुछ वादा किया पूरा करूंगा, जो कुछ वादा किया पूरा करूंगा। ये खंजर है गला है और मैं हूं, ये खंजर है गला है और

کتاب حکمت کی کلید روز روشن کی بشارت

नहीं आता जिन्हें राहे हकीकत से गुजर जाना, नहीं आता जिन्हें हकीकत से गुजर जाना, हुसैन इब्ने

गुजर जाना मिटाने से किसी के नाम मिट जाए अभी।

कोई बेकार है जिसे गुजर जाना।

0: अर्श मलसियानी ने यूं तो गजलें और नज़में लिखी, लेकिन जब उन्होंने सलाम कहे तो उसमें एक अलग ही रंग नजर आया। अर्श को उनकी गजलों के साथ साथ उनके सलामों के लिए भी शुअरा की सफ में नुमाया मकाम हासिल है।
1: हक बात पे अड़ते हैं तो लड़ते हैं कजा से, हक बात पे अड़ते हैं तो लड़ते हैं कजा से, रखते हैं अकीदत जो इमाम शुहदा से। किस तौर से होता है कोई फख्र दो आलम, पूछे कोई मजलूमी अरबाब वफा से। अब तक है जमाने के लिए जिंदगी आमोज, हैदर के जिगर बंद मोहम्मद के नवासे। शब्बीर के सदके में लुटा दूं उसे फौरन, हो दौलत कौनैन भी हासिल जो खुदा से।
2: रो रो के ये हजरत बयां ओढ़ गए मेरी।

लेके चुल्लू में है कारत से जो फेंका पानी, तो देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी, देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी, देखता रह गया अब्बास का चेहरा पानी। और इस कदर हजरत अब्बास से है शर्मिंदा, इस कदर हजरत अब्बास से है शर्मिंदा, इस कदर हजरत अब्बास से

फलक से भी फरिश्ता पानी लेके आ जाता, फलक से भी फरिश्ता पानी। नर्म उंगली से जो कर देते इशारा असगर, नर्म उंगली से जो कर देते इशारा असगर, तो पत्थरों से भी निकल

لیا چہرے پہ اصغر کا لہو سرور نے، ملیا چہرے پہ اصغر کا لہو سرور نے۔

अपने धारों में समेटे हुए गंगा पानी, अपने धारों में समेटे हुए गंगा पा। और ये बता रहे बड़े अकीतो मोहब्बत के साथ मक्ता हाजिर कर रहा हूं के आज भी मातम शबीर किया करता है,

0: पानी।
1: ब्रजनारायण चकबस ने जब रामायण उर्दू में मंजूम लिखी तो उसमें श्री राम की रुखसत के मंजर को करबलाई अंदाज में पेश किया। आइए सुनते हैं।
2: रुखसत हुआ जो बाप से लेकर खुदा का नाम, रुखसत हुआ जो बाप से लेकर खुदा का नाम, राहे खुदा में मंजिले अव्वल हुई तमाम। मजबूर था जो माँ की ज़ियारत का इंतजाम, दामन से अश्क पोंछ के दिल से किया कलाम। इजहार बेकसी से सितम होगा और भी, देखा हमें उदास तो गम होगा और भी।

भारत की गंगा जमनी तहजीब से मुहर्रम का रिश्ता सिर्फ अदब के हद तक महदूद नहीं है। यहाँ बाकायदा एक तबका खुद को फखरी अंदाज में हुसैनी ब्राह्मण कहकर पहचानवाता है। इन अफराद का मानना है कि उनके एक बुजुर्ग करबला में इमाम हुसैन की नुसरत के लिए लड़े थे और शहीद भी हुए। हुसैनी पंडित सिर्फ हवाले और शनाख्त की हद तक हुसैनी नहीं है बल्कि आजादारी में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। उनके अंजुमने मुल्क भर में

स्थानीय प्रोग्रामों में शरीक होती है।

गहराई से मुतालिया करते जाएंगे, आपको उस पर मुहर्रम और अज़ादारी के नकूश जा बजा नजर आते जाएंगे। मजालिस और मातम में शिरकत से लेकर मर्सी और सलाम लिखने तक हर जगह ये रंगारंगी नजर आती है। इतना ही नहीं, प्रेमचंद ने करबला के उन्वान से नॉवल तख्लीक किया तो महात्मा गांधी से लेकर सरोजनी नायडू और रविंद्रनाथ टैगोर तक ने करबला के पैगाम हुर्रियत को बार बार अपनी तहरीरों और तकरीरों में दोहराया। 10 मुहर्रम को गैर मुस्लिमों के ताजियों के जुलूसों से लेकर मकामी जबानों में रचे गए करबलाई अदब तक, ये सब के सब इस बात पर दलील है कि इमाम हुसैन की शहादत और पैगाम बिला तफरीक मजहब पूरी इंसानियत का सरमाया है और इससे सब फैजियाब हो रहे हैं। दर हुसैन मिलते हैं।

तशला जिगर मरता है, दम हसीने में रुका, जख्मों से खून जारी है।

मुस्तरिब हो गए ना मुँह से रसूल दूसरा कहा चिल्ला के सकीना ने के हाय हाय भैया।

ज़ब हो गया ये बादशाह ने खसाल रासाया न मिले।

माहे जब सांस आती है पहर दम है, दमे बाज पसी कुचिल का भी है और हम भी।

माँ खस्ता जिगर कहती थी दिल पसीना, जुल्म की खाई बेटा आंखें खो।

कहा, रोला मेरे सर की कसम, पास आके हमें छाती से लगा लो, इस दम रन से आए।

देखा माँ गश के आले की कहूँ वजह के क्यों गछाया तीसरा।

0: जाया, मर चुका था प्रभु कदर ने बचाया मुझको, दाऊतर बाप ने गोदी में उठाया मुझको। ओ अल्लाह,
1: अभी इस वसवानी कर रहे थे वली हैदर और उनके हमनवा, और अब नवा खानी कर रहे हैं खुर्शीद अकबर।

0: जिए वो गम का मारा
1: बाबा
0: सोच रही।

0: अभी नवा खानी कर रहे थे खुर्शीद अस्सी और उनके हम नवा मीडियम वेव 1071 किलो हर्ट्स मोबाइल ऐप न्यूज ऑन आईआर और डीडी फ्री डिश पर इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी से उर्दू सर्विस की नशरियात। शाम के 4:50 हुआ चाहते हैं, अब खबरें नशर होंगी।
1: ये आकाशवाणी है, अब आप मेहताब आलम से खबरें सुनिए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सेशल्स के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत ने एक मुस्तहकम एआई सप्लाई चेन बनाने के लिए अमेरिका की क्यादत वाली पहल से मुतालिक एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, जिसमें 34 ममालिक शामिल हैं। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि वो चीन से अलग अहम मादनियात की सप्लाई चेन को मतनव बनाने के लिए क्वाड के जरिए इस इतिहाद को मुस्तहकम बना रहा है और भारत के साथ ताउन में इजाफा कर रहा है। वेनेजुएला में शदीद जलजलों से मरने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है। और फीफा आलमी कप में ग्रुप डी के एक मैच में ऑस्ट्रेलिया ने नॉकआउट मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। उसने पैराग्वे के खिलाफ खेले गए मैच में कोई गोल न करते हुए ये मैच बराबरी पर ख़त्म किया। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस माह की 27 से 29 तारीख तक सेशल्स के सरकारी दौरे पर रहेंगे। वो वहां सेशल्स के कौमी दिन की गोल्डन जुबली तकरीबात में मेहमान एजाजी की हैसियत से शिरकत करेंगे। वजीर आजम ने 2015 में सेशल्स का दौरा किया था। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा है कि भारत दिफाई अफवाज का एक दस्ता भारतीय बहरिया के 2 जहाज़ों के साथ तकरीबात में शामिल होगा। अपने दौरे के दौरान वजीर आजम सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी से बातचीत करेंगे और बाहमी दिलचस्पी की इलाकाई और बैन अवी मामलात और बाहमी इश्तराक के वसी तर पहलुओं पर तबादला ख्याल करेंगे। वजीर आजम सेशल्स की कौमी असम्बली से भी खिताब करेंगे और वहां आबाद भारतीय बरदरी से भी बातचीत करेंगे। हमारे नमानगार ने खबर दी है कि भारत और सेशल्स के दरमियान तारीखी सकाफती और आवाम से आवाम के राबतों पर मबनी त्रीना शराकतदारी है। बहर हिंद के खत्े में एक अहम बहरी पड़ोसी की हैसियत से सेशल्स भारत के महासागर नजरिए और आलमी खत्े जनूब के तई उसके अहद के सिलसिले में एक अहम मकाम रखता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी इतवार को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क आवाम से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। इस माहाना रेडियो प्रोग्राम का ये 135वां नशरिया होगा। ये प्रोग्राम पूरे आकाशवाणी और दूरदर्शन नेटवर्क AIR न्यूज़ वेबसाइट और न्यूज़ AIR मोबाइल ऐप से नशर किया जाएगा। इसे AIR न्यूज़ DD न्यूज़ PMO इतलात नशरियात की वजारत के वेब यूट्यूब चैनलों से भी नशर किया जाएगा। आकाशवाणी इस प्रोग्राम को इसके हिंदी नशरिए के फौरन बाद इलाकाई जबानों में भी नशर करेगा। भारत ने एक भरोसेमंद और मुस्तहकम सप्लाई चैन बनाने के लिए अमेरिका की क्यादत वाली तहरीक के लिए एक दस्तावेज पर दस्तखत किए हैं, जिसका मकसद मस्नूई जहानत AI पर मबनी टेक्नोलॉजीज को मजीद ताकतवर बनाना है। ये दस्तखत कल वाशिंगटन में दूसरी पैक सिलिका समिट के दौरान 34 मुल्कों के साथ किए गए हैं। इक्तसादी उमूर से वाबस्ता अमरीका के अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकोब हेलबर्ग ने बताया कि अमरीका भारत के साथ अपनी शराकतदारी को मजीद मुस्तहकम करने का ख्वाहिशमंद है। दोनों मुल्कों के दरमियान बाहमी ताल्लुकात को 21वीं

सदी का एक सबसे नतीजा खेज मुआहदा बताते हुए उन्होंने कहा कि क्वाड और ट्रस्ट पहल समेत कई फोरमों में भारत और अमेरिका के दरमियान कलीदी शोबों में तबादले ख्याल किया गया है। भारत की तरफ से समिट में इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वजारत के सेक्रेटरी एस कृष्णन और भारतीय सनत के नुमाइंदों ने शिरकत की। ट्रंप इंतजामिया ने कहा है कि वो क्वाड के जरिए भारत के साथ इश्तराक को उसत देते हुए शराकतदारी को मुस्तहकम कर रहा है और भारत बहरुलकाहिल को अमेरिका की जानिब से मुकदम माने जाने की हैसियत से अहम मादनियात की सप्लाई चेन के सिलसिले में चीन के अलावा इम्कान पैदा कर रहा है। मशरकी एशिया और बहरुलकाहिल से मुतालिक खारजी अमूर की जैली कमेटी के ऐवान में इस बात की तौसीक करते हुए मशरकी एशिया और बहरुलकाहिल अमूर के असिस्टेंट सेक्रेटरी मिशेल जी डी सोमबर ने कहा कि यह खित्ता अमेरिका के लिए कलीदी अहमियत का हामिल है। रैंकिंग मेंबर अम्मी बेरा ने क्वाड में भारत के रोल को यह कहते हुए उजागर किया कि भारत अमेरिका जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ ग्रुप की हैसियत से खित्ते में एक अहम रोल अदा कर रहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज आशूरा मुहर्रम मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पूरी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने हक़ व सदाकत और इंसाफ की सरबुलंदी के लिए मैदान करबला में अपनी जान का जो नजराना पेश किया था उसकी याद में ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर ताज़ियों के जुलूस निकाले जा रहे हैं। मजालिस का भी अहतमाम किया गया है जिसमें शुहदाए करबला की अजीम कुर्बानी को उजागर किया जाएगा। इस मौके पर सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। आशूरा मुहर्रम के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने हज़रत इमाम हुसैन की कुर्बानियों को याद किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन से कई लोगों को सच्चाई और इंसाफ के रास्ते पर कायम रहने की तरगीब मिलती है। वज़ीर आज़म ने जोर देकर कहा कि इससे हिम्मत और यकीन की पायदार कुव्वत की याद दहानी भी होती है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय को उनके यम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने उन्हें रोशनी बिखेरने वाली एक ऐसी अदबी कदावर शख्सियत करार दिया है जिनकी तहरीरों से भारत के कई नस्लों को वतन परस्ती का जज्बा और सकाफती फ़ख्र हासिल होता है। इस साल की अहमियत को उजागर करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत वंदे मातरम की 150वीं सालगिरह मना रहा है। जनाब मोदी ने कहा कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने भारत की तहरीक आज़ादी के लिए मुल्क को वंदे मातरम का अतिया किया जो सबसे ज़्यादा जिंदा व पाइंदा रहने वाला तहरीक का एक जरिया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज को उनकी सालगिरह पर खराज अकीदत पेश किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि राजर्षि छत्रपति साहू जी महाराज ने अपनी ज़िंदगी में महरूम पसमानदा तबकों और इस्तेहसाल शुदा लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि उनके अजीम नज़रियात आने वाले दिनों में कौम की रहनुमाई करेंगे। वेनेजुएला में दो शदीद जलजले आने से मरने वालों की तादाद बढ़कर 235 हो गई है। 1,500 से ज़्यादा लोग जख्मी हुए हैं। इमदादी कारकुन जिंदा बच जाने वाले लोगों को मलबे में तलाश कर रहे हैं। वेनेजुएला की अबूरी सदर डेलसी रोड्रिगेज ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। वहां कल 7.2 शिद्दत का जलजला आया था। इसके चंद सेकेंड बाद इससे भी ज़्यादा ताकतवर 7.5 शिद्दत का जलजला आया। ये दोनों ही जलजले ज़मीन की सतह के करीब थे इसलिए तबाही भी ज़्यादा हुई है। कई मुल्कों ने इमदादी कोशिशों में मदद का वादा किया है। वेनेजुएला की सदर ने जलजले के तनाजुर में भारत की यगानगत को तस्लीम करते हुए कहा है कि मुश्किल की घड़ी में इश्तराक के जज्बे के साथ खड़ा है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने वेनेजुएला में आए जलजले के बाद फौरी राहत और इमदादी ताउन पहुँचाने के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद का ऐलान किया है जिसके तहत भारतीय फजाई फौज के 2 MCC से C-70 तैयारे आज वेनेजुएला के लिए रवाना होंगे। अमिस्ताद का माना हस्पानवी जबान में दोस्ती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वजीर मौसूफ ने कहा कि राहती सामान में भारतीय फौज फील्ड अस्पताल यूनिट और 35 टन से ज़्यादा राहती सामान दवाइयां और तिब्बी आलात और 2 बिशिम्स क्यूब शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस मुसीबत की घड़ी में वेनेजुएला की हुकूमत और आवाम के ताउन के लिए अहदबंद है। कॉमर्स और सनअतों के महकमे के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा है कि उन्होंने लंदन में बरतानिया के अपने हमन

0: सब पीटर कील के साथ बामकसद बातचीत की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब गोयल ने कहा कि इस मीटिंग में भारत बरतानिया इकतसादी और तजारती इश्तराक को मजीद वसअत देने के लिए नए मौके तलाश करने पर तबादला ख्याल किया गया। फीफा आलमी कप में आज सुबह सवेरे सान फ्रांसिस्को बे स्टेडियम में ग्रुप डी के एक मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है, हालांकि इसका पैराग्वे के खिलाफ मैच हार जीत के बगैर ख़त्म हो गया। ग्रुप डी के एक और मैच में तुर्किया ने लॉस एंजलिस स्टेडियम में अमेरिका को 2-3 से हरा दिया। आखिर में खास खास खबरें एक बार और। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल सेशल्स के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे, जहां कौमी दिन के गोल्डन जुबली तकरीबात में एजाजी मेहमान के तौर पर शिरकत करेंगे। भारत ने एक मुस्तहकम एआई सप्लाई चैन बनाने के लिए अमेरिका की क़यादत वाली पहल से मुतालिक एक दस्तावेज़ पर दस्तखत किए हैं, जिसमें 34 ममालिक शामिल हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: मीडियम में भी कदारी।

युवाणी सुनने वाले सभी श्रोताओं को पुष्पेंद्र का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस अंक में हम करेंगे ज्ञान, प्रेरणा, संस्कृति और मनोरंजन की एक सुंदर यात्रा। दोस्तों, आज का युवा केवल अपने करियर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह अपने पर्यावरण, समाज, संस्कृति और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति भी जागरूक हो रहा है। आज के इस अंक में हम जानेंगे राजस्थान की प्रसिद्ध झीलों की अनोखी दुनिया, ध्वनि प्रदूषण से होने वाले नुकसान और बचाव, जीवन में आध्यात्म का वास्तविक महत्व, वर्षा जल संरक्षण क्यों है समय की सबसे बड़ी आवश्यकता, और आज का इतिहास में दर्ज महत्वपूर्ण घटनाएं। और इसके साथ आज हम सुनवाएंगे आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नरेश वर्मा की श्रोताओं से फोन आउट बातचीत। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ।

राजस्थान। नाम सुनते ही मन में रेगिस्तान की छवि उभरती है, लेकिन यही राजस्थान सैकड़ों सुंदर झीलों का भी एक प्रदेश है। इन्हीं झीलों ने यहां के जीवन, पर्यटन और संस्कृति को समृद्ध बनाया है। सबसे पहले बात आती है उदयपुर की, जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है। यहां पिछोला झील, फतेह सागर झील, उदय सागर और स्वरूप सागर झील देखने को मिलती हैं, और इसी कारण उदयपुर को झीलों की नगरी भी कहा जाता है। सांभर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील है। नमक उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। हजारों विदेशी पक्षियों का निवास भी है, जैसे फ्लेमिंगो का अद्भुत आगमन यहां देखने को मिलता है। हमारे राजस्थान की झीलों में बात करें तो बात आती है पुष्कर झील की। 52 घाटों वाली यह झील धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसमंद झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झीलों में शामिल है। राजसमंद झील, इसका निर्माण महाराणा राज सिंह ने करवाया था। नक्की झील, नक्की झील से किंवदंति है कि देवताओं ने इसे अपने नाखूनों से खोदा था। दोस्तों, राजस्थान में 200 से अधिक झीलें हैं। कई झीलें मानव निर्मित भी हैं, और राजस्थान जैसे प्रदेश में जल संरक्षण का ये उत्कृष्ट उदाहरण देखने को मिलता है।

दोस्तों, जन जन की आवाज, संस्कृति का संवाहक और विश्वसनीय सूचना का सशक्त माध्यम आकाशवाणी अपनी गौरवशाली यात्रा के 90 वर्ष पूर्ण कर चुकी है। इन दशकों में आकाशवाणी ने देश के कोनों कोनों तक ज्ञान, संगीत, साहित्य, समाचार और जन जागरण का संदेश पहुंचाकर करोड़ों सैकड़ों श्रोताओं के जीवन में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। और इसी अवसर पर प्रस्तुत है एक विशेष फोन आउट बातचीत, जिसमें हमारे सहयोगी नरेश वर्मा सीधे संवाद करेंगे आकाशवाणी के श्रोताओं से, नरेंद्र सुथार, प्रेम देवी सिमर और डॉक्टर राकेश शर्मा जी से। इस बातचीत में जानेंगे आकाशवाणी से जुड़ी उनकी यादें, अनुभव और वे भावनाएं जिन्होंने वर्षों में इस माध्यम से जुड़े हुए हैं और आकाशवाणी को किस रूप में देखते हैं। तो आइए इस विशेष प्रस्तुति की शुरुआत करते हैं और सुनते हैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में यह विशेष फोन आउट बातचीत।

सभी सुनने वालों को हमारी तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं आपके साथ आपका रेडियो दोस्त नरेश वर्मा, और हमारे साथ हैं हमारे बरसों पुराने कुछ श्रोता। आकाशवाणी ने अपने 90 साल अभी पूरे किए हैं।

0: अवसर पर हमने हमारे बहुत से श्रोताओं से बातचीत की है और आप तक पहुंचाई है। इसी क्रम में आज नोहर हनुमानगढ़ क्षेत्र के हमारे कुछ श्रोता साथी हमारे साथ जुड़े हैं। रेडियो के बारे में, रेडियो के प्रोग्रामों के बारे में और रेडियो का जो 90 सालों का ऐतिहासिक और गौरवशाली वक्त जो रहा है उसके बारे में इनसे चर्चा करते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ हैं नरेंद्र जी सुथार। नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: नमस्कार नरेश वर्मा जी, और आकाशवाणी के जो भी श्रोता हैं उनको भी मेरी तरफ से नमस्कार।
0: और हमारे साथ जुड़ी हैं श्रीमती प्रेम देवी जी सीवर। आप भी बरसों से रेडियो सुनती आ रही हैं, बहुत स्वागत करते हैं, आपको भी नमस्कार।
2: नमस्कार।
0: और अब हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश जी शर्मा। आप बरसों से रेडियो सुन रहे हैं और बरसों से एक डॉक्टर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, आपका भी हम स्वागत करते हैं, बहुत बहुत नमस्कार जी।
3: जी नरेश जी नमस्कार।
0: बातचीत की शुरुआत करते हैं हम, सालों की बात हो रही है, 90 साल की बात हो रही है, तो मैं सबसे पहले डॉक्टर राकेश जी शर्मा से पूछना चाहता हूँ कि इन 90 सालों में आपने कितने साल रेडियो सुन लिया?
3: यहाँ मैं रेडियो सुनने वाले सभी रेडियो दोस्तों को, रेडियो प्रेमियों को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और यहाँ मैं कहना चाहूँगा मेरी उम्र फिलहाल करीब 50-51 वर्ष है, तो इसमें से अधिकांश वर्ष मैंने रेडियो सुना है। यूँ कहें कि जब से मैं 8 या 10 साल का था तब से मैं रेडियो सुन रहा हूँ, क्योंकि ग्रामीण परिवेश में हम रहे हैं तो आकाशवाणी सूरतगढ़ से हमारा विशेष लगाव रहा है। जहाँ मैंने रेडियो सुनना शुरू किया था वहाँ रेडियो सूरतगढ़ के प्रोग्राम मैंने विशेष तौर से सुने हैं।
0: 90 सालों में से आपको हम मान सकते हैं कि 40-45 साल हो गए रेडियो सुनते हुए। तो बचपन में आप रेडियो सुनते थे, पढ़ाई के दौरान आप रेडियो सुनते थे, उस वक्त पढ़ाई में भी आपको रेडियो ने कितना प्रभावित किया?
3: रेडियो का विशेष रोल रहा है सर मेरे जीवन में। बेसिकली मैं गांव का रहने वाला हूं, ग्रामीण परिवेश से आता हूं, तो वहां केवल रेडियो ही एकमात्र साधन हुआ करता था, मनोरंजन का भी, ज्ञान सूचना और तमाम तरह की संस्कृति संबंधी जानकारियों का, या विकास से जुड़े कार्यों का, या कोई देश विदेश की बातचीत सुनने का एकमात्र साधन रेडियो हुआ करता था। तो रेडियो सुनते सुनते हम बड़े हुए हैं और यह एक ऐसा माध्यम रहा है जो पढ़ाई की बात करें या किसी अन्य काम की बात करें, रोजगार की बात करें, यह किसी भी तरीके से हमारे रोजमर्रा के कामों में खलल नहीं डालता है, किसी भी तरह से बाधित नहीं करता है, और साथ साथ हमारे मनोरंजन होता रहता है और साथ में हम अपने रोजमर्रा के काम भी कर सकते हैं जिनमें पढ़ाई भी शामिल है। एक तरह से रेडियो मध्यम आवाज में बजता रहता था और साथ साथ हम पढ़ाई के वक्त पढ़ते रहते थे या किसी अन्य काम, घर के घरेलू जो काम होते थे उनमें लगे रहते थे।
0: और आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त मनोरंजन का साधन जो है वो रेडियो ही हुआ करता था। और आपने गांव की बात की तो हम आपसे पूछना चाहते हैं आपका गांव कौन सा है और गांव में भी क्या उस वक्त और अब भी लोग आपके साथ कौन कौन होते हैं जो रेडियो सुनते हैं?
3: जी मैं मूलतः नोहर के नजदीक मेरा गाँव है गोरखाना, वहीं पला बढ़ा हूँ और 8वीं तक मैंने पढ़ाई भी वहीं करी है। वो ऐसा दौर था करीब 80-85 के आसपास की बात है, और सामूहिक रूप से घरवाले और पड़ोस के और सभी मतलब सोसाइटी के लोग मिलजुल करके रेडियो सुना करते थे और उसी पे चर्चाएं, उसी पे बातचीत संवाद होते रहते थे कि भाई आज रेडियो में ये प्रोग्राम आया, ये हमें अच्छा लगा, ये समाचार चल रहे हैं, अभी देश विदेश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, उस तरह की बातें हुआ करती थी।
0: माता पिता आज भी रेडियो सुनते हैं क्या?
3: जी अभी तो उनकी उम्र काफ़ी हो गई है, लेकिन यूं कहें कल ही की बात है कि रेडियो लगातार वो सुनते रहे हैं और हमारे पास वो पुराने बैंड वाला जो रेडियो आता था वो रेडियो हमारे घर पे मौजूद है गांव में, और आज भी वृद्ध जो माता पिता हैं वो भी और हमारे जो अन्य जो भाई बहन भतीजे जो भी हैं परिवार में रहते हैं वो सब लोग सुनते हैं रेडियो, किसी न किसी रूप में रेडियो से अवश्य जुड़े हैं वो।
0: आपसे चर्चा जारी रहेगी, हमारे साथ नरेंद्र जी सुथार भी हैं। इनसे सबसे पहला सवाल भी यही है कि आपको कितने साल हो गए रेडियो सुनते हुए?
1: जी मेरे को रेडियो सुनते हुए लगभग 25 साल हो गए, और इन 25 सालों में मैंने पढ़ाई की 8वीं तक, उसके बाद मैं फर्नीचर का काम करने लग गया और रेडियो मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा था और अब भी है, क्योंकि मैं जानकारियां और समाचार, मनोरंजन के प्रोग्राम सभी सुनता हूं और आकाशवाणी सूरतगढ़ से मैं सफेद सर जुड़ा हुआ हूं।
0: आकाशवाणी सूरतगढ़ पर तो आपके लगातार मेल, संदेश और खत हमें मिलते रहते हैं जो हमें बताते हैं कि आप बड़ी शिद्दत के साथ

0: रेडियो सुनते हैं। एक बात और मुझे याद आई है कि आपके साथ बहुत नाम होते हैं, कुछ मिस्त्री, कालू मिस्त्री, शंकर बिहारी, कुछ इस तरह के नाम। और कौन कौन रेडियो सुनते हैं आपके साथी और या परिवार वाले?
1: जी, मेरे परिवार वालों में मेरे बड़े भैया और मेरे पिताजी भी रेडियो अब भी सुनते हैं और बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं वो। अब मैं जो फर्नीचर का काम करता हूँ वो मिस्त्रीगण मेरे साथ हैं। रेडियो सुबह 9 बजे से लेकर निरंतर चलता रहता है और सभी मिस्त्री भाइयों के मैं नाम भेजता हूँ मेरे साथ। और मेरा एक छोटा भाई है मनोज और मेरा बेटा है हिमांशु, उनका भी नाम मैं भेजता हूँ।
0: सुबह से लेकर शाम तक काम भी चलता रहता है और रेडियो भी चलता रहता है, और रेडियो के जरिए आप मनोरंजन करते रहते हैं।
1: राजस्थानी में जितने भी सूरतगढ़ से प्रोग्राम आते हैं वो सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे चौपाल हो गया, गोरबंद, और जो फरमाइश के हिंदी फिल्मी गीतों में प्रोग्राम आते हैं वो भी मैं सुनता हूँ। और सुबह सुबह 8 बजे जो समाचार आते हैं दिल्ली से वो मैं रोज़ाना सुनता हूँ।
0: तो रेडियो ने काम को कभी बीच में रुकावट के रूप में या किसी तरह से प्रभावित नहीं किया?
1: रेडियो ने प्रभावित नहीं किया, रेडियो से सुनने से मन लगा रहता है काम में, और साथ में जानकारियां भी मिलती रहती है और मनोरंजन भी होता रहता है।
0: कोई ऐसा खास प्रोग्राम जिसने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो?
1: रेडियो तो बहुत पहले से सुनता हूँ, लेकिन कभी पत्र व्यवहार और ईमेल मैंने नहीं किए पहले पुराने समय में। अभी 5-6 वर्षों से मैं पत्र भेजता हूँ और ईमेल भेजता हूँ। सभी जो अनाउंसर है उनके प्रोग्राम सुनता हूँ, प्रतिक्रिया लिखता हूँ। चौमाल में रमेश सांवरिया जी, और गोरबंद में रोहतास शर्मा जी, और जो हिंदी फिल्म संगीत ले जाते हैं जो अनाउंसर है वो सभी मेरे प्रिय हैं।
0: चर्चा आप सभी के साथ जारी है। हमारे साथ हैं श्रीमती प्रेम देवी जी सीमर, आप गृहिणी हैं और घर का काम करते करते हमने सुना है कि आपका रेडियो भी सुबह से लेकर रात तक चलता रहता है, प्रोग्राम आप सुनती रहती हैं। आपसे भी सबसे पहला यही सवाल रहेगा कि इस सफर में आपने कितने साल रेडियो सुन लिया?
2: मैं बचपन से रेडियो सुनती आ रही हूँ। मेरे पिताजी बचपन में रेडियो सुनते थे और जब हम छोटे थे तो होश संभाला तभी से रेडियो सुनते आ रहे हैं। जब रेडियो चलता रहता था जानते नहीं थे कि अब समाचार आ रहे हैं या अब गीत आ रहे हैं। पुराने गीत बहुत पसंद है मुझे, तो समाचारों का इंतजार करते थे कि ये कब खत्म हो, कब गाना बजे। और जब गाने बजते थे तो मन मन में बहुत खुश होते थे क्योंकि उस समय रेडियो कम, लड़कियां कम सुनती थी। तो मुझे बहुत प्यार था रेडियो से। मेरे पिताजी ने बाद में मुझे अलग से रेडियो लेके दिया, तो घर में दो रेडियो हुआ करते थे। पिताजी अलग से दुकान में चलाते थे रेडियो और घर में मेरे लिए अलग। और जब मेरी शादी हुई तो कुछ दिन रेडियो से नाता टूट गया। मैंने पिताजी को बताया कि वहाँ रेडियो नहीं है, तो मेरे पिताजी ने अलग से रेडियो खरीद के मुझे मेरे ससुराल में पहुँचाया था। इस तरह से मुझे रेडियो से बहुत प्रेम है और हमेशा रहेगा। मैंने लगभग पूरी उम्र होश संभाला, तब से आज तक रेडियो सुनती आ रही हूँ। मैंने कभी रेडियो से नाता नहीं तोड़ा।
0: कितने साल हो गए लगभग, आप कितने साल मानती हैं आपको रेडियो सुनते हुए?
2: मुझे 45-46 साल हो गए क्योंकि 4-5 साल की उम्र में समझ आने लगा था कि ये रेडियो बज रहा है, तब से मैं रेडियो सुनती आ रही हूँ। अब तो और ज्यादा रेडियो अच्छा लगता है तब से भी। तब समझ में नहीं आता था कि क्या चल रहा है, क्या सुन रहे हैं। अब तो हर तरह का ज्ञान लेते हैं, हर तरह की सीखते हैं कि ये रेडियो से शिक्षा मिल रही है, ये बोलना सीखना, ये सब सब कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। रेडियो सुबह 7 बजे से रात की 9 बजे तक चलता रहता है घर में।
0: डॉक्टर राकेश जी शर्मा, अगला सवाल हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप आकाशवाणी सूरतगढ़ तो सुनते ही हैं, आकाशवाणी सूरतगढ़ के साथ साथ आप और कौन कौन से केंद्रों के प्रोग्राम सुनते हैं?
3: आकाशवाणी सूरतगढ़ के अलावा मैं विविध भारती अक्सर सुनता हूँ। विविध भारती पर मनोरंजक प्रोग्राम है जो काफी अच्छे अच्छे आते हैं। इसके अलावा चूरू सुनता हूँ, और कुछ समय के लिए जैसे बीकानेर चला गया था मैं पढ़ाई करने, तो उस वक्त ट्रांजिस्टर सेट पे इस बीकानेर केंद्र भी सुना है। और इसी तरह दिल्ली के कार्यक्रम भी हम सुनते रहते हैं। दिल्ली से किसी समय में धीमी गति का समाचार बुलेटिन आया करता था, वो मैं बिल्कुल उसको डिक्टेट करता था, बिल्कुल बाकायदा लिखता था और अपनी हैंडराइटिंग इम्प्रूव करने की कोशिश करता था।
0: आकाशवाणी सूरतगढ़ के कुछ प्रोग्रामों के अगर आप नाम लेना चाहते हैं जिन्होंने आपको विशेष रूप से प्रभावित किया हो, जो आपको खास अच्छे लगते हो।
3: देखिए, रेडियो हमें जिंदगी जीना सिखाता है, और इसी क्रम में जैसे ही रेडियो की सभा शुरू होती है तो वो उठने का वक्त होता है, और वहीं से हमारा जो है दिनचर्या शुरू होती है। और वंदना कार्यक्रम सुनते हैं, उसके बाद में जो आजकल सुप्रभात कार्यक्रम आता है वो सुनते हैं, और फिल्म संगीत के कार्यक्रम आते हैं, राजस्थानी गानों के कार्यक्रम जो आते हैं, मरुमंगल।

0: और चौपाल है, ये सब सुनते हैं। इसी तरह हम गोरबंद और मिट्टी दी खुशबू, एक काफ़ी लोकप्रिय कार्यक्रम अपने यहाँ केंद्र से आता है। और इसी तरह प्रस्तोता की बात करें तो रोहिताश जी शर्मा हैं, दुर्गाराम जी हैं, विकास जी पारिक और सुमन जी शेखावत हैं, सभी उद्घोषक यहाँ के हैं जो अच्छे हैं।
1: सुथार जी, आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप बताइए परिवार में आपके कौन कौन लोग रेडियो सुनते हैं?
2: मेरे परिवार में मेरे पिताजी और मेरा छोटा भाई मनोज और बेटी सुचित्रा है, वो विशेष उनका रेडियो से लगाव है और वो ज़्यादातर राजस्थानी प्रोग्राम जो आते हैं गोरबंद चौपाल वो ही ज़्यादा सुनती है और उनमें मैं उनके नाम भेजता हूँ।
1: सुतार जी, आप जैसे बहुत से हमारे श्रोता हैं जो आज भी रेडियो से लगातार जुड़े हुए हैं, बरसों से जुड़े हुए हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए रेडियो के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं?
2: जी, मैं श्रोताओं को रेडियो के बारे में यही कहना चाहूँगा कि रेडियो एक बहुत ही अच्छा संसाधन है जो हमें ज्ञानवर्धक जानकारियाँ देता है और मनोरंजन भी देता है, और कुछ भी खर्चा नहीं आता फ्री में, और साथ में हम जो भी जॉब करें, काम करें, पढ़ाई करें, वो भी कर सकते हैं। यही मेरा कहना है।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने, कार्य में भी व्यवधान नहीं होता बल्कि मनोरंजन के साथ साथ कार्य करने में भी आसानी हो जाती है। प्रेम देवी जी हैं, आपसे जानना चाहते हैं कि आकाशवाणी सूरतगढ़ से महिलाओं के भी कई कार्यक्रम आते हैं, तो क्या आप लगातार सुनती हैं, उनके बारे में आपका क्या कहना है?
3: हाँ, महिला जगत और जो घर आंगन प्रोग्राम होता है वो हम सुनते हैं दोपहर में, वो प्रोग्राम तो मैं जरूर सुनती हूँ। चाहे कहीं भी हो, मेरी माँ का ऑपरेशन हुआ था और उस समय आईसीयू के आगे मैं बैठी थी और वहां भी मैंने कोशिश की कि मैं सुनूं पर मैं सुन नहीं पाई, पर मैं सुनती हूँ ये प्रोग्राम महिला जगत जरूर।
1: इन कार्यक्रमों के अलावा अगर आपको ध्यान में हो किस कार्यक्रम ने आपको बहुत ज्यादा प्रभावित किया हो, अगर किसी और कार्यक्रम का आप नाम लेना चाहें तो आप हमें बताएं जरूर।
3: और सभी प्रोग्राम तो अच्छे लगते हैं, जैसे गीत गंगा, मिट्टी दी खुशबू और गोरबंश विशेषकर, वो भी मैं सुनती हूँ। और 11 बजे गीत तो आता है, गीतमाला रेडियो चलता रहता है, तो गीत सभी प्रोग्राम सुनते हैं।
1: हमारे यहाँ से फोन इन प्रोग्राम भी आते हैं, फोन इन फरमाइश के, क्या आपने भी कभी फोन लगाने की कोशिश की?
3: हाँ, बात हुई है मेरी 1-2 बार।
1: तो उस वक्त फोन इन कार्यक्रम में फोन लगना और फिर अपनी फरमाइश का गीत सुनना आपको कैसा लगता है?
3: बहुत खुशी हुई है, हमारा प्रोग्राम में कॉल लगा तो बहुत खुशी हुई है।
1: आप पुरानी श्रोता हैं हमारी, बरसों से जुड़ी है, और नई पीढ़ी जो है उसने रेडियो सुनना थोड़ा कम कर रखा है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहती हैं?
3: देखिए, रेडियो एक ऐसा साधन है कि स्वच्छ मनोरंजन इसमें जो होता है वो ऐसा कहीं भी नहीं होता, मोबाइल में या कुछ कहाँ भी कहीं भी नहीं सकता। स्वच्छ ज्ञान और स्वच्छ मनोरंजन रेडियो से ही मिलता है, स्वच्छ भाषा उच्चारण सब कुछ रेडियो पर उपलब्ध होता है, वो और कहीं नहीं है।
1: बिल्कुल आपने सही कहा, रेडियो जो है वो विश्वसनीयता का दूसरा नाम है। यहाँ पर जो सटीक जानकारी मिलती है, जो सूचना और जो शिक्षा के बारे में और जो मनोरंजन मिलता है, ऐसा जो है अन्य माध्यम कहीं और नज़र नहीं आता। डॉक्टर राकेश जी, आपसे भी जाते जाते यही सवाल है कि नई पीढ़ी है, जो युवा पीढ़ी है, जो आजकल के लोग कम सुनते हैं, तो आप रेडियो के बारे में उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: मैं यही कहूंगा कि भी आकाशवाणी कहीं भी आप किसी भी तरह का मनोरंजन या किसी भी तरह के समाचार या किसी भी तरह की ज्ञानवर्धक जो बातें सुनते हैं रेडियो के माध्यम से, वही बात हम सुनने जा रहे हैं, तो इसका मतलब वो सत्यता उसकी खरी है, मतलब सत्यता पर वो पूरा उतर रही है। अगर परिवार में सब लोग रेडियो सुनेंगे या बड़े बुजुर्ग सुनते रहेंगे तो बच्चे भी उन्हीं से वही सीखते हैं, और उनको सीखने को मिलता है, हमारे मम्मी पापा या बहन भाई सुन रहे हैं तो क्यों ना हम भी सुने।
1: मतलब यूँ है कि कुछ अच्छा प्राप्त करने के लिए, कुछ अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए आजकल भी जो है जनरेशन है उसको रेडियो सुनना चाहिए।
0: बिल्कुल, रिलायबिलिटी इसकी है ना, जो बहुत ही विश्वसनीयता का कहें तो एक नंबर पे है आज भी रेडियो।
1: मनोरंजन के कुछ कार्यक्रम होते हैं जैसे सुगम संगीत के हैं, लोक संगीत के कार्यक्रम हैं, फिल्म संगीत के कार्यक्रम हैं, तो इनमें तो गीतों गजलों के जरिए हमारा मनोरंजन होता है। इसके अलावा जो स्पोकन वर्ड के भी कुछ कार्यक्रम हमारे होते हैं, वार्ता से लेकर रूपक झलकी नाटक वगैरह, तो उनमें भी आपकी रुचि है क्या?
0: हाँ बिल्कुल, रेडियो हमें हर तरह से अलग अलग विधाओं में हमारा मनोरंजन भी करता है, जानकारियां भी देता है, वो उसी का रूप है, रूपक है, नाटक है, झलकी या अन्य तरह की चर्चाएं, परिचर्चाएं, ये सब रेडियो पर अगर सुनते हैं तो

0: हमारा उच्चारण और बोलने का लहजा सुधरता है, बल्कि हमें तरह तरह की जानकारियां भी मिलती हैं और हमें कला और संस्कृति में आगे बढ़ना चाहते हैं जो लोग, वो रूपक, नाटक, झलकी और इनके माध्यम से कुछ सीख करके वो इस क्षेत्र में भी अपना कुछ दिखा सकते हैं। मतलब
1: यानी हम ये कह सकते हैं कि आपकी नाटक झलकियां वगैरह सुनने में भी रुचि है। पिछले दिनों सुना गया कोई नाटक, अगर उसका कुछ आपको याद हो तो आप हमें बताना चाहें।
0: हाँ, अभी हाल ही में आकाशवाणी सूरतगढ़ से ही हमने एक या दो दो नाटक सुने थे। एक था आखिरी खत और एक था अंतस का उजास। ये दोनों नाटक अभी हमने सुने थे और इसी तरह कई परिचर्चाएं हैं, कई इंटरव्यूज हैं और कई लाइव इंटरव्यूज हैं, वो सुनते रहते हैं हम लोग। उनसे बहुत सारी जानकारियां भी मिलती हैं और बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर।
1: जी, ये सवाल हमने इसीलिए किया था क्योंकि जो गीत संगीत के जरिए मनोरंजन होता है, उसके साथ साथ जो हमारे नाटक झलकी, रूपक वगैरह, परिचर्चा, भेंट वार्ताएं, इनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आज की चर्चा हमारी बहुत ही अच्छी रही। हमने ये भी सुना है कि आपकी गजलों में रुचि है। आपकी पसंद के कलाकार कौन हैं?
0: हाँ, यूँ तो हर तरह के कार्यक्रम सुनते हैं, हर तरह के गीत संगीत हमें पसंद है, बट मदन मोहन जी की संगीतबद्ध किए काफ़ी गाने हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। जगजीत सिंह की गज़लें हैं वो मैं खास तौर से पसंद करता हूँ। ट्रेनिंग करते थे, मेडिकल की पढ़ाई करते थे, उस वक्त गज़लों का कलेक्शन किया था जगजीत सिंह की। स्पेशली गज़ल अपने आप में एक अलग गायकी की अलग विधा है, जिसमें शब्दों या यूं कहें बोल का काफ़ी मतलब प्रोमिनेंसी रहती है।
1: आपको चलते चलते जगजीत सिंह की आवाज़ में हम एक गजल सुनवा देते हैं। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत शुक्रिया।
0: जी धन्यवाद, बहुत
1: नरेंद्र जी सुतार, आपका भी बहुत शुक्रिया।
2: जी धन्यवाद।
1: और प्रेम देवी जी, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका भी बहुत धन्यवाद। आपका
3: जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और रेडियो के 90 वर्ष होने के उपलक्ष्य में आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।

अभी आपने सुना आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर नरेश वर्मा की श्रोताओं से बातचीत। श्रोता थे नरेंद्र सुथार, प्रेम देवी सिंवर और

दोस्तों जरा सा एक पल के लिए कल्पना कीजिए कि सुबह की शुरुआत पक्षियों की मधुर चहचहाट से हो, मंदिर की घंटियों की शांत ध्वनि सुनाई दे, पेड़ों की पत्तियों से गुजरती हवा का संगीत कानों में घुले, कितना सुकून महसूस होता है। लेकिन आज इन प्राकृतिक ध्वनियों की जगह तेज होर्न, डीजे, लाउडस्पीकर, पटाखों और मशीनों का शोर लेता जा रहा है। यही अनचाहा और अत्यधिक शोर जब हमारे स्वास्थ्य और जीवन को प्रभावित करने लगे तो उसे ध्वनि प्रदूषण कहा जाता है। लगातार अधिक शोर में रहना हमारे शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा बन सकता है। शहरों में तो ये आम बात है, लेकिन अब गांवों में भी इससे अछूते नहीं रहे हैं। ध्वनि प्रदूषण के कई कारण हैं। सड़कों पर अनावश्यक हॉर्न बजाना, तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर चलाना, शादी ब्याह और धार्मिक आयोजनों में ध्वनि की निर्धारित सीमा का उल्लंघन करना, पटाखों का अत्यधिक उपयोग, औद्योगिक मशीनों और निर्माण कार्य में इन मशीनों का उपयोग, ये सभी शोर के प्रमुख स्रोत हैं। दोस्तों कई लोग अपने वाहन का मॉडिफाइड साइलेंसर लगवाकर तेज आवाज पैदा करते हैं, जो न केवल नियमों का उल्लंघन है बल्कि दूसरों के लिए भी परेशानी का कारण बन सकता है। और सवाल अब ये है कि ये शोर हमें प्रभावित कैसे करता है। जी हां, लगातार तेज आवाज सुनने से सुनने की क्षमता कम हो सकती है, नींद पूरी नहीं होती, जिससे थकान और चिड़चिड़ापन बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर, स्ट्रेस यानी तनाव, सिरदर्द और हृदय संबंधी समस्याएं और मानसिक असंतुलन जैसी परेशानियां भी ध्वनि प्रदूषण से जुड़ी हुई हैं। बच्चों की पढ़ाई में एकाग्रता कम होती है और बुजुर्गों तथा बीमार लोगों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ता है। दोस्तों ध्वनि प्रदूषण के बचाव के लिए हमें छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। सबसे पहले बिना आवश्यक हॉर्न बजाने की आदत छोड़नी होगी, सार्वजनिक स्थानों पर ध्वनि की मर्यादा बनाए रखनी होगी, विवाह समारोह और आयोजनों में निर्धारित समय और ध्वनि सीमा का पालन करना चाहिए। सबसे जरूरी बात, पेड़ पौधे अधिक लगाने होंगे, क्योंकि हरित क्षेत्र ध्वनि को कम करने में मदद करते हैं। यदि आपके आसपास भी अत्यधिक शोर हो रहा है तो संबंधित प्रशासन को इसकी जानकारी देना हमारा कर्तव्य बन जाता है। तो आइए आज हम सब यही संकल्प लेते हैं कि अनावश्यक शोर नहीं करेंगे और ना करने देंगे, क्योंकि शांति केवल सुनने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने का सुख भी है।

0: कभी तो हंसाए।
1: दोस्तों, स्वयं को जानना भी एक कला है। अध्यात्म इससे जुड़ा हुआ है। अध्यात्म का अर्थ संसार छोड़ना नहीं है, बल्कि अपने आप को जानना है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में, जहां तनाव, अवसाद और अकेलापन तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसे समय में अध्यात्म हमें भीतर से मजबूत बनाता है। अध्यात्म हमें धैर्य सिखाता है, क्षमा, संतोष, सेवा और प्रेम करना सिखाता है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है, प्रतिदिन कुछ मिनट ध्यान लगाने से तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। तो दोस्तों, हमें रोजाना 10 मिनट मौन रहकर अपने आप को जानना चाहिए, सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, योग करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए और अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, जिससे जीवन में अध्यात्म का महत्व हमें लगातार मिलता रहे।

दोस्तों वर्षा का दौर है, लेकिन लगातार बरसात से फिर भी पानी की कमी रहती है। और प्रश्न उठता है क्यों? क्योंकि हम वर्षा जल को सहेज नहीं पाते, यानी उसका संरक्षण नहीं कर पाते। बारिश के पानी को संग्रहित कर भविष्य के लिए सुरक्षित रखना जल संरक्षण कहलाता है। इसके कई लाभ हैं, जैसे भूजल स्तर बढ़ता है, पेयजल उपलब्ध रहता है, खेती को लाभ मिलता है और बाढ़ का खतरा भी घटता है। और हमारे राजस्थान के लिए तो ये बढ़िया उदाहरण है कि यहाँ जोहड़, बावड़ी, टांका और कुंड, ये हमारी पारंपरिक जल प्रबंधन प्रणाली रही है। तो हमें करना क्या चाहिए, ये प्रश्न है। युवाओं को आगे आना चाहिए और जागरूकता फैलानी चाहिए। हमें घर की छत पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगवाना चाहिए, पानी की बर्बादी रोकनी चाहिए, और सबसे जरूरी बात, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए।

दोस्तों, इतिहास केवल बीते हुए समय का लेखा जोखा नहीं है, बल्कि वह हमारे वर्तमान को दिशा देता है और भविष्य के लिए प्रेरणा भी बनता है। आइए जानते हैं आज के दिन यानी 26 जून के दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। आज के दिन 26 जून 1975 को भारत के इतिहास में ये दिन एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में दर्ज है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में देश में आपातकाल लागू किया गया था, जो लगभग

21 महीनों तक चला। यह भारतीय लोकतंत्र के सबसे चर्चित अध्यायों में से एक माना जाता है। आज के दिन 26 जून 1997 को प्रसिद्ध लेखिका जेके रोलिंग की पुस्तक हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन पहली बार प्रकाशित हुई थी। यही पुस्तक आगे चलकर विश्व की सबसे लोकप्रिय पुस्तक श्रृंखलाओं में शामिल हुई। और आज के दिन 26 जून को हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ दुरुपयोग एवं अवैध तस्करी निरोधक दिवस यानी इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग मनाया जाता है। इसका उद्देश्य युवाओं और समाज को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा नशा मुक्त समाज का संदेश देना है। दोस्तों, इतिहास हमें केवल यह नहीं बताता कि क्या हुआ था, बल्कि यह भी सिखाता है कि भविष्य में क्या करना चाहिए और क्या नहीं।

अभी आप कार्यक्रम युवाणी सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण।

अब से कुछ ही देर में 6:05 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सिराई की। प्रादेशिक समाचार आप सुन सकेंगे 6:30 पर, जिसे हम अपने जयपुर केंद्र से रिले करेंगे। कार्यक्रम जिले की चिट्ठी का समय रहेगा 6:40 पर। 6:45 पर आप सुन सकेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार। शाम 7 कार्यक्रम रहेगा चौपाल का। कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन सकेंगे गीता रो गजरो। इसके अलावा बाजार भाव व मौसम की जानकारी। आज के कार्यक्रम के प्रस्तोता होंगे रमेश चावरिया।

7:45 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत। रात्रि 8 बजे कार्यक्रम रहेगा एक ही फिल्म से। रात्रि 8:30 पर आप सुन सकेंगे स्पोर्ट्स कैन हमारे दिल्ली केंद्र से। समाचार संध्या का समय रहेगा 8:45 पर। News@9 रात्रि 9 बजे। सुगम संगीत आप सुन सकेंगे रात्रि 9:15 पर।

रात्रि 9:30 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम हेलो मिट्टी दी खुशबू। प्रस्तोता होंगे जसवीर सिंह और संयोजक नवीन सिसोदिया। रात्रि 10:30 पर आप सुन सकेंगे फिल्म संगीत।

अभी आप हमारे आज के शेष कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आप हमें सुन सकते हैं मीडियम वेव 918 किलोहर्ट्ज़ पर, डीआरएम बैंड 909 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर।

मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम सिराई की।

0: हाँ नमस्कार, आदाब, सलाम जी आयांकुं। आज मैं डॉक्टर चंद्रशेखर सिराई की प्रोग्राम है त्वाडे वास्ते एक होर प्रोग्राम लेके आया हाँ। आज इस प्रोग्राम में मेरे नाल हाजिर थे साढ़े स्टूडियो में प्रमोद चोपड़ा जी, पानीपत तो। स्वागत है प्रमोद चोपड़ा जी।
1: धन्यवाद
0: आज तुसा अपने गीत लेके आए हो, टप्पे लेके आए हो, सब बहुत चंगा लगे हाँ ठर गए थे। आज उम्मीद करे ना कि जो श्रोते आज इस प्रोग्राम को सुन सन उन्होंने जरूर ये प्रोग्राम पसंद आसी। मैं डॉक्टर चंद्रशेखर तुहाडा अपना ताबेदार हिसार तू आना जिमें, ते प्रमोद चोपड़ा जी भी पहले तुहाडे सामने आ चुके हैं। आज वल साडे स्टूडियो च आए, साडी खुश नसीबी है। ते मैं हुण सीधा तुहाकू जिहड़ा है प्रमोद चोपड़ा जी दी आवाज़ नाल ही जोड़ना चाहना हाँ कि वो आवण अपने गीत दे नाल इस प्रोग्राम को शुरुआत करन।
1: ਡਾਕਟਰ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਜੀ ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੁਰੇਸ਼ ਮੀਣਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਕੂੰ ਟਾਈਮ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਯਾਦ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਵਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ
0: जी
1: ਜੋ
0: स्वागत,
1: ਟੁੱਟਾ ਫੁੱਟਾ ਹੈ
0: हाँ जी स्वागत।

0: इथां तां बिन पीते हर शय में बहक दी देखूं फुवारा सावन दे। बागा विच भी इस टाइम झूले पै बंदन पींगा
1: जी
0: पै बंदन
1: जी जी जी
0: ते अर्ज किते
1: बात

0: गुंबद महसूस करें दिन उम्र
1: क्या
0: भर,
1: बात, क्या बात है डॉक्टर साहब।
0: भाभी लाड करें दी हाई। आओ अपनी भाभी को याद करो, भाभी लाड करें दी आई। इस भाभी है तुसा अपनी दादी को भी, नानी को भी, किसे को भी, किसे दे लाड को जेड़ा है याद कर सकते हो।
1: क्या बात है,
0: क्योंकि जेड़े वेले असा सिराए की दी गल करें ने हैं घटो घट हिंदुस्तान है, तब वल इस सिराए की जुबान जड़ी बचा रखी है, साढ़े बजुर्गों ने बचा रखी है, ते साकू सिराए की याद आवे तो कोई बुजुर्ग किरदार याद ना आवे हो नहीं
1: हो नहीं
0: सकता,
1: सकता,
0: ये थी
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: नहीं।
0: सकता। ते आओ सिराई की ते उस बुजुर्ग किरदार को आप याद करूं जेड़े इस माँ बोली को हाले तक जिंदा रखे हुए हैं।

0: भावीवल संगड़ी ढांदे ही भावीवल घ्यू दे नाल अढ़ेंदी
1: क्या बात है, क्या
0: हाई,
1: बात है,
0: घ्यू
1: अच्छा।
0: दे नाल अढ़ेंदी हाई, बहु आशीषां देंदी हाई, नजर न लगे बालां कूं।

0: दे गुस्से कु ठड्ढा ठार करें दी हई, ठड्ढा ठार करें दी हई, बहु शीशा ने दी हई। अवल क्या होता है, साडे सारे गर्म स्वेटर। भाभी क्या है,
1: क्या
0: सर्दी आज
1: बात,
0: क्या क्या, साडे सारे
1: गरम
0: गर्म
1: स्वेटर।
0: स्वेटर, भाभी आप बुने दी हई, भाभी आप बुने दी हई। एक अड़ोस पड़ोस दा संस्कार देना, हंसी मखोल दी भी गल है ते सच्ची गल भी क्या है। एक पड़ोसन दी भाभी ता, एक पड़ोसन दी भाभी ता, जुआ रोज कढ़े दी हाई, जुआ रोज कढ़े दी हाई। तप चढ़ दे ही तप, आज दे बालों को डस्ट
1: बुखार
0: बुखार,
1: आ गया।
0: बुखार थी में दे जिको आदन फीवर कि तप चढ़ दे ही भाभी साकू, वड़ी द्राख खवें दी हाई, बहु शीशा ने दी हाई, वड़ी द्राख खवें दी हाई, लाला जी दे सिर ते अक्सर, भाभी तेल मले दी हाई, बहु शीशा ने दी हाई। वल क्या है मियाँ दे, तू सावण की गल की है, वाल सावण छोंदा क्या है कि बारिश को आदन मी, कि मियाँ दे ही भाभी खींचे, पकोड़े गरम तले दी हाई,
1: वाह वाह वाह।
0: पकोड़े गरम तले दी हाई, डई रिड़क

0: शुक्रिया,
1: वाह भाई
0: मेहरबानी,
1: क्या क्या
0: आओ
1: बात है
0: तो वाल मैं जड़ा है, ये मैं बहुत
1: डॉक्टर
0: लंबी
1: साहब,
0: गजल है,
1: कमाल की
0: मैं
1: चीज।
0: चाहवा तो शायद आधा घंटा भी इस गजल को पढ़ सकता, क्योंकि टाइम दी
1: टाइम दी कभी
0: मजबूरी है, ये
1: बराबर।
0: प्रोग्राम है, ते आओ वाल तो मैं प्रमोद चोपड़ा जी दे मिठड़े गावण वाल दोबारा ले चला,
1: वाह जी,
0: स्वागत है प्रमोद चोपड़ा।
1: मैं जरा हूँ तो सुनेंदा पिया टप्पे,
0: जी जी इरशाद
1: मुल्तानी टप्पे तुसा सुने हो सन, ते सावण दे उत्ते मैं टप्पे कुछ बनाए न,
0: जी, स्वागत।
1: अर्ज करेंदा पिया। सावण दा महीना है,

0: अग्गों वाल प्रकृति दी गल है, सावण दे बहारां हिन,
1: जी,
0: सावण दे बहारां हिन, दरख्तां ते टाणियां ते, दरख्तां दे टाणियां ते पींगां दे कतारां
1: वाह
0: हिन।
1: वाह,

0: वससी मैं दसासा थर
1: वाह से
0: वैसी,
1: वाह।
0: सावन दामी वससी मैं दसासा थर वैसी। ते बदलां विच होर क्या है, बदलां विच जरा सावन है,
1: जी,
0: बदलां विच सावन है। बस सावन आवन आला, ते सावन दे वादे पक्के होंदन यारां को मिलन दे। ते क्या कहंदी पई है, बदलां विच सावन है, सावन दा करार पक्का, सावन दा

0: रासा नाहूंगा अनुवादन दासा, जाऊंगा यानी वैसा, कहूंगा अनुवादन अखेसा, बुलाऊंगा यानी सदेसा। साढ़े घर च होंगे बरांडे बेलियो, जिस दिन दे बरांडे दे आलने विच।
1: अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में, राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच करबला में ताजिए दफनाए जा रहे हैं और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। समाचारों के साथ मैं अल्पना राठौड़ और अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस के अवसर पर जयपुर में कल कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होने वाले समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग की योजनाओं के लाभार्थियों को ऋण अनुदान और सब्सिडी के डमी चेक प्रदान करेंगे। वेरिको की योजनाओं के लाभार्थियों को भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेंगे। प्रदेश में पहली बार आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम के दौरान राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी, ODOP कॉफी टेबल बुक और रैम पोर्टल भी लॉन्च किए जाएंगे। समारोह में रिको की डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी के आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी प्रदान किए जाएंगे। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़, राज्य मंत्री के विश्नोई सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस मनाया गया। युवाओं और नई पीढ़ी में नशे तथा मादक पदार्थों के बढ़ते इस्तेमाल को रोकने और उन्हें जागरूक करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। इस मौके पर देश प्रदेश में विभिन्न जागरूकता गतिविधियां आयोजित की गईं। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों का कारोबार देश की सुरक्षा, सामाजिक व्यवस्था, आर्थिक हितों और युवाओं के भविष्य के लिए बड़ा खतरा है। श्री शाह ने आध्यात्मिक नेताओं, युवाओं और माताओं से इस अभियान में मिलकर भाग लेने की अपील की। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान 1,18,00,000 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को जब्त किया गया है। उन्होंने कहा कि यह आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं।
2: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
1: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर प्रदेश में भी विभिन्न स्थानों पर कार्यक्रम रखे गए। डीग में जिला कलेक्टर राजकुमार कसवां की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें लोगों को नशा मुक्त भारत अभियान की जानकारी दी गई। नागौर में साइकिल जागरूकता रैली निकालकर नशा नहीं करने का संदेश दिया गया। जैसलमेर में माए भारत के स्वयं सेवकों ने नशे के दुष्प्रभावों को लेकर आम जन को जागरूक किया। पाली के बाली में प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से कार्यक्रम रखा गया। इस दौरान समाज को नशे के नुकसान से जागरूक किया गया और नशा मुक्त भारत के निर्माण में सहयोग करने का संदेश दिया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवा नियमों में संशोधन का मसौदा जारी किया है। इसके तहत आयात की जाने वाली दवाओं की बची हुई वैधता अवधि यानी शेल्फ लाइफ आयात के समय कम से कम 12 महीने होना अनिवार्य होगा। हालांकि जैविक दवाओं और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवाओं के लिए मौजूदा नियम लागू रहेंगे। इनके लिए आयात के समय कम से कम 60%

0: शेल्फ लाइफ होना जरूरी होगा। मंत्रालय के अनुसार इस संशोधन से दवाओं की अनावश्यक बर्बादी कम होगी और दवा भंडार का बेहतर उपयोग हो सकेगा। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव केवल आयात के समय दवाओं की बची हुई शेल्फ लाइफ से संबंधित है। जोधपुर हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल से आगामी 4 जुलाई से उड़ानें संचालित हो जाएंगी। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर में पत्रकारों को बताया कि नए टर्मिनल से हवाई सेवाएं शुरू होने से पश्चिमी राजस्थान की कनेक्टिविटी बढ़ेगी और यहां पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाइयां मिलेंगी।
1: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी, उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी, आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएं। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। पैगंबर मोहम्मद के नवासे हजरत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर शहीदों की याद में जुलूस के साथ ताजिए निकाले जा रहे हैं। इन्हें करबला मैदानों में परंपरागत तरीके से दफनाया जा रहा है। इससे पहले प्रदेश भर में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मजलिसें और धार्मिक सभाएं आयोजित की गईं। जयपुर के रामगंज, दिल्ली रोड और चार दीवारी क्षेत्र में जगह जगह लंगर और पानी की छबीलें लगाई गई। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर मुहर्रम के मौके पर बड़ी संख्या में जायरीन ने फातिहा पढ़ी। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है, जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमा धारीच, आकाशवाणी समाचार, अजमेर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आमजन से इस मॉनसून के दौरान अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाने का आह्वान किया है। राज्यपाल ने आज जयपुर के निमेड़ा स्थित एक गौशाला में आयोजित धार्मिक आयोजन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यों का आधार है। राज्यपाल ने गायों को चारा खिलाकर लोगों को जीवों के प्रति करुणा और दया भाव बनाए रखने का आग्रह किया। देश को सर्वाधिक सैन्यकर्मी देने वाला झुंझुनू जिले के वायु सैन्यकर्मी सुरेंद्र मोगा के सर्वोच्च बलिदान को नेशनल वॉर मेमोरियल की वेबसाइट में शामिल किया गया है। सार्जेंट मोगा ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देश के लिए प्राण न्यौछावर किए थे। उनके साथ 5 अन्य जवानों को भी वेबसाइट के रोल ऑफ ऑनर में सम्मिलित किया गया है। इसके साथ ही युद्ध स्मारक की 3D वॉल पर भी सुरेंद्र मोगा का नाम अंकित किया गया है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में एक प्रश्न के उत्तर में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शहीद भारतीय सैनिकों की सही सूची देश को देने की बात कही थी। भीलवाड़ा में जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र की ओर से औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगाया गया। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा ने बताया कि इस अवसर पर युवा संबल मेला भी आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य युवाओं को उद्यमी के तौर पर प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना था। झुंझुनू जिले के कुतुबपुरा गांव में नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान की ओर से आज नॉन वाटर शेड परियोजना का शुभारंभ हुआ। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ने ग्रामीणों को वर्षा जल संरक्षण अपनाने और खेतों में अजोला और कम पानी की फसलें उगाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने क्षेत्र में बैंकिंग सेवा के विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनाओं की शुरुआत की भी बात कही। और अब मौसम। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान पूर्वी और पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज की गई हैं। इस दौरान दक्षिणी जिलों में भी कई जगह पर तेज बारिश रिकॉर्ड हुई। मौसम विभाग के अनुसार झालावाड़ जिले के अकलेरा में सर्वाधिक 5 सेंटीमीटर बारिश रिपोर्ट हुई। राजधानी जयपुर सहित आसपास के इलाकों में आज बादल छाए रहे और कई जगह पर बूंदाबांदी हुई। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिनों में बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, अजमेर और

पट्टा संभाग में प्री मॉनसून की बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं। इस बीच मॉनसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ और भागों में भी आगे बढ़ा है। इसके अगले हफ्ते तक मध्य और उत्तरी भारत तक पहुंचने के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं। IRCTC ने नया पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर शुरू किया है। इसके लिए भारत गौरव डीलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जाएगी। प्रायोगिक तौर पर शुरू होने वाली इस 11 दिन की रेल यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं और पर्यटकों को उत्तर प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड के प्रमुख तीर्थ स्थलों पर जाने का मौका मिलेगा। इसके लिए IRCTC के टूरिज्म पोर्टल पर या IRCTC पर्यटन कार्यालयों पर बुकिंग कराई जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। यह मासिक रेडियो कार्यक्रम का 135वां एपिसोड होगा। कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों, AIR न्यूज़ की वेबसाइट और न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप पर किया जाएगा। साथ ही AIR न्यूज़, DD न्यूज़, प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी कार्यक्रम का प्रसारण होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस के अवसर पर राज्य स्तरीय आयोजन कल जयपुर में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी की लॉन्चिंग होगी। गृह मंत्री अमित शाह ने अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस पर नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत का प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। मातम के बीच कर्बला में ताज़िये दफनाए जा रहे हैं। और प्रदेश में बीते 24 घंटों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां दर्ज, मॉनसून के अगले हफ्ते तक और आगे बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप जितेंद्र सिंह पूनिया से चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख अजय सिंह शक्तावत ने तैयार किया है। इमाम हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाने वाला मातमी पर्व मुहर्रम आज श्रद्धा के साथ मनाया गया। जिले में सुबह से ही रंग बिरंगे ताजिए निकाले गए। इस दौरान मोमिनों ने हैरतअंगेज प्रदर्शन किए। इससे पहले प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करते हुए शहर की निगरानी बढ़ाने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगवाए। शांति समिति की बैठक में जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक ने जुलूस के दौरान अफवाह, नशा, गुंडागर्दी या अव्यवस्था फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई करने की चेतावनी दी। साथ ही आमजन से शांति और सौहार्द बनाए रखने की भी अपील की। पिछले दिनों पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी चित्तौड़गढ़ प्रवास पर रहे। राज्यपाल और विधानसभा अध्यक्ष ने चित्तौड़ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के रजत जयंती वर्ष के कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि सहकारी संस्थाएं समाज और अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का प्रभावी माध्यम है। समारोह में विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बैंक की प्रगति और आधुनिक बैंकिंग सेवाओं की सराहना करते हुए कहा कि ऐसी संस्थाएं आम जन को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर जिले भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन ने दुर्ग स्थित कालिका माता मंदिर में पूजा अर्चना कर राष्ट्र कल्याण की प्रार्थना की। इस अवसर पर 12 साल विश्वास के जन कल्याण के की थीम पर 3 दिवसीय जिला प्रदर्शनी भी लगाई गई। केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय वयोश्री के तहत राज्य सरकार एवं एलिम्को के सहयोग से इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम में सहायक उपकरण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत और सांसद सीपी जोशी ने शिरकत की। शिविर में 800 वरिष्ठ नागरिकों को 75 लाख रुपए मूल्य के सहायक उपकरण वितरित किए गए। पिछले दिनों चित्तौड़गढ़ सांसद और एयरपोर्ट सलाहकार समिति के अध्यक्ष सीपी जोशी की अध्यक्षता में उदयपुर में एयरपोर्ट सलाहकार समिति

0: बैठक आयोजित की गई। बैठक में सांसद सीपी जोशी ने उदयपुर स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट को पश्चिम भारत का प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन एवं विमानन केंद्र बनाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। उन्होंने एयरपोर्ट पर टर्मिनल विस्तार, वाईफाई, डिजिटल सूचना प्रणाली, रनवे विस्तार, कार्गो हब एवं एयरो सिटी विकास की संभावना पर विस्तृत रोड मैप तैयार करने का भी सुझाव दिया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने भारतीय पर्यटन एवं पुरातत्व विभाग, नगर परिषद और यूआईटी अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में जिला कलेक्टर ने दुर्ग पर हुए अवैध निर्माण पर कड़ी कार्रवाई कर अतिक्रमण के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और अतिक्रमणों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए। बैठक में दुर्ग में विकसित की जाने वाली मूलभूत सुविधाओं, विद्युत साज सज्जा और यातायात प्रबंधन को भी प्रभावी बनाने पर चर्चा की गई। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर ई वेस्ट के सुरक्षित निस्तारण के लिए वेस्ट संग्रहण अभियान का शुभारंभ करते हुए ई वेस्ट रथ को रवाना किया गया। जिला कलेक्टर ने आमजन से पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण करने की अपील की। इसी कड़ी में वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत चित्तौड़ दुर्ग पर महास्वच्छता अभियान चलाया गया। जिले में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस संकल्प और उत्साह के साथ मनाया गया। जिले भर में 3,00,000 से ज्यादा लोगों ने एक साथ योगाभ्यास किया। इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में योग गुरु सुरेश शर्मा और डॉक्टर मुकेश माली ने योगाभ्यास कराया। कार्यक्रम के दौरान योग स्थल पर एलईडी स्क्रीन के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का भी लाइव प्रसारण किया गया। इसके साथ ही चित्तौड़गढ़ जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर सू पेश है प्रादेशिक समाचार।

पहले आज री खास खबरां अंतरराष्ट्रीय एमएसएमई दिवस रे मौके माथे राज्य स्तरीय आयोजन काले जयपुर माए राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी री लॉन्चिंग वेला गृह मंत्री अमित शाह अंतरराष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस रे मौके नशे रे खिलाफ एकजुट होर युद्ध छेड़ने रो हेलो करियो हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है मातम रे बीचे करबला माए ताजिया दफनाया जा रिया है और प्रदेश माए लाड़ला 24 घंटा माए कुछ एक थोड़ा माथे बिरखारी गतिविधियां जारी मॉनसून रे अगले हफ्ता ताई और आगे बदवारी आस समाचार रे साथे मैं संगीता शर्मा और अब समाचार विगतवार अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई दिवस रे मौके माथे काले कार्यक्रम राख्या जावेला कॉन्स्टिट्यूशन क्लब माए होवण वाला इन जलसा माए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा उद्योग तथा वाणिज्य विभाग री योजना वाला लाभार्थियां ने कर्ज अनुदान और सब्सिडी रा डमी चेक दिया जावेला वे रिकोरी योजना वाला लाभार्थियां ने भी भूमि आवंटन पत्र और ऑफर लेटर सौंपेला प्रदेश माए पहली दफा राख्या जा रिया इन कार्यक्रम रे चालता राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी ओडीओपी कॉफी टेबल बुक और रैंप पोर्टल भी लॉन्च करेला जलसा माए रिकोरी डायरेक्ट लैंड अलॉटमेंट पॉलिसी रा आवंटन पत्र और ऑफर लेटर भी दिया जावेला कार्यक्रम माए उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ और राज्य मंत्री के विश्नोई समेत वरिष्ठ अहलकार मौजूद रहेला आज अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस है युवावां और नूवी पीढ़ी माए नशा और मादक पदार्थां रे बद्धता इस्तेमाल ने रोकने और वाने जागरूक करने खातिर ओ दिन मनायो जावे है इन मौके माथे देश प्रदेश माए न्यारी न्यारी गतिविधियां राखी जी नूवी दिल्ली माए नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर री मीटिंग माए गृह मंत्री अमित शाह नशे रे खिलाफ एकजुट वेर युद्ध छेड़ने रो हेलो करियो वणा कहो कि मादक पदार्थां रो ओ कारोबार देश री सुरक्षा सामाजिक व्यवस्था आर्थिक हितां और युवावां रे भविष्य खातिर मोटो खतरो है श्री शर्मा आध्यात्मिक नेतावां युवावां और मातावां सू इन अभियान माए मिलर भाग लेवारी अरज करी है इन मौके माथे श्री शाह कहो के वारी सरकार रे कार्यकाल रे चालता 1,18,00,000 किलो सू बत्ती नशीला पदार्था ने जप्त करो गयो है वणा कहो कि

0: आंकड़ों नशीला पदार्थारी तस्करी रे खिलाफ सरकार री लगोतार कार्रवाई ने दर्शावे है।
1: इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 26 से 29 का जो रोडमैप है वो चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है। पहला स्तंभ है एनफोर्समेंट, इंटेलिजेंस और ऑपरेशंस। इसका उद्देश्य है पूरे नेटवर्क पर लक्षित इंटेलिजेंस लीड कार्रवाई करें और उनके नेटवर्क को नष्ट कर दें। दूसरा है प्रीकर्सर्स एवं सिंथेटिक ड्रग कंट्रोल। उत्पादन स्तर पर ही हमने नशे को रोकने की रणनीति अपनानी पड़ेगी और कैपेसिटी बिल्डिंग, कोऑर्डिनेशन और मॉनिटरिंग जो तंत्र को सक्षम बनाने के लिए और आधुनिक बनाने के लिए ये चौथे स्तंभ की रचना की गई है।
0: अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस माथे प्रदेश माए न्यारी न्यारी जगावा माथे कार्यक्रम राख्या गया। डीग माए जिला कलेक्टर राजकुमार कसवारी अध्यक्षता माए कार्यक्रम राख्यो जो इन माए लोगों ने नशा मुक्त भारत अभियान री जानकारी दी। नागौर माए साइकिल रैली निकालर नशो नी करने रो संदेश दियो। जैसलमेर माए भी माए भारत रा स्वयं सेवका नशा रे दुष्प्रभावां रा बारा माए जानकारी दी। पाली रा बाली माए प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय री कानी सू कार्यक्रम राख्या गया। इन रे चालता समाज ने नशे रे नुकसान सू जागरूक करियो गयो और नशा मुक्त भारत रे निर्माण माए सहयोग करने रो संदेश दियो गयो। स्वास्थ्य मंत्रालय दवा नियमा माए संशोधन रो मसौदो जारी करियो है। इन रे तहत आयात करी जावण वाली दवावां री बचोड़ी वैधता अवधि यानी सेल्फ लाइफ आयात रे बखत कम सू कम 12 महीना होनो जरूरी वेला। हालांकि जैविक दवावां और रेडियो फार्मास्यूटिकल दवावां खातिर मौजूदा नियम लागू रहवेला। इन खातिर आयात री बखत कम सू कम 60% सेल्फ लाइफ होनो जरूरी वेला। मंत्रालय रे मुजब इन संशोधन सू दवावारी गैर जरूरी बर्बादी कम वेला और दवा भंडार रो बेहतर उपयोग वे सकेला। मंत्रालय स्पष्ट करयो है ओ प्रस्ताव केवल आयात रे बखत दवावारी बचोड़ी सेल्फ लाइफ सू जुड़ियोड़ो है। जोधपुर हवाई अड्डा माथे नुआ टर्मिनल सू आवती 4 जुलाई सू उड़ाना संचालित वेला। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर माए पत्रकारा ने बतायो कि नुआ टर्मिनल सू हवाई सेवावां शुरू होने सू पश्चिमी राजस्थान री कनेक्टिविटी बदली और पर्यटन और औद्योगिक विकास ने नुवी ऊंचाइयां मिलेली।
2: जोधपुर का हवाई अड्डा केवल जोधपुर शहर के लिए नहीं अपितु पूरे पश्चिम राजस्थान के लिए एयर कनेक्टिविटी का एक बड़ा साधन है। जिस तरह की डिमांड बढ़ी थी उस बढ़ी हुई डिमांड के चलते हुए हमारे पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत दबाव भी था और ये मांग थी, आवश्यकता थी कि हम एक नया एयरपोर्ट टर्मिनल बनाएं। ये सपना 4 तारीख को साकार होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे।
0: ऐ समाचार आप आकाशवाणी रा जयपुर अजमेर केंद्र सू सुन रिया हो। पैगंबर मोहम्मद रा नवासा हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथे मनायो जा रियो है। इन मौके माथे शहीदारी याद माए जुलूस रे साथे ताजिया निकालिया जा रिया है। इन्हें करबला मैदान माए परंपरागत रीत सू सुपुर्दे खाक करियो जा रियो है। इन सू पहलियां प्रदेश भर माए मुस्लिम बाहुल्य इलाका माए मजलिसा और धार्मिक सभावां राखी जी। जयपुर रा रामगंज दिल्ली रोड और चार दीवारी खेतर माए जगह जगह लंगर और पानी री छबीला लगाई जी। अजमेर माए मुहर्रम रे मौके माथे खासो उछास देखियो जा रियो है। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती री दरगाह माथे फातिहा पड़ी और ब्यूरो माणा खबर नवीस।
3: आज मुहर्रम की 10वीं तारीख आशुरा के अवसर पर अजमेर दरगाह शरीफ सहित जिले भर की मस्जिदों में अकीदत और एहतराम के साथ विशेष धार्मिक आयोजन किए जा रहे हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती की दरगाह पर इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में फातिहा पढ़ा गया। वहीं देश भर से आए जायरीनों द्वारा नमाज अदा कर अमन चैन और खुशहाली की दुआ मांगी जा रही है। दरगाह शरीफ से छोटे बड़े ताजियों का जुलूस निकाला जा रहा है जिसे फजर से पहले झालरा के में सहराब किया जाएगा। नलमा धारीच आकाशवाणी समाचार अजमेर।
0: राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े आम जनसू इन मॉनसून रे चालता 32 पेड़ लगाने रो हेलो करियो है। राज्यपाल आज जयपुर रा निमेड़ा थापित एक गौशाला माए राखीजा धार्मिक आयोजन माए भाग लियो। इन मौके माथे वणा कहो कि सनातन संस्कृति भारतीय मूल्यारो आधार है। राज्यपाल गाया ने चारों खिलार लोगा ने जीवा रे प्रति करुणा और दया भाव बनाए राखने री अरज भी करी। देश ने सबसू 32 सैन्यकर्मी देवण वाला झुंझुनू जिला रा वायु सैन्यकर्मी सुरेंद्र मोगा रे सर्वोच्च बलिदान ने नेशनल वॉर मेमोरियल री वेबसाइट माए भेड़ो करियो गयो है। सार्जेंट मोगा ऑपरेशन सिंदूर रे चालता देश खातिर आपरा प्राण न्योछावर करया हा। मारे साथे दूजा पांच जवाना ने भी

0: साइटर रोल ऑफ ऑनर माए भेड़ो करो गयो है। इन साथ ही युद्ध स्मारक री 3D वॉल माथे भी सुरेंद्र मोगारो नाम लिखो गयो है। ध्यान जोग है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद माए एक सवाल रे जवाब माए ऑपरेशन सिंदूर रे चालता शहीद भारतीय सैनिकारी सही सूची देश ने देने री बात कही ही। भीलवाड़ा माए जिला उद्योग और वाणिज्य केंद्र रिकानिसू औद्योगिक प्रोत्साहन शिविर लगायो गयो। जिला महाप्रबंधक कमलेश कुमार मीणा बतायो कि इन मौके माथे युवा संबल मेलो भी राख्यो गयो। इनरो लखस युवावां ने उद्यमी रे तौर माथे प्रोत्साहित करने और स्वरोजगार खातिर प्रेरित करयो गयो है। झुंझुनू जिले रे कुतुबपुरा गांव माए नाबार्ड और डालमिया सेवा संस्थान री कानिसू आज नॉन वाटर शेड परियोजना रो शुभारंभ हुयो। नाबार्ड रा मुख्य महाप्रबंधक डॉक्टर आर रवि बाबू ग्रामीणा ने बिरखा रे पानी ने भिड़ो करने और खेता माए अजोला और कम पानी री फसलां उगाने रो हेलो करयो। इन मौके माथे वणा खेतर माए बैंकिंग सेवावां रे विस्तार और रोजगार परक प्रशिक्षण योजनावां री शुरुआत री बात भी करी। IRCTC नुओ पर्यटन सर्किट डिवाइन ईस्ट टेंपल टूर शुरू करयो है। इन रे खातिर भारत गौरव डिलक्स टूरिस्ट ट्रेन चलाई जावेली। प्रायोगिक तौर माथे शुरू होने माथे इन 11 दिन री रेल यात्रा रे चालता श्रद्धालुओं और सैलानिया ने उत्तर प्रदेश ओडिशा पश्चिम बंगाल और झारखंड रे खास तीर्थ स्थला माथे जावन रो मौको मिलेला। आ यात्रा दिल्ली माए सफदरगंज रेलवे स्टेशन सु शुरू वैली। रेलगाड़ी माए यात्रियों ने 3-स्टार होटल माए रुकाणो भोजन समेत एसी वाहना माए दर्शनीय स्थल माथे घुमाया जावेला। इन रे खातिर IRCTC रे टूरिज्म पोर्टल माथे या IRCTC पर्यटन कार्यालय माथे बुकिंग कराई जा सके है। अरब मौसम प्रदेश माए लाडला 24 घंटा रे चालता पूर्वी और पश्चिमी भागा माए कुछ एक जगावा माथे बारिश की गतिविधियां दर्ज करी जी। इंद्रा चालता दक्षिणी जिला माए भी कई जगावा माथे तेज बिरखा दर्ज हुई। मौसम महकमे रे मुजब झालावाड़ जिला रा अकलेरा माए सबसू 32.5 सेंटीमीटर बिरखा दर्ज हुई। राजधानी जयपुर समेत आसे पासे रे इलाका माए आज बादल छाया रिया और कई जगावा माथे बूंदाबांदी भी। महकमा रे मुजब आवता 2-3 दिना माए बीकानेर जयपुर भरतपुर अजमेर और कोटा संभाग माए प्री मानसून री बिरखारी गतिविधियां बणियोड़ी रह सके है। इन बीचे मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश रे कई और भागा माए आगे बढ़ियो है। इन रे अगले हफ्ते ताई मध्य और उत्तरी भारत ताई पहुंचने खातिर परिस्थितियां अनुकूल बणियोड़ी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून ने आकाशवाणी रा मन की बात कार्यक्रम माए आपरा विचार साझा करेला। ओ मासिक रेडियो कार्यक्रम रो 135वां एपिसोड वेला। कार्यक्रम रो प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन रा सगला चैनला AIR न्यूज री वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप माथे करियो जावेला। साथ ही AIR न्यूज DD न्यूज प्रधानमंत्री कार्यालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय रा यूट्यूब चैनल माथे इनरो सीधो प्रसारण भी वेला। हिंदी प्रसारण रे तुरंत पाछे क्षेत्रीय भाषा मा माए भी कार्यक्रम रो प्रसारण करयो जावेला। और आखिर माए खास खास खबरां आप एक कर फेरू सुनो। अंतर्राष्ट्रीय MSME दिवस रे मौके माथे राज्य स्तरीय आयोजन काले जयपुर माए। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी री लॉन्चिंग वेला। गृह मंत्री अमित शाह अंतर्राष्ट्रीय नशा मुक्ति दिवस रे मौके नशे रे खिलाफ एकजुट होर युद्ध छेड़ने रो हेलो करयो। हजरत इमाम हुसैन री शहादत रो प्रतीक मुहर्रम आज अकीदत और एहतराम रे साथ मनायो जा रियो है। मातम रे बीचे करबला माए ताजिया दफनाया जा रिया है। और प्रदेश माए लाड़ला 24 घंटा माए कुछ एक थोड़ा माथे बिरखारी गतिविधियां जारी। मानसून रे अगले हफ्ता ताई और आगे बदवारी आस है। इन रे साथ ही प्रादेशिक समाचारा रो ओ बुलेटिन अठे ही पुरोव्यो माणा। आगलो समाचार बुलेटिन काले सुमारे 9 बजे हिंदी माए प्रसारित करियो जावेला। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। आइए सुनवाते हैं कार्यक्रम चौपाल। प्रस्तोता हैं रमेश कुमार चावरिया।

कोरा कोरा धोरिया र ऊंडा ऊंडा ढेर, कै कोरा कोरा धोरिया ऊंडा ऊंडा ढेर, आ रमाए बादली लेले मुरधुर लेर। कार्यक्रम गीतारो गजरो लेर थरो भाई रामेश्वर आज हाजिर हसा और सगड़ा परिवार ने मेरा कानिशू आज फेरू घनी घनी रामाश्यामा। और आज का आपने लोकगीत है लोक भजन है बे थारी फरमाइश पर सुनस्या और बिंगे लिए थाने मेल करनी पड़ेगी। और जका भाई लोग आपने थोड़ी देर पहला जका संदेश भेजा तो बा संदेशों के हिसाब से भी आप आज जका लोकगीत है लोक भजन है भी आप सुनस्या। और देखा नहीं तो आपने चंद्र सिंह बिरकाली जी की तने चार लाइना सुनाई तो अभी थोड़ी देर पहला आपने बरसात भी सुरतगढ़ के ऊपर

कोरा कोरा धोरिया र ऊंडा ऊंडा ढेर, कै कोरा कोरा धोरिया ऊंडा ऊंडा ढेर, आ रमाए बादड़ी लेले मुरधुर लेर। कार्यक्रम गीतारो गजरो लेर थरो भाई रामेश्वर आज हाजिर हसा और सगड़ा परिवार ने मेरा कानिशू आज फेरू घनी घनी रामाश्यामा। और आज का आपने लोकगीत है लोक भजन है बे थारी फरमाइश पर सुनश्या और बिंगे लिए थाने मेल करनी पड़ेगी। और जका भाई लोग आपने थोड़ी देर पहला जका संदेश भेजा तो बा संदेशों के हिसाब से भी आप आज जका लोकगीत है लोक भजन है भी आप सुनश्या। और देखा नहीं तो आपने चंद्र सिंह बिरकाली जी की ताने चार लाइना सुनाई तो अभी थोड़ी देर पहला आपने बरसात भी सुरतगढ़ के ऊपर बादड़ी जिकी है बा मंडरी और बरसात भी हुई और सुनना आई है का आपने आस पास भी कई क्षेत्रांगमा की जिग्यांगमा राम जी महाराज जी कहे भी कि ठंडक है ना बरसाई है बिया देखा नहीं तो आपने की थोड़ सोक धरगमा भी ठंड वापरगी और की अपनी जगह फसलें हैं बे भी संभलगी सा। पर आज आप गल्ला बात कौन करांगा नहीं आज थारा फरमाइश का जका बेजड़ा संदेश है और बिंग साहब से आज आप गीत भजन सुनांगा। लेकिन सैशु पहले आप एक गीत सुन लिया पछा थारा फरमाइश का जका गीत अपने संदेश है मेल है बे बचांगा सा लियो थे सुनो गीत।

बिल्कुल सा अपने झिरमिर जो मैं है वो इन्हें सदीक खान लंगा एंड पार्टी अपने रेडियो के मार्फत तू थारती बरसात दी और बिया भी आज राम जी महाराज कहे भी अपने ती जिकी ठंडक है वह भेज दी। और इन गीत का फरमाइश के तौर पर आप आज कागज़ शामिल करा गांव खेर का सिरसा श्यू इंद्रजीत कमलजीत मीनाक्षी सागर सरगुन हनी लोट और अंकसा गया है दर्शन लोट मसीतान डब वाली श्यू दर्शन लोट और मूर्ति रानी रणमिल गी लिखियो सा ओ फरमाइश वालों कागज़ पुग है मलोट पंजाब सिंह राजकुमार इंदौरा बिमला इंदौरा गेरी इंदौरा विकास इंदौरा प्रियंका इंदौरा रमन इंदौरा रितु इंदौरा भविष्य खन्ना मिशेल खन्ना किंशुक खन्ना और अंग सागे है बेबी दीपांशी इंदौरा। ओ कागज़ अपने ती पुगिड़ो है गांव भड़बुंजी जिला आगर मालवा सू रघुनाथ मालवीय और अंग सागे है सुषमा मंजू बबीता ओम प्रकाश। ये गीत की फरमाइश अपने ती पुगी है टीडीएस सर नोर सू बेगराज पारिक बिमला शिशपाल सुमित्रा कविता मनीषा और अंग सागे है विवेक लोकेश और पूरो पारिक परिवार। हाँ बात लिखकर भेजिए कि गीत जगह है वे जरूर सुनाइए। और गांव दौलतपुरा श्री गंगानगर श्री सोलाल जी बेनीवाल शांति बेनीवाल मंजू मोहित और हेमंत सदा की बांति अपना नितवंध्या श्रोता है जो कभी कागज मान दी। और मंडी गोलवाल श्री बिरजलाल चौहान नीरज कुमार चौहान भी अपने ती फरमाइश मान दी सा अपने ती फरमाइश के तौर पर कुछ एक जकी मेल है बेबी पूगरी ऐसा तो आ मेल पुगिया जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्लापुर उत्तर प्रदेश मुकेश कश्यप शीतल कश्यप सोनू सुरेश राजपाल पंकज काजल सीमा मानवी तन्वी लक्ष्य सोनी मोहनी ऋतिक और बलवीर सिंह एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोथ निखिल कांगड़ा और तन्वी बोथ भी अपने दी फरमाइश मान दी। और हरियाणा से अंकित कांगड़ा मोनी कांगड़ा प्रिंस बोथ और साहिल कांगड़ा आ भी फरमाइश मान दी सा आ फरमाइश पुगी है अपने ती अमरपुरा जालू खाड़ से जगदीश चंद्र प्रजापति बिमला प्रजापति मोनू प्रजापति राजेंद्र प्रजापति सीमा मिश्रे की आवाज़ गमा के मैंने कोई गीत सुनाइयो सा बिल्कुल कार्यक्रम सुनता रहो सा। फरमाइश पुगी है लोकू कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चंडालिया लक्ष्मी देवी सुरेंद्र कुमार चंडालिया बरखा योगेंद्र चंडालिया नरेंद्र चंडालिया निहारिका और सुनील पाठक कमल पाठक दीपिका मल्होत्रा गव्य मल्होत्रा भाई सुच्चा सिंह पाठक अनारकली बाजार जगराव पंजाब से अपना थी फरमाइश मान दी। और आ फरमाइश पुगी है सौराष्ट्र राजकोट से जूली जगदीश गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी चक 5 MD पत्रोड़ा जिला श्री गंगानगर से अपने ती फरमाइश भेजी है मंगल जनागल रोशनी जनागल अंकुर जनागल इंदु और सुनील जनागल मुगलाओ से मदन बरोड़ मंजूबाला प्रीति बरोड़ दिव्या बरोड़ हितेश बरोड़ कामना बरोड़ लुभानी बरोड़ आरती बरोड़ अजय पेंटर मुकेश पेंटर राजू पेंटर और अंगा माऊ बापू है अंग सागे हनुमान बरोड़ और इमृति देवी। और आ फरमाइश पुगी है सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी डी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा अनिल शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर केथल श्यू डॉक्टर अमनदीप और कालका श्यू शुभचंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज आ भी फरमाइश मांडी ऐसा। अगली फरमाइश गुजरात गांधीग्राम श्यू प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश जोहरी भेजी है और गोविंदपुरा सीकर श्यू दातार सिंह शेखावत संगीता कंवर तुषार सिंह रिक्की शेखावत कालूराम की आवाज़ का कमाना कोई गीत सुनाइयो सा आ फरमाइश पुगी है गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला श्यू सवण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर सिंह गुरलाल सिंह अविराज सिंह गांव नथाणा पंजाब से हरजिंदर छिंदा जसवीर जस्सी सीता और गीता। और आ फरमाइश पुगे गांव डाणी लाल खां से जावेद खां अरमान खां इमरान खां सीमावानो विनोद खां सोहिल खान जुनेद खां मुखराम और अंगसागे आरिफ खान एयान खान अरशद खान और अरमान खान। अब थाने एक गीत सुना दिया लियो सुनो सा।

बिल्कुल सर, थाने गीत सुनाए और ई गीत ने आपने ती फरमाइश के तौर पर सुनना चाहो। हीरामणि वर्मा, पार्श्वमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल आ लिखे दतरंगी भट्टापारा छत्तीसगढ़ से, गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से, सुभाष गुदारा, बिमला गुदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गुदारा, सरवण रिणवा, हंसराज भाटिया, मनीराम, रणजीत राम क्रोड़ीवाल और अफरमाइश पुगिया नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, पीएस नुहाकर, निर्मला नुहाकर और विशाल नुहाकर, गांव नाईवाड़ा जिला हनुमानगढ़ से, वेद मिड्डा और अलका मिड्डा भी अपना ती फरमाइश मांडी है सा। आ फरमाइश पुगी है छत्रपति संभाजी नगर से, राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। हाँ, आ फरमाइश पुगी है अपने ती लिखी है चक 15 पीएसयू सरबजीत सिंह जोशन, सरबजीत कौर जोशन, गुरमन सिंह जोशन और आदर्श पाल जोशन मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया से, रोबन सिंह जोशन वैंकूवर कनाडा से अपना थी फरमाइश मंडी ऐसा। फरमाइश पुगी है गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ से, विक्रम कड़वासरा, सचिन सतीश, योगेश यादव कड़वासरा, कुंदन जाखड़, लीलाधर स्वामी, कृष्ण मायल, किड़ूराम जोहिया, हनुमान सारण, सुनील पाईवाल और आ फरमाइश अपने ती पदमा टोकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से मिली है सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, आसुनी शाह, मंगलाबेन शाह, राजेंद्र शाह है और मोताला महाराष्ट्र से, विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गोरी और ओम कुमार सुरलकर। आ फरमाइश पुगी है जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डेक्स्ट्रो, रोजी डेक्स्ट्रो, पर्ल डेक्स्ट्रो और विलिस डेक्स्ट्रो और अगली फरमाइश आपने ती लिखकर भेजी है गांव अरायण से, बनवारीलाल जयपाल, बिमला, सोनू, ममता, दिशा, मोक्ष, सुशांत, विक्रम जयपाल और आ फरमाइश आपने ती मंडी है जगदीश धाकड़ नायमा और रंजूबाई धाकड़, युवराज सिंह धाकड़, शिवांगी धाकड़ और आ लिखे मालवा रेडियो श्रोता संघ ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम एमपी से, है ना, मध्य प्रदेश से। आ फरमाइश पुगी है गांव पिपरलोड सरगांव छत्तीसगढ़ से, दीपेश वर्मा, पुनु वर्मा, ज्योति और श्वास वर्मा भी फरमाइश मान दी और आ फरमाइश पुगी है चक 14 पीएसबी से, कुलदीप सिंह, राजविंद्र कौर, संदीप सिंह, जसकंड सिंह, हरदीप सिंह।

0: मनराज विरक और गांव खारिया जिला सिरसा हरियाणा से प्रताप जिनागल इंदिरा मुकेश दिनेश अंशु बलदेव कटारिया और चंडीगढ़ से सतीश हनेजा और बिमला अनेजा भी अपनी फरमाइश अपने की फरमाइश लिखकर भेज दी सा बेहरकला खुर्द सिरसा से बलवंत जाखड़ ममता जाखड़ प्रिया नीना जाखड़ हिमानी जाखड़ शिवम जाखड़ और हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तड़ मुकेश कृष्ण रामचंद्र कपिल देव कांता चौधरी गांव हिप्पर शोंगा तहसील औंसा जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी सायरा बानू शेख बाबा शेख सिमर शेख और कृष्णा शेख एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा बबीता बोथ निखिल कांगड़ा तनवी बोथ अंकित कांगड़ा भी अपने ती फरमाइश मान दी सा है ना फरमाइश पुगी है अपने आदर्श नगर बठिंडा से और लिखर भेजी अशोक ग्रोवर प्रवीण ग्रोवर नीति ग्रोवर पवनीत ग्रोवर विक्रमजीत ग्रोवर आ फरमाइश अपने ती पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भक्त श्वेता भक्त और किशु और तासु भी आरण मिल गया फरमाइश मान दी सा है ना अगली फरमाइश तहसील भादरा अनूप शहर से गजानंद सारस्वत डॉक्टर ताराचंद सारस्वत सोनू पवन साहिल मुरारी लाल मदन लाल शर्मा हर्ष मनीष राजेश कुमार और फुस्सा राम और अंकसा गया भंवर लाल सोलंकी गो हाँ लिखे भंवर लाल सोलंकी की आवाज का माँ कोई गीत सुना दो बिल्कुल सा थाने एक गीत सुना दिया लियो सुनो सा
1: वो मेरी मोड़ी है कलाई जिन्हें दया को नहीं आई मेरे मगरों में वो मेरे मगरों में।

बिल्कुल सर, आपने इन गीत की फरमाइश भंवरलाल सोलंकी का गाइडा की भेजी और इनके सागे ही आपने ती कई फरमाइश और भी पुगी है। संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़, मन्नत मक्कड़, भरत मक्कड़, कमल साहनी, पिंगबाड़ा चौक, गुरैया, जलंधर शू, और आप फरमाइश पुगी है गांव घवंडिया शू, और लिखी है जगदीश ढूकिया, प्रमिला ढूकिया, ज्योति शिवम ढूकिया, सरिता सचिन, अमना तमन्ना, साइना विष्णु ढूकिया और अंगी दोहिती है ईवा धरणिया। अगली फरमाइश आपने ती पुगी है सुरतगढ़ शू, भूपेंद्र मिशन, प्रभजोत मिशन और बेबी जानवी का मेरठ शू, फरमाइश लिखकर भेजी है दिग्दर्शन और कविता गोड़, और लखवाड़ी हेड शू आपने ती फरमाइश मांडी है भंवर लाल, कृष्णा विशाल, राजबाला, ममता, लक्षिता, नव्या, मोहम्मद रफीक, महावीर लोरा, मुकना राम। और अगली फरमाइश नरगोड़ा छत्तीसगढ़ शू, महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। ये भजनगी ही फरमाइश आपने ती पुगी ही गांव लोग और ठोकर वाले शून, श्रवण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह, अविराज सिंह, और आप फरमाइश पुगी है सादुल शहर शू, राम कुमार रिवाड़ और चंद्रकला रिवाड़। अगली फरमाइश आपने ती लिखकर भेजी है नीमनाबाद जिला जिंद हरियाणा शू, जसवीर सिंह अरोड़ा, जितेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और करमजीत सिंह, करमजीत कौर। अगली फरमाइश मेहर नगर उमरखेड़ा महाराष्ट्र शू, अभिजीत गुणवाकर, राही सरिता गुणवाकर और प्रणीता सिद्धांत गुणवाकर, लाडला टुक टुक गुणवाकर, प्रिंस एंकास गुणवाकर, हाँ रल मिल के लिखिए सा गुणवाकर साहब, है ना, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब शाही, राही मेराज जहाँ, लक्सर नगर, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार शू अपना थी फरमाइश मांडी है सा। अगली फरमाइश बठिंडा रोड, मंडी डब्वाली शू, राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग और किशनगंज बिहार शू अपने थी फरमाइश लिख भेजी है रविंद्र मोहनदास, आशा देवी। बागपत उत्तर प्रदेश हूँ, संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, पार ढींगिया भी फरमाइश मान दी, और आप फरमाइश पुग्गी है अपना ते पवन कटारिया, सालू कटारिया, समीर कटारिया, कर्णपुर शू, अलीका डब्वाली शू, बसंत सिंह चन, कुलदीप गांधी, राजकुमार सुनीता, हाँ रल मिल गई फरमाइश मान दी सा। और अगली फरमाइश गांव खोकरा वाली शू, विनोद बारासा, विशाल बारासा, विकास बारासा, रोशनी बारासा, सगुन बारासा, और नज़दीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका शू, रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और मदन लाल वर्मा। आप फरमाइश पुग्गी अपना ती नई बस्ती गंज डूंडवाड़ा शू, और लिखी है मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौशिफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और मोहम्मद कलीम हाशमी अंसारी। अगली फरमाइश नाभा जिला पटियाला पंजाब शू, सोमदत्त, केरव, ज्योति रानी, गुरमत कौर, मनु भी रल मिल गए फरमाइश मांडिया सा। वीरम गाम गुजरात शू, अजीत भावसार और प्रमिला भावसार भी अपना थी फरमाइश मान दी सा। हनुमानगढ़ टाउन शू, रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और शहनाज भी फरमाइश पुगी ऐसा। जमानिया गाजीपुर यूपी शू, सुरेश जायसवाल, उर्मिला जायसवाल, दीपक जायसवाल और स्वाति जायसवाल। पहला था ना एक गीत सुना दिया, पछे फरमाइश वाला जगह नाम है बे बंचांग सा, लियो सुनो इतो गीत।

बिल्कुल सा, दीपाली की आवाज का माथा ने गीत सुनायो, बड़ो भावुक गीत तो है ना। लेकिन फूट रहो, आपने तो फरमाइश पुगी है, डोंडी लोहारा बालो छत्तीसगढ़ छू, देव शंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, डोली बेबी पूजा तामुरिया, राधिका प्रभा देवी तामुरिया और मास्टर अल कबीर। ये गीत की ही फरमाइश आपने ती विडिंग खेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस पिंकी लवली आरती अरोड़ा भी भेजी है, और आप फरमाइश पुगी है संबलपुर कांकेर से फग्गू राम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव। अगली फरमाइश आपने ती मलोट पंजाब से राजकुमार इंदौरा, विकास इंदौरा, गिरी इंदौरा, बेबी दिव्या इंदौरा भी फरमाइश।

मार दिशा और अगली फरमाइश पुगी है जसपुर उत्तराखंड छूँ रियासत हुसैन सिद्दीकी नजमा बेगम सिद्दीकी रियाज रिफाकत मोहम्मद रिहान समरीन परवीन और माहिरा नूर। अगली फरमाइश आपने ती चक तेरा एस पी डी सुन लिखर भेजी है लूणा राम तंवर युवराज मयंक अनन्या पिंकी सुमन। और अगली फरमाइश आप पुगी है गांव पंचायत सिरसला फवारा चौक जिला चूरू राजस्थान से संदीप सिंह सोनगरा प्राची सोनगरा सोमर सोनगरा कार्तिक सोनगरा सचिन चौहान रामसराड़ा है ना। आप फरमाइश अगली अपने ती चक 3RWM से रावसर से अपने ती फरमाइश पुगी है मोहन लाल मोयल गोपीराम मोयल राकेश कुमार मोयल मनीराम अनुज मनीष अलका मंजू कनिष्का अर्चना रिया दीपिका सोनाक्षी हर्ष चिराग मुकुंद राधिका हाँ रलमिलगी फरमाइश मंडी ऐसा। और आप फरमाइश पुगी है रिंगणी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा। अगली फरमाइश अपने ती गांव गोविंदगढ़ माजीवाड़ा श्री कनपुर से राजू टुटेजा खुशदिल उर्मिला टुटेजा गुड्डू जीनू मन्नू शिव शेट्टी कर्णपुरी पाल मिस्त्री कर्णपुरी और इस्माइल टुटेजा पवन गुजर और अंगसाग है चक अपने गांव 34 STG पिलीवुंगा से प्रेमी बिशनलाल मेहरा अमन समीर रितु मेहरा और चहलकला पंजाब से अमरजीत बंगा परमिंदर बंगा राजा बंगा कुलविंदर कौर रामबा चहल भी फरमाइश मान दिशा। और आप फरमाइश अपने ती पुगती हुई है 82 RB राइसनगर से चेतन राम सारसवा नौरंग राम सारसवा प्रदीप सारसवा ज्योति सारसवा ममता सारसवा नानू देवी सारसवा शिवप्रकाश खाती सोन जांगिड़ धनराज भंबू सुनील डाल प्रवीण सरावगी नरसी राम शिवर रणमिलगी फरमाइश मांडी ऐसा। और आ फरमाइश अपने ती पुगती हुई है कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से सुरेंद्र संधु अनीता संधु रोहित संधु रितेश संधु शिखा संधु और प्रतीक्षा संधु और अंगसाग है मैक्स। गांव फ्रांसी जिला हिसार से राजकुमार डूडी प्रमोद कुमार डूडी पुष्पेंद्र कुमार डूडी भी फरमाइश मान दिशा। और आ गांव गंदेली से फरमाइश पुगी है पाला राम श्याग रमेश संदीप बिमला मोनिका भावना और राघव श्याग। खिनानिया श्री कोलाइज से अपने दी फरमाइश लिखर भेजी है प्रभु कड़ेला रतन युवराज खुशबू और कनिष्का कड़ेला। धनोरी तेलीवाला उत्तराखंड से निशार सलमानी नौशाद सलमानी बेबी आलिया यान बाबू भी फरमाइश मान दिशा। और अगली फरमाइश अपने ती पुगी है संदेश का माध्यम से गांव होडू जिला बलोत्रा से उमेदा राम दिनेश कुमार और नागपुर महाराष्ट्र से कमल साहनी पिंकी साहनी हाजी हाजी डॉक्टर अफजल मलिक और निफी साहनी और अंगसागे है सुनीता साहनी। फरमाइश पुगी है चक 7 DBN भदवाल ढाणी से टेकचंद चारण संतोष देवी सत्यपिरण चारण जय सिंह चारण बिटिया अंगी है योगेश्री रणजीत सिंह सुथार गुरुदेव सिंह भगानिया हरनेक सिंह भगानिया और अंगसागे है कृष्ण लाल राहड़ 63 LNP से है ना। आ फरमाइश पुगी है अपना ती एटा रोड गंज डुंडवारा उत्तर प्रदेश से बीपी गौतम और श्रीता गौतम। अब एक थाने गीत सुनाओ सा लो सुनो सा

0: एलर्जी, अस्थमा, बांझपन और पेट संबंधी बीमारियों के आयुर्वेदिक इलाज हेतु मिलें सेवानिवृत्त आयुर्वेद अधिकारी डॉक्टर लीलाधर शर्मा BAMS। आप आयुर्वेदिक चिकित्सा में 55 वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं। संपर्क करें कीर्ति मेडिकल क्लिनिक, मैन बाजार, बीज बायला, तहसील पदमपुर, जिला श्री गंगानगर। मोबाइल नंबर 94-144-67-186।
1: बिल्कुल सर, थाने गीत सुनाए और आपने दी फरमाइश पुगी है फूलिया सुरतगढ़ छू और लिखने वाला है लवली। आप फरमाइश पुगी है बारखेड़ा बोरखेड़ा पित्रामल जिला उज्जैन मध्य प्रदेश हूँ। विनोद मुणत, नेहा जैन, अंक सागे, दीपक मयंक मुणत, चेतन नाहटा, दिलीप सिंह पंवार और फरमाइश पुगिया कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया छू, ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार और हैप्पी राय, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी सैदरा दिल्ली छू, तुलसी मस्किन, बीना मस्किन, आशा राजा, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन भी आपने दी फरमाइश मंडी ऐसा और फरमाइश पुगिया दुर्गा कॉलोनी हांसी छू, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी और अंगसागर बब्बू डब्बू, गांव बनवाड़ा हनुता फाजिलका पंजाब छू, विनोद मायल, सीमा लक्षिता, यशिका, माँ विद्या देवी हैंगी और अंगसागर है पूर्व परिवार। रघुनाथपुरा जिला श्री गंगानगर छू, लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षिता, खुशी गोस्वामी भी आपने दी फरमाइश मंडी। मंजू कुमावत की आवाज़ में कोई गीत सुनाइयो सा, बिल्कुल आप कार्यक्रम सुनता रहो थाना अगले गेड़े सुना सियाँ, लेकिन आपने दी फरमाइश आ लिखकर भेजिए दादरी गेट भिवानी शिव, कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, करण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा, पटेल नगर मलोट से हूँ, डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया, आरजू और गुड्डू रणमिल की फरमाइश मंडी ऐसा, और गाँव बहलोल नगर से आपने दी फरमाइश पुगी है लिखने वाला है पटवारी राम बेनीवाल, संदीप और राधा देवी। थाना सगला नेक सीमा मिश्रे की आवाज़ गमा गीत सुना दिया सा, लियो सुनो सा।

बिल्कुल सा, गीत सुनायो थाने सीमा मिश्रा की आवाज गमा। और ओ हो, अपने कार्यक्रम को आज छेकर लो गीत। और एक बात है के घीर बरसी दिन बादली, के घीर बरसी दिन बादली, सागन फगत निनान, अरे कृष्णा तेजो गांव ता जीवट धनिया पान। बिल्कुल साहब, बादल जी की है बा बरस गी, और खेता गवा अपने कचरो भी होगा, तो अब निनान जी की है बा भी करनी पड़ेगी। पर ये ठंड का टाइम गवा थे क्या है कि आज गुलगुला काटो और पकौड़ा बनाओ और खाओ, रुप रुप पियो चा, है ना। पर अब भाई रामेश्वर ने आज की कार्यक्रम समाप्त करने की दियो आज्ञा। राम राम सा, राम राम।

अभी आप कार्यक्रम चौपाल सुन रहे थे। प्रस्तोता थे रमेश कुमार चावरिया। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत।

शुरू दिल से होता है शुरू, पर कमबख्त सर पे चढ़ा है। कभी खुद से, कभी खुदा से, कभी जमाने से लड़ा है। इतना

0: अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। अब सुनिए कार्यक्रम एक ही फिल्म से।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं पुष्पेंद्र आपका स्वागत करता हूं आपके अपने कार्यक्रम में जिसका नाम है

एक ही फिल्म से। आज हम आपको ले चलेंगे 1955 की क्लासिक फिल्म श्री 420 की दुनिया में। राज कपूर और नरगिस की शानदार अदाकारी से सजी इस फिल्म को शंकर जयकिशन की अमर धुनों ने अमर कर दिया। तो चलिए जुड़ते हैं इस बेमिसाल फिल्म की यादगार सफर से और सुनते हैं इसके शानदार गीत। दोस्तों, श्री 420 राज कपूर द्वारा निर्देशित फिल्म है, जिसमें उन्होंने खुद एक भोले भाले महत्वाकांक्षी युवक का किरदार निभाया है। फिल्म की कहानी रंजीत यानी राज के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आता है, लेकिन किस्मत उसे एक ऐसी राह पर ले जाती है जहां उसे नैतिकता और लालच के बीच संघर्ष करना पड़ता है। नरगिस ने विद्या का किरदार निभाया है, जो सच्चाई और ईमानदारी की प्रतीक है।

इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए मुंबई आता है। लेकिन किस्मत उसे एक ऐसी राह पर ले जाती है जहां उसे नैतिकता और लालच के बीच संघर्ष करना पड़ता है। नरगिस ने विद्या का किरदार निभाया है, जो सच्चाई और ईमानदारी की प्रतीक है। फिल्म की सबसे बड़ी खासियत इसकी सामाजिक संदेश देने वाली कहानी और इसके गाने हैं, जो आज भी लोगों के दिलों को छूते हैं। तो चलिए फिल्म का पहला सुपरहिट गाना सुनते हैं, जो हर उस इंसान की कहानी कहता है जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहा हो।

जयपुरी ने दिल को छूने वाले बोल लिखे और मुकेश, लता मंगेशकर व मन्ना डे ने अपनी आवाज से उन्हें अमर बना दिया। अब सुनते हैं वह गाना जिसने प्रेम और विश्वास का खूबसूरत संदेश दिया और आज भी रोमांस का पर्याय बना हुआ है।

दोस्तों, श्री 420 के गानों का जिक्र हो और शंकर जयकिशन का नाम ना लिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है। इस फिल्म में गीतकार शैलेंद्र और हसरत

दोस्तों, राज कपूर की फिल्मों में हमेशा समाज को सुधारने और जीवन की सच्चाई को दिखाने का संदेश होता था। फिल्म का संदेश है कि ईमानदारी और प्रेम ही जीवन के असली मूल्य हैं। तो चलिए सुनते हैं एक और दिल को छू लेने वाले गीत को, जो संघर्ष और उम्मीद की कहानी कहता है।

श्रोताओं, राज कपूर और नरगिस की जोड़ी बॉलीवुड की सबसे मशहूर जोड़ियों में से एक है। श्री 420 में इन दोनों ने अपनी अदाकारी से दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई है। उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर देती है।

0: हम।
1: ये फिल्म न केवल मनोरंजन का जरिया है बल्कि यह हमें जीवन के गहरे संदेश भी देती है।

तो दोस्तों, आज का सफर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आज का ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगली बार सिनेमा के किसी और अनमोल खजाने के साथ। तब तक के लिए मुझे पुष्पेंद्र को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप कार्यक्रम एक ही फिल्म से सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे स्पोर्ट्स कैन हमारे दिल्ली केंद्र से, कृपया प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के संस्करण के साथ मैं प्रशांत कुमार आप सभी श्रोताओं का अभिनंदन करता हूं। हम लेकर आए हैं स्पोर्ट्स कैन का ये नया रंग, जिसमें है खिलाड़ियों का जोश, खेल का रोमांच और जीत की उमंग। साथ ही होंगी खेल जगत की बड़ी खबरें, शानदार प्रदर्शन और हर मुकाबले की खास बात आपके अपने प्रोग्राम स्पोर्ट्स कैन के साथ। तो शुरू करते हैं एक नए अंदाज में इस प्रोग्राम का ये सफर, लेकिन सबसे पहले एक नज़र स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच भारत और आयरलैंड के बीच जारी। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने बांग्लादेश पर 5 विकेट से जीत दर्ज की। फीफा फुटबॉल विश्व

0: का प्रतियोगिता में इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते। यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान, तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। जूनियर वर्ल्ड नेशनल निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने किया शानदार प्रदर्शन, भारत 7 स्वर्ण सहित 24 पदकों के साथ शीर्ष पर। और एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप में भारत ने ऐतिहासिक जीत के साथ सेमीफाइनल में जगह बनाई। तो कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं क्रिकेट से। बेलफास्ट में दो मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 183 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 8वें ओवर में 3 विकेट पर 77 रन बना लिए हैं। आयरलैंड 9 विकेट पर 182 रन बनाए। लॉर्कन टकर ने सर्वाधिक 50 रन की पारी खेली। हर्षित राणा ने 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था और इस समय अभिषेक शर्मा 49 और तिलक वर्मा 15 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मैच 28 जून को खेला जाएगा। मुकाबले से पहले भारत के नए कप्तान श्रेयस अय्यर ने टीम को साथ लेकर चलने की बात कही।
1: Just want to say, let's try and build a solid culture going forward. It's my first opportunity as a captain for the Indian team, and definitely an honor and privilege, and great respect as well to be leading the country. Going forward, I just want to build a culture where all of us are protecting, supporting each other through thick and thin, and more importantly, when we are out here playing the match, have fun as much as possible. It's a great opportunity, and this is a family. Let's play like lions and approach the game, each and every game, like we are going to go and win it and play to the best of our ability. That's it, nothing more. But have an atmosphere where we are uplifting each other and enjoying each other's success.
0: बात महिला T20 क्रिकेट पर भी कर लेते हैं। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप ए मुकाबले में भारत ने बांग्लादेश पर 5 विकेट से जीत हासिल की। शेफाली वर्मा को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। सुनते हैं हमारे सहयोगी सरफिरोजी की ये रिपोर्ट।
2: एमिरेट्स ओल्ड ट्रेफर्ड में टॉस गंवाकर बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की शुरुआत निराशाजनक रही। बांग्लादेश ने महज 8 रन पर दिलारा अख्तर का विकेट गंवा दिया था। इसके बाद शोभना मोस्तरी ने जुएरिया फिरदौस के साथ दूसरे विकेट के लिए 51 रन की साझेदारी की। बांग्लादेश के लिए जुएरिया फिरदौस ने सर्वाधिक 33 और निगार ने 32 रन का अहम योगदान दिया। बांग्लादेश की टीम 8 विकेट पर 136 रन ही बना सकी। भारत की ओर से राधा यादव ने 3 जबकि श्री चरणी ने 2 विकेट हासिल किए। रेणुका ठाकुर और नंदिनी शर्मा ने 1-1 विकेट अपने नाम किया। जवाब में भारतीय टीम ने 19 गेंद शेष रहते 137 रन के लक्ष्य को हासिल कर लिया। स्मृति मांधना ने शेफाली वर्मा के साथ पहले विकेट के लिए 31 रन की साझेदारी की। मांधना 8 रन का योगदान देकर पवेलियन लौटी। इसके बाद शेफाली वर्मा ने यास्तिका भाटिया के साथ दूसरे विकेट के लिए 45 रन जोड़कर जीत की बुनियाद रख दी। शेफाली 34 गेंदों में 1 छक्के और 8 चौकों के साथ 53 रन बनाकर आउट हुई। इसके बाद तेजी से विकेट गिरे और टीम ने 98 के स्कोर तक अपने 4 विकेट गंवा दिए थे। यहां से कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जेमिमा रॉड्रिक्स के साथ 5वें विकेट के लिए 30 रन जोड़कर भारत को जीत की दहलीज तक पहुंचाया। रॉड्रिक्स 15 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हुई, जिसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर और दीप्ति शर्मा ने टीम को जीत दिलाई। विपक्षी खेमे से ऋतु मोनी ने सर्वाधिक 2 विकेट हासिल किए। मैच के बाद भारतीय गेंदबाज श्री चरणी ने अपने विचार साझा किए।
3: I'm just trying to bowl for my strength and just following my routines and ticking every box every day. Just trying to be more consistent.
2: सर फिरोजी, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब रुख कर लेते हैं लोकप्रिय खेलों में से एक फुटबॉल पर। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच प्रतियोगिता में इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते। आइए सुनते हैं इन मुकाबलों पर एक खास रिपोर्ट।
4: प्रतियोगिता के ग्रुप ई के मुकाबले में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। फिलाडेल्फिया स्टेडियम में इक्वाडोर ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 4 बार की चैंपियन जर्मनी को 2-1 से हराकर नॉकआउट चरण में प्रवेश कर लिया। जर्मनी ने मुकाबले के दूसरे मिनट में लेरॉय साने के गोल की मदद से 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। हालांकि इक्वाडोर ने भी मुकाबले में जबरदस्त वापसी की और 9वें मिनट में ही स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। मैच के 77वें मिनट में गोंजालो प्लाटा ने बेहतरीन गोल दागते हुए इक्वाडोर को 2-1 की बढ़त दिला दी और मुकाबले को

0: सिडनी में ऑस्ट्रेलिया और पराग्वे के बीच खेला गया मुकाबला बिना किसी गोल के साथ ड्रॉ पर खत्म हुआ। इस नतीजे के साथ ऑस्ट्रेलियाई टीम ने ग्रुप में दूसरा स्थान हासिल कर राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर ली। ऑस्ट्रेलिया का नॉकआउट स्टेज में 4 जुलाई को डलास में ग्रुप जी की उपविजेता से सामना होगा। वहीं पराग्वे ग्रुप डी में तीसरे स्थान पर रहा।
1: ऑस्ट्रेलिया आर थ्रू टू द राउंड ऑफ 32 फिनिशिंग सेकंड इन ग्रुप डी बिहाइंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका।
0: ग्रुप डी के आखिरी मुकाबले में तुर्की ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मेजबान अमेरिका को 3-2 से हराया। अमेरिका ग्रुप डी में शीर्ष पर रहते हुए पहले ही राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह पक्की कर चुका है। मैच के तीसरे मिनट में ऑस्टन ट्रस्टी ने सेबेस्टियन बरहाल्टर के कॉर्नर पर शानदार गोल कर अमेरिका को 1-0 की बढ़त दिलाई। 0-1 से पिछड़ने के बाद तुर्की ने भी जबरदस्त वापसी की। अर्दा गुलर ने बारिस यिलमाज के साथ बेहतरीन तालमेल दिखाते हुए गोल दाग कर स्कोर 1-1 कर दिया। पहले हाफ में 30 मिनट के खेल के बाद तुर्की ने दूसरा गोल कर मैच में 2-1 से बढ़त बना ली। 48वें मिनट में सेबेस्टियन बरहाल्टर के गोल के साथ स्कोर 2-2 पर हो गया। मुकाबला जब ड्रॉ की ओर बढ़ता दिख रहा था तभी स्टॉपेज टाइम के 8वें मिनट में कान अहान ने निर्णायक गोल करते हुए तुर्की की यादगार जीत पर मोहर लगा दी।
1: Good cross chance for the winner for Turkey, and there it is. The Turkey go home with a win in their final Group D game. First defeat for the USA at the FIFA World Cup 2026.
0: जापान और स्वीडन के बीच खेला गया रोमांचक मुकाबला 1-1 से ड्रॉ रहा। हालांकि डलास स्टेडियम में इस नतीजे के बावजूद जापान और स्वीडन की टीमों ने नॉकआउट दौर में जगह बना ली है। दूसरे हाफ के 56वें मिनट में रित्सु दुआन के बेहतरीन थ्रू पास पर डाइजेन माइडा ने शानदार फिनिश करते हुए गेंद को गोल पोस्ट में डालकर टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। हालांकि स्वीडन ने जापान की लीड को ज्यादा देर तक बरकरार नहीं रहने दिया। मैच के 62वें मिनट में एंथनी एलंगा ने स्कोर को 1-1 से बराबर कर दिया। इसके बाद स्वीडन ने जीत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया, लेकिन मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ही खत्म हुआ।
1: He's pulled that out of the bag for Sweden. In the end, it's over as a draw. 1-1, the final score.
0: Group F में नीदरलैंड्स ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए ट्यूनीशिया को 3-1 से हराया। इस जीत के साथ ही नीदरलैंड्स ने ग्रुप एफ में पहले स्थान पर रहते हुए राउंड ऑफ 32 में अपनी जगह बना ली है। नीदरलैंड्स ने शुरुआत से ही आक्रामक खेल दिखाया और मैच के तीसरे ही मिनट में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली। इसके बाद मुकाबले के 7वें मिनट में ब्रायन ब्रॉबी ने टीम की बढ़त को जल्द ही 2-0 कर दिया। हालांकि दूसरे हाफ की शुरुआत में ही ट्यूनीशिया ने गोल करते हुए मैच में वापसी की। हैनिबल मेजबरी के कॉर्नर पर हेजम मस्तूरी ने बेहतरीन हेडर के साथ स्कोर को 2-1 कर दिया, मगर नीदरलैंड्स ने मैच का तीसरा गोल दागते हुए एक बार फिर अपनी बढ़त को बढ़ा लिया। जॉन पॉल वैन हेके ने मैच के 62वें मिनट में नीदरलैंड्स की ओर से तीसरा गोल करते हुए टीम को 3-1 से जीत दिलाई।
2: Injured player behind. It continues through Dumfries and Thaman. The Dutch are flying into the knockout stage. Top of Group F.
0: Group E के मुकाबले में कोटेडी आइवर ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुरासाओ को 2-0 से हराया। इस जीत के साथ ही कोटेडी आइवर ने वर्ल्ड कप के इतिहास में पहली बार राउंड ऑफ 32 में जगह बनाई है। मैच के 7वें मिनट में निकोलस पेपे ने शानदार गोल करते हुए टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। मुकाबले के 64वें मिनट में टीम की बढ़त को पेपे ने 2 गुना कर दिया। पेपे द्वारा किए गए दूसरे गोल से कोटेडी आइवर की जीत तय हो गई।
1: They found a way through and they found a second goal. A brace for Pepe. A wonderful finish. And now Cote d'Ivoire really can think about the round of 32. First time in their World Cup history are through to the knockout stages.
0: Vishal Sharma, SportsCast.
3: और अब चलते हैं बैडमिंटन कोर्ट की ओर। अमेरिका के फुलटन में यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में किदांबी श्रीकांत, रौनक चौहान, तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। एक रिपोर्ट।
4: यूएस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में भारत के रौनक चौहान ने सबसे बड़ा उलटफेर करते हुए विश्व नंबर 6 और पुरुष सिंगल्स में शीर्ष वरीयता प्राप्त चीनी ताइपे के चौतियन चेन को सीधे गेम में 21-17, 26-24 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके बाद किदांबी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जिया को

0: 14, 21, 13 से हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा, रक्षिता श्री और देविका सिहाग भी अंतिम आठ में पहुंच गईं। पांचवी वरीयता प्राप्त तन्वी ने चीनी ताइपे की तुंग सियो टोंग को 21-12, 21-19 से हराया। रक्षिता ने तुंग की हमवतन चेन सू यू को 21-4, 21-19 से मात दी। जबकि छठी वरीयता प्राप्त देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हेंग को 21-17, 21-19 से हराया। पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में किदांबी श्रीकांत का मुकाबला चीनी ताइपे के लियो झाओ फू से, वहीं रौनक चौहान का मुकाबला इसराइल के एम जिल्बरमैन से होगा। महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा का मुकाबला डेनमार्क की क्रिस्टोफर सेन से और देविका सिहाग का सामना जापान की आर गुंजी तथा रक्षिता श्री और कनाडा की आर चान आमने सामने होंगे। प्राची वाजपेयी, स्पोर्ट्स कैन।
1: और अब बात एथलेटिक्स पर। स्टार स्प्रिंटर्स अनिमेश कुजूर, उन्नति बोलांडर सहित अन्य एथलीटों ने 65वीं नेशनल सीनियर इंटरस्टेट एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन कर जापान के आईची नागोया में होने वाले एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली है। सुनते हैं एक रिपोर्ट।
2: भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में अनिमेश और उन्नति ने ट्रैक पर जहां क्वालिफाइंग मार्क पार किया, वहीं सिंधुश्री ने महिलाओं की पोल वॉल्ट में 4.25 मीटर की रिकॉर्ड ब्रेकिंग छलांग लगाकर नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सिंधुश्री के साथ बरानिका फ्लैंगोवन भी महिलाओं की पोल वॉल्ट में क्वालिफाइंग मार्क हासिल करके एशियन गेम्स के लिए जगह बनाई। उन्होंने 4.20 मीटर की दूरी तय करके 19 सितंबर से शुरू होने वाले एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की कर ली। अनिमेश कुजूर ने पुरुषों की 200 मीटर सेमीफाइनल में 20.87 सेकंड का समय निकालकर आगामी एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। बाद में 200 मीटर फाइनल में कुजूर ने 20.74 सेकंड में स्वर्ण पदक जीतकर पहला स्थान हासिल किया। महिलाओं की 200 मीटर रेस में उन्नति बोलांडा ने एशियन गेम्स के लिए अपनी जगह पक्की की। हरिता ने महिलाओं की 200 मीटर रेस और तेजस शीर्षे ने बाधा दौड़ में एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। पुरुषों के डेकैथलॉन में केरल के तौफीक एन ने 7,276 अंक के साथ स्वर्ण पदक जीता। मोहिते ने रजत पदक जीता। दोनों ने कांटे की टक्कर वाले फिनिश में 7,250 अंक का एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन मार्क पार किया। महिलाओं की शॉटपुट में हरियाणा की मनप्रीत कौर और दिल्ली की सृष्टि विग ने एशियन गेम्स क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड पार किया। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स कैस्ट।
1: और अब बात निशानेबाजी पर। जूनियर वर्ल्ड निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। जर्मनी के सोहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। और अब बात वॉलीबॉल पर। एवीसी पुरुष वॉलीबॉल कप में भारत ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय टीम ने आखिरी ग्रुप मुकाबले में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से हराया। इस शानदार जीत के साथ भारत ने अपने सभी ग्रुप मैच जीतकर अपने ग्रुप में शीर्ष स्थान हासिल किया। और चलते चलते बात हॉकी पर भी। लंदन में FIH हॉकी प्रो लीग में आज रात 10:30 भारत का मुकाबला पाकिस्तान से होगा। इससे पहले ग्रुप मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराया था। और चलते चलते श्रोताओं आपको बता दें कि भारत ने आयरलैंड के खिलाफ 10 ओवर में 4 विकेट पर 89 रन बना लिए हैं। और श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की हर खबर के साथ। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, इस पर आप अपनी राय और सुझाव स्पोर्ट्स कैन की ईमेल sportscan@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए मुझे और स्पोर्ट्स कैन की टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।
3: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। गृहमंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों को तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत।

0: भारतीय निशानेबाज आईएसएसएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदांबी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने 2026 से 2029 की अवधि के लिए मादक पदार्थों पर नियंत्रण संबंधी विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नई दिल्ली में नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की बैठक में उन्होंने मादक पदार्थ निपटारा पखवाड़े की भी शुरुआत की। इसमें करीब 2,10,000 किलो मादक पदार्थ नष्ट किए जाएंगे। इनकी अनुमानित कीमत 6,000 करोड़ रुपये है। गृह मंत्री ने नशे के खिलाफ एकजुट होकर युद्ध छेड़ने का आह्वान किया।
1: मेरा आप सबसे विनम्र आग्रह कि देश के आने वाले 100 वर्ष के भविष्य के लिए सभी सरकारों को एक साथ एक मंच पर आना होगा। सभी विभागों को जनता को गाइड करने वाले संतों को भी जोड़ना पड़ेगा और युवाओं पर घर में अपना रसूख रखने वाली हमारी मातृशक्ति को भी इसमें जोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर इस लड़ाई के खिलाफ हम पूर्णतया सफल हो सकते हैं।
0: गृह मंत्री ने कहा कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने मादक पदार्थों से जुड़े अपराधों की जानकारी समय पर साझा करने के लिए कई ऑनलाइन पोर्टल शुरू किए हैं। उन्होंने कहा कि मादक पदार्थों और इससे संबंधित तस्करी नेटवर्क के खिलाफ अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज कार्गो, डार्कनेट, क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: श्री अमित शाह ने कहा कि वर्ष 2004 से 2014 के बीच करीब 26 लाख किलो सिंथेटिक मादक पदार्थ जब्त किए गए थे, जबकि 2014 से 2026 के बीच ये मात्रा बढ़कर 1,18,00,000 किलो से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि ये आंकड़े नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सरकार की लगातार कार्रवाई को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान जन भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने प्रत्येक नागरिक से नशा मुक्त भारत और विकसित भारत के निर्माण के अभियान में शामिल होने का आह्वान किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1,000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि समझौते में पात्र भारतीय पेशेवरों को ब्रिटेन में सामाजिक सुरक्षा अंशदान से छूट मिलेगी। श्री गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत फ्रेजाइल 5 से निकलकर विश्व के सर्वाधिक संभावनाओं वाले देश के रूप में सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के हितों पर केंद्रित है। इस बीच श्री गोयल ने लंदन में HSBC के ग्लोबल ट्रेड सॉल्यूशंस के प्रमुख विवेक रामचंद्रन से मुलाकात की। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने भारत UK व्यापार आर्थिक और व्यापार समझौते से कारोबारी विस्तार का परिवेश निर्मित करने के बारे में बात की। श्री गोयल ने कहा कि मजबूत व्यापार हित और सीमा पार बैंकिंग व्यवस्था के जरिए नए बाजारों में उद्योगों की मदद करने में वित्तीय संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्तात के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बताया कि अमिस्तात का अर्थ स्पेनिश भाषा में मित्रता होता है।

0: है। उन्होंने कहा कि इस अभियान के तहत सेना की फील्ड अस्पताल इकाई भी भेजी गई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। इस बीच अमेरिका और खाड़ी सहयोग परिषद ने आज बहरीन के मनामा में एक मंत्रिस्तरीय बैठक में अपनी रणनीतिक साझेदारी की पुष्टि की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में यूरोपीय देशों के पत्रकारों के समूह से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने भारत में क्रांतिकारी बदलाव और वैश्विक स्थिति तथा भारत और यूरोप के बीच बढ़ते संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने भरोसा जताया कि यूरोपीय पत्रकारों की भारत यात्रा से उनकी भारत और भारत यूरोप भागीदारी की संभावनाओं के बारे में समझ बढ़ेगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भूटान के शिक्षा मंत्री यीजांग दे थापा से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण, कौशल विकास और रोजगार क्षमता, डिजिटल शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सतत पर्यटन, पारंपरिक चिकित्सा और समग्र स्वास्थ्य पर चर्चा हुई। श्री प्रधान ने कहा कि दोनों देशों के पास शिक्षा, नवाचार और क्षमता निर्माण के व्यापक मंचों पर सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परमाणु, अंतरिक्ष और क्वांटम प्रौद्योगिकियां भविष्य के विकास और वैश्विक प्रतिस्पर्धा की दिशा तय करेंगी। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि भारत अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में तेजी से एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर रहा है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन का उल्लेख करते हुए श्री सिंह ने कहा कि मिशन ने अपने शुभारंभ के 3 वर्ष में ही आधे से अधिक लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने कहा कि इस मिशन की गति भारत की बढ़ती वैज्ञानिक क्षमताओं और उभरती प्रौद्योगिकियों में वैश्विक के नेता बनने की उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है। संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा है कि AI नवाचार, पारदर्शिता और दक्षता को नया रूप दे रही है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शेखावत ने कहा कि आधुनिक प्रौद्योगिकी और नवाचार विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्व में बदलाव लाने और व्यक्तियों के जीवन को सुगम बनाने के लिए तैयार है।
1: आने वाले समय में टूर ऑपरेटर्स की भूमिका को, ट्रैवल गाइड की भूमिका को, डेस्टिनेशन सिलेक्शन की भूमिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी से बहुत बड़ा रोल प्ले करने लगी है। भारत जैसा देश जिसकी 10,000 साल से भी ज्यादा की पुरानी कंटिन्यूटी की सभ्यता है, हम अपने सभ्यगत यात्रा को दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए AI बेस्ड कंटेंट बना करके उनको आकर्षित कर सकते हैं, उनके बेहतर अनुभव दे सकते हैं।
0: विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने आज नई दिल्ली में सभी राज्य विद्युत नियामक आयोगों और संयुक्त विद्युत नियामक आयोगों के अध्यक्षों के साथ नियामक मंच की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने कहा कि विश्वसनीय, गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने, शिकायतों के त्वरित निवारण और व्यापार में सुगमता तथा जीवन यापन में सुगमता को बढ़ावा देने के लिए एक पारदर्शी, पूर्वानुमानित और उत्तरदायी नियामक ढांचा अत्यंत आवश्यक है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान 28 जून को नई दिल्ली में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्री, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी तथा विशेषज्ञ समग्र ग्रामीण विकास पर विचार विमर्श करने के लिए एकत्रित होंगे। बैठक में प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा और ग्रामीण भारत के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अयोध्या की एक अदालत ने राम मंदिर दान में कथित अनियमितता बरतने के मामले में सभी गिरफ्तार 8 आरोपियों को आज 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपियों से 79,85,000 से अधिक रुपए बरामद किए गए हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के सदस्य कृष्ण मोहन ने कल प्राथमिकी दर्ज कराई थी। कोलकाता के ताराताला दुर्घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है। घायलों का उपचार कोलकाता के SSKM अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने इस मामले में एक सरकारी अधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है। राज्य सरकार ने घटना की जाँच के लिए SIT का गठन किया है। बचाव अभियान जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए और घायलों को 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राजस्व

0: तो खुफिया निदेशालय ने मुंबई, बेंगलुरु और विशाखापट्टनम में कई अभियानों में 23 करोड़ रुपए का 15 किलो सोना जब्त किया है। संगठित सोने की तस्करी करने वाले गिरोह से जुड़े इस मामले में 15 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान सूरत में 2 किलो कोकेन जब्त कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। पिछले महीने से अब तक निदेशालय ने कुल 26 किलो कोकेन जब्त की है और 14 विदेशी नागरिकों सहित 22 लोगों को गिरफ्तार किया है। आज देश भर में आशूराए मुहर्रम पूरे श्रद्धा और सद्भाव के साथ मनाया गया। ये दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हजरत इमाम हुसैन और उनके समर्पित साथियों की शहादत की याद दिलाता है, जिन्होंने कर्बला में सत्य और न्याय की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। इस अवसर पर ताजिया जुलूस निकाले गए, जिन्हें बाद में शाम को निर्धारित स्थानों पर दफनाया गया। मजलिसें या धार्मिक सभाएं भी आयोजित की गईं। इस अवसर पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में इस सप्ताह मूसलाधार बारिश की संभावना है। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तटीय आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, माहे, कोंकण, गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और तेलंगाना में भारी वर्षा की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड और लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों में सोमवार तक गरज के साथ बारिश और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर रविवार तक लू चलने की संभावना भी व्यक्त की है। इशू के साथ सौम्या शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: और अब कुछ खेल खबरें। भारतीय निशानेबाजों ने जूनियर विश्व निशानेबाजी चैंपियनशिप में शीर्ष स्थान हासिल कर अपने अभियान का समापन किया। जर्मनी के सुहल में आयोजित इस प्रतियोगिता में भारत ने 7 स्वर्ण, 8 रजत और 9 कांस्य पदक सहित कुल 24 पदक अपने नाम किए। यूएस ओपन बैडमिंटन में किदाम्बी श्रीकांत, रौनक चौहान सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। पुरुष सिंगल्स में रौनक चौहान ने चीनी ताइपे के चो तियन चेन को और किदाम्बी श्रीकांत ने मलेशिया के ली जी जिया को हराया। वहीं महिला सिंगल्स में तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपे की तोंग सियू तोंग को हराया, तो रक्षिता ने चेन सू यू को पराजित किया और देविका ने थाईलैंड की टोन रुक साई हिंग को हराया। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप आई मुकाबले में देर रात नॉर्वे का मुकाबला फ्रांस से होगा। इसी ग्रुप के एक अन्य मुकाबले में इराक और सेनेगल आमने सामने होंगे। दोनों मुकाबले रात 12:30 बजे से खेले जाएंगे। इस बीच इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट, नीदरलैंड्स और तुर्की ने अपने अपने मुकाबले जीते हैं। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों पर नियंत्रण के लिए 3 साल का विजन डॉक्यूमेंट जारी किया। नशा रोधी अभियान को सशक्त करने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग करने को कहा। केंद्र सरकार भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत करेगी। वेनेजुएला में भूकंप से मरने वालों की संख्या बढ़कर 589 हुई। भारत ने वायुसेना के 2 जहाजों से आपातकालीन राहत सामग्री भेजी। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा, अमेरिका और ईरान भविष्य में किसी भी टकराव को टालने के लिए सीधा सैन्य संपर्क स्थापित करने पर सहमत। भारतीय निशानेबाज ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 7 स्वर्ण सहित 24 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहे और यूएस ओपन बैडमिंटन में रौनक चौहान, किदाम्बी श्रीकांत सहित 3 महिला शटलर सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम शगुन चोपड़ा विद द न्यूज एट 9। The headlines. Home Minister Amit Shah launches 3-year vision document for narcotics control, calls for better coordination and use of technology to strengthen anti-drug campaign. Center to deploy 1,000 advisory personnel across the country and upgrade trade portal to maximize benefits of India-UK trade agreement. Death toll in Venezuela earthquakes rises to 589. India sends 2 Air Force planes with emergency relief material. US and Iran agree to establish direct military communication channel to reduce risk of further conflict, says US Vice President J.D. Vance. Indian shooters finish at the top in ISSF Junior World Championship in Germany.

अभी आप कार्यक्रम सुगम संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 326.7 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम हेलो मिट्टी दी खुशबू। प्रस्तोता हैं जसवीर सिंह और संयोजक हैं नवीन सिसोदिया।

0: हेलो, सत श्री अकाल जी।
1: सत श्री अकाल।
0: रूहानी अरोड़ा बोल रही हूँ, केसरी
1: हाँ जी, कितों बोल रहे हो जी?
0: सिंहपुर चो।
1: ते रूहानी जी, एक सवाल सी
0: हाँ
1: कि
0: जी
1: जिंदगी दे अंदर जिहड़ी थोड़ी जिंदगी है उहदे अंदर दुख
0: जी
1: और सुख किस तरह तुसी मैनेज करदे हो?
0: सुख है तो दुख आएगा,
1: जी
0: तो दुख आ गया तो भी अपने को निराश नहीं होना।

0: हेलो,
1: हेलो जी, नमस्कार जी।
0: नमस्कार, सत श्री अकाल।
1: हाँ जी, मंगत राम दिंगड़ा, गांव बागसर, तहसील सादुर शहर तो बोलना जी।
0: वाह जी, मंगत राम जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। आए नु आखते हैं इस प्रोग्राम के अंदर।
1: हाँ जी, थैंक यू जी।
0: तो मंगत
1: जी
0: राम जी, एक सवाल थोड़े तो पूछ रहे हैं जी,
1: हाँ
0: भी
1: जी,
0: दुख और सुख जिंदगी नु कैसे प्रभावित करते हैं?
1: दुख बहुत दुख ही है जी। सहन आपदा आपदा स्टाइल होंगे बंदे का, पर दुख तो सहन करना बहुत मुश्किल होंगे जी।
0: जी, पर हौसला नहीं छोड़ना चाहिए मंगत राम जी, जे
1: हाँ
0: दुख
1: जी,
0: आ भी जाए
1: हौसला
0: तो।
1: नहीं छोड़ना चाहिए। हाँ
0: जी
1: जी,
0: जी ते सुख टाइम
1: सुख टाइम रब दा नाम देना चाहिए, इज्जत करनी चाहिए सब दी। आपदा जरा दुख का जो टाइम होंगे बोलना नहीं चाहिए। हाँ
0: बहुत वधिया मंगत राम तिंगड़ा जी। ते अज दे इस प्रोग्राम दे अंदर थोड़े नाल कड़े कड़े

0: हेलो,
1: साजी सत श्री अकाल
0: सत श्री अकाल
1: मिट्टी जी खुशबू सूरतकार। हाँ
0: जी। राजकुमार ठठई जी केसरी सिंहपुर तो
1: जी, और सर जी ठीक हो?
0: बहुत बढ़िया। राजकुमार जी
1: सर जी कई दिनों बाद ही मुलाकात हो रही है,
0: जी
1: जिवें कि सालों बाद ही आज तो मुलाकात हो रही है, क्योंकि हुण महीने बाद ही नंबर लगता है सर।
0: बिल्कुल। और ये राजकुमार जी थोड़े वास्ते, साढ़े नवे दोस्तों वास्ते ही प्रोग्राम का निज़म बनाया गया है, क्योंकि
1: निगम तो
0: दोस्तों
1: सर जी सही है, पर असि तो फिर बोर हो जाने की करिए सर। 15 दिन
0: जी
1: बाद नंबर आना सी, कहते हैं महीने बाद नंबर आऊगा,
0: जी पर
1: मैं तो
0: राजकुमार जी
1: खुश नहीं हाँ
0: ये
1: भी चलो और तो आधा नंबर लग जाता किसी का, अभी तो भी खुश है, कोई दिक्कत वाली गल नहीं। वैसे तो
0: जी
1: सर जी गर्मी भी बहुत पड़ी जाती है, तो कुछ बरसातों के कारण ना उमस जी ज्यादा पै रही है।
0: जी ते राजकुमार जी एक सवाल सी, थोड़ी जिंदगी दे अंदर दुख
1: हाँ जी हाँ
0: और
1: जी हाँ जी,
0: सुख
1: दुख
0: तुसी कैवें
1: है
0: उदना
1: दुख
0: निभा करदे हो?
1: दुख तो साहब जो परेशानी आ जाए वो तो दुख है, जो लाल सुखी है, बच्चे सुखी है, घर में सुखी है, तो खुशी है, तो सुखी सुख है सर जी। तो
0: जी
1: जो कोई परेशानी आ जाती है और दुख है बड़ा भार टूट जाता है, वो तो ज्यादा दिमाग परेशान हो जाता
0: पर हौसला नहीं छड़ना चाहिए राजकुमार जी दुख दे
1: है।
0: टाइम।
1: नहीं सर जी हौसला तो नहीं छोड़ते, पर गल कर रहे हैं आप तो बैठे कि सुख दो जिंदगी नाल है, जी रहे हैं जी, सुख भी देख रहे हैं, दुख भी देखे है, सब
0: जी
1: ही सब देख रहे हैं।
0: सुख दी घड़ी दे अंदर थोड़ा फोन लग चुकी है, ते अज केड़े केड़े दोस्त थोड़े नाल ने?
1: दोस्त सर जी केसरी सिंहपुर तो राजकुमार ठठई, कमल ठठई, शोक कुमार जी मित्तल, मुंशी राम जी महेंद्रा, हीरा लाल जी गजरा, तारा चंद जी डायमा, शुक्ला राम जी किक वाली गांव से, सरपंच बलवंत राम जी, बाबा हंसनाथ जी आठ हसदाणी तो, बाबू लाल जी चक्की वाले, कृष्ण लाल चावरिया, डॉक्टर मोहन लाल गारू, 33 बीवी तो रीस कुमार जी मिगलानी, ते 18 इलाटी तो गुरबचन सिंह भट्टी, ते दीवान चंद जी सिंधी।
0: ते राजकुमार जी थोनू ते थोड़े दोस्तों नू आज किहड़े कलाकार दा गीत सुनवा दिए?
1: सर जी सानू ते साडे दोस्तां नू सारयां नू सुरजीत बिंदरखिया दी आवाज विच गाणा है जी, पेके होंदे मावां नाल।
0: जी सुनदे हैं गीत।

अभी आप कार्यक्रम हेलो मिट्टी दी खुशबू सुन रहे थे। प्रस्तोता जसवीर सिंह और संयोजक नवीन सिसोदिया। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 326.79 मीटर अर्थात 918 किलोहर्ट्स पर आप हमें सुन सकते हैं। DNM बैंड 209 किलोहर्ट्स पर, FM बैंड 100.1 मेगाहर्ट्स पर और मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर। अब सुनिए फिल्म संगीत। फिल्म संगीत में सबसे पहले सुनिए हिमेश रेशमिया और कृष्णा अहीर की आवाज़ में गीत। फिल्म का नाम है आशिक बनाया आपने।

आइए अब सुनते हैं के और जयेश गांधी की आवाज में गीत। फिल्म का नाम है आहिस्ता आहिस्ता।

आइए सुनते हैं सोनू निगम, अलका याग्निक, शान, उदित नारायण, सारिका कपूर और सुनिधि चौहान को इस गीत में। फिल्म का नाम है आवारा पागल दीवाना।

अभी आप फिल्म संगीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी सूरतगढ़ से बोल रहे हैं। रात्रि के 11 बजने को हैं। अब समाचार होंगे। समाचार पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में, जिसे हम अपने दिल्ली के अंदर से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: तस्करी नेटवर्क के विरुद्ध अभियान को सशक्त बनाने के लिए बेहतर समन्वय और तकनीक का प्रयोग आवश्यक है।
1: ड्रोन आधारित ड्रॉप्स, समुद्री मार्गों से कंटेनराइज्ड कार्गो, डार्कनेट क्रिप्टो पेमेंट, ऑर्डर टू डिलीवरी मॉडल, पार्सलों का उपयोग, ये सब तरीकों से ड्रग के कारोबार करने वालों ने हमारी लड़ाई को और कठिन बनाया। इसलिए हमारी प्रतिक्रिया भी सामूहिक और संगठित होनी चाहिए, एक रोड मैप आधारित होनी चाहिए और उसमें आधुनिक इंटेलिजेंस लीड बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन अप्रोच होना चाहिए।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नशा मुक्त भारत अभियान

भागीदारी से प्रेरित एक जन आंदोलन बन गया है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा का एक लेख सोशल मीडिया पर साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने ये बात कही। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ब्रिटेन व्यापार समझौते से अधिकतम लाभ लेने के लिए देश भर में 1000 सलाहकारों की तैनाती के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, AI, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए 2 शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देश

के साथ व्यापार पोर्टल को उन्नत किया जाएगा। लंदन में 10वें यूनाइटेड किंगडम भारत सप्ताह में श्री गोयल ने कहा कि भारत ब्रिटेन भागीदारी पारंपरिक व्यापार से आगे बढ़कर तकनीक, एआई, महत्वपूर्ण खनिज, रक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे रणनीतिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता दोनों देशों के साझा हितों पर केंद्रित है। वेनेजुएला में आए दो शक्तिशाली भूकंपों में मृतकों की संख्या बढ़कर 589 हो गई है। 3,000 से अधिक लोग घायल हुए हैं। कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने भारत की एकजुटता का आभार व्यक्त करते हुए कहा है कि ये मुश्किल समय में दोनों देशों की सहयोग की भावना के अनुरूप है। उन्होंने राहत कार्यों में सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। भारत ने भूकंप प्रभावित वेनेजुएला के लिए ऑपरेशन अमिस्ताद के अंतर्गत 35 टन से अधिक राहत सामग्री, दवाएं और चिकित्सा उपकरण वायुसेना के 2 विमानों से भेजे हैं। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि अमेरिका और ईरान के सैन्य प्रतिनिधि संघर्ष टालने के लिए एक सीधा संपर्क स्थापित करने पर सहमत हुए हैं। इसके अंतर्गत ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC और अमेरिकी सेना के सेंट्रल कमांड के प्रतिनिधि कतर के दोहा में तैनात रहेंगे। आयरलैंड के बेलफास्ट में 2 मैचों की T20 क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में आयरलैंड ने भारत को 34 रन से हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए आयरलैंड ने 182 रन बनाए। 183 रन के लक्ष्य के जवाब में भारतीय टीम 148 रन पर सिमट गई। मैथ्यू हॉलैंड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। श्रृंखला का दूसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।